मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 47 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

गर्मी की सुबह हमें जल्दी उठकर प्रकृति के निकट जाने का अवसर देती है। टहलते हुए, योग करते हुए या खुली हवा में कुछ पल बिताते हुए मन आनंद और सकारात्मकता से भर उठता है।

नमस्ते लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र

में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड

निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला टी20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। समय है हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनिए फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां व्यावसायिक बागवानी आप कर रहे हैं वहां फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय जो भी फलदार वृक्ष हैं, चाहे फलत में हैं या बिना फलत के, उनमें सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें बागवान भाई बहन।
2: सबसे पहले मेरा किसान भाइयों को नमस्कार। जो हमारे फलदार वृक्ष हैं, अच्छे उत्पादन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी समसामयिक कार्य हैं, चाहे हमारा जुताई हो, खुदाई हो, सिंचाई हो या हमारा कटाई छटाई हो, यदि वो समय समय पर होते रहेंगे तो हमारे फलों की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और पौधे भी हमारे स्वस्थ रहेंगे। तो हमें किसान भाइयों से यही कहना है कि सारी जो भी गतिविधियां हैं वो हमारी समय समय पर होती रहनी चाहिए।
1: जैसे इस समय आम के बागों में फलत है, लीची में फलत है, बेल में है, फालसा में है, तो बागवान भाई कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करें? एक तो तेज गर्मी है
2: जी,
1: तो फसल की प्यास भी बुझाना
2: जी। तो किसान भाइयों को फलों की तुड़ाई समय ध्यान रखना है कि फल जब पूरी तरीके से पक जाए तभी तोड़ना है। यदि कच्चा फल तोड़ देंगे तो उसकी गुणवत्ता हमारी खराब हो जाएगी। जैसे हमारे फालसा में है, फालसा एक ऐसा फल है जो कि तुड़ाई के तुरंत बाद ही प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि उसको तुड़ाई के बाद में हम उसको रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे आम फल है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि फल यदि कच्चा टूट गया तो उसकी हमारी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। उसको हमें यदि मार्केट में या बाहर भेजना है तो हम उसकी क्वालिटी को अच्छा सा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब भी तुड़ाई करें तो हमें उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, फल टूटे ना और खराब नहीं होना चाहिए।
1: जहाँ अभी कच्चे फल हैं तो फलदार वृक्ष में सिंचाई भी आवश्यक है?
2: हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अभी बारिश कुछ जगह पर नहीं हुई है, तो हल्की सिंचाई यदि हो जाएगी तो हमारे फलदार वृक्षों में जो हमारे फल लगे हुए हैं वो फल भी अच्छे होंगे और पौधे भी हमारे उसी तरीके से ठीक बने रहेंगे।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ फलत खत्म होगी, फलों की तुड़ाई हो जाएगी, तो फसल की भूख मिटाने के लिए जो भी फलदार वृक्ष हैं उनकी भूख मिटाने के लिए क्या खाद और उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा?
2: जी, क्योंकि एक बार फलत आने के बाद जब उनकी तुड़ाई हो जाती है तो हमारे पोषक तत्वों की पौधों में कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमको पोषक तत्व देना जरूरी होता है। इसके लिए एक मापदंड है, यदि हमारे पेड़ 10 साल के हैं तो उसमें हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो एक रेशियो होता है 1 किलोग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से हमको देना चाहिए।
1: यानी 1 किलोग्राम नाइट्रोजन?
2: नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों जो हमारी होती हैं वो 1 किलोग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से होना चाहिए।
1: 10 साल या 10 साल से अधिक?
2: 10 साल या 10 साल से उसके ऊपर है। यदि हमारे पेड़ 5 साल के हैं तो हमारा 500 ग्राम, 6 साल के हैं तो हर साल 1 साल से 10 साल तक हम 100 ग्राम जो खाद है उसको बढ़ाते जाएंगे, 10 साल उसके ऊपर हम 1 किलो प्रति पेड़ हम उसको देंगे।

0: यानी तत्व के रूप में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश
1: पोटाश होनी चाहिए,
0: तो उसका अनुपात भी होगा कोई?
1: जी, उसका अनुपात हमारा होता है 40 ग्राम नाइट्रोजन है और 40 ग्राम हमारी फास्फोरस है और 20 ग्राम हमारी पोटाश है।
0: यानी अगर एक किलो की बात करें तो 400 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 200 ग्राम पोटाश प्रति पेड़ के हिसाब से।
1: जी जी जी।
0: और कार्बनिक खादों में?
1: कार्बनिक खादों में यदि हम गोबर की खाद अप्लाई करते हैं या डालते हैं किसान भाई, तो प्रति पेड़ हमारे 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद मिला देंगे तो और अच्छा रहेगा, उसकी बढ़वार अच्छी होगी और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी आएगी।
0: डॉक्टर साहब, इस समय जहां फलत में है तो हम लोग जीवन रक्षक सिंचाई भी करते रहे क्या?
1: जी बिल्कुल, समय समय पर हल्की सिंचाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम पानी की वजह से कई बार क्या होते हैं, हमारे जो फल लगे हुए हैं वो गिर भी जाते हैं, तो इसलिए हल्की सिंचाई समय समय पर, जिससे पौधे स्वस्थ भी रहें और फल भी हमारे न गिरें।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आम है, लीची है, बेल है, कटहल है, बहुत सारे भोले बिसरे फल हैं जिनमें फलत है, तो फलों की तुड़ाई के बाद क्या उनकी डालियों की कटाई छटाई भी करना फायदेमंद है?
1: हाँ, ये कटाई छटाई जो है वो आवश्यकता अनुसार हमको करनी चाहिए। जैसे हमारी कोई डाली खराब हो गई है, टहनी खराब हो गई है, या हमें इस डाल को हटाना है, उनको हमें काट देना चाहिए। कटाई के बाद ये ध्यान रखना है, एक आता है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा बोलते हैं, तो उसको हमें जरूर लगा देना चाहिए। इससे लगाने से क्या होता है कि वहाँ पे जो कटा हुआ भाग है वहाँ से हमारे पौधे में बीमारी नहीं लगती है,
0: कोई संक्रमण नहीं होता,
1: संक्रमण नहीं होता। जी
0: डॉक्टर साहब, चूंकि फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन की बात चल रही है, तो आने वाला समय जब बरसात होगी तो नए फलदार वृक्ष भी लगेंगे, नए पौध लगेंगे, तो जहाँ नए फलदार वृक्ष लगाने की योजना है तो बागवान भाई इस समय क्या कुछ कर सकते हैं?
1: जो भी किसान भाई हमारे नए बाग लगाना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, वो इस समय बहुत अच्छा समय है गड्ढों की खुदाई का। गड्ढे की खुदाई करने के बाद 15 से 20 दिन बरसात के पहले यदि पड़े रहेंगे तो उसमें कीट और बीमारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद में उनको 15 से 20 दिन के बाद उनकी भराई कर देनी चाहिए, जिससे कि यदि पहले से हमारे मिट्टी भरी रहेगी तो पौधे लगाना हमारा आसान हो जाएगा। भराई करते समय किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो यदि खेत की मिट्टी अच्छी है तभी उस मिट्टी को दोबारा उसमें खाद और जो भी हमारे पोषक तत्व मिला करके डालना चाहिए, नहीं तो उस मिट्टी को हटा करके बाहर की मिट्टी, एक उसका अनुपात होता है 3:1 मिट्टी, 2 भाग गोबर सड़ी खाद और 1 भाग बालू मिलाकर के उसमें भर करके छोड़ देना चाहिए। जैसे ही बरसात का समय हो उसके बाद में उसमें पौधा लगा देना चाहिए।
0: देख सब, जो उन्नत प्रजातियों की फलदार पौध है इसका चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल है, उन्नत प्रजाति से ही हमारा उत्पादन अच्छा होता है। जैसे कि हमारे आम में हमारी बौनी प्रजातियां आ गई हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो हर साल भी फल देती हैं, जैसे हमारे IRI जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है, वहाँ से हमारे कुछ प्रजातियां हैं, तो उनका हमको प्रयोग करना चाहिए। हमारे रहमान खेड़ा लखनऊ से जैसे अंबिका प्रजाति है उसका प्रयोग करना चाहिए। ये प्रजातियां जैसे आम्रपाली है, अर्का अनामिका है, ये प्रजातियां हमारी हैं, तो ये हर साल फलत भी देती हैं और इनमें फल भी अधिक आता है, तो उनका प्रयोग करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विश्वविद्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 9450234406, 9450234406, 9450234406।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: किसान भाइयों को अपनी निगरानी, जो भी हमारे बाग हैं उनको समय समय पर देखते रहना चाहिए, कोई चाहे कीट हो, बीमारी हो, जो भी है उसको तुरंत वैज्ञानिक से सलाह करके तुरंत उसका निदान करना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि कीड़ा या बीमारी लग गई या आपने समय से सिंचाई नहीं गई, फल गिर गया, तो फिर हमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो इसलिए हमको समय समय पर उसकी निगरानी करते रहना चाहिए।

0: चाहिए और कोई भी समस्या है तुरंत वैज्ञानिक से संपर्क करके उसका निदान करना चाहिए, जिससे कि हमें फलत भी अच्छी मिले और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। इसी के साथ साथ जो भी हमारे चाहे हमारे पोषक तत्व हों उनको हमें समय से अप्लाई करना है। सिंचाई का कार्य है वो भी हमको करना है। फलों की तुड़ाई है उसको भी हमें समय से कर लेना चाहिए। साथ ही साथ कटाई छटाई की जो मैं बात कर रहा था उनको भी हमें समय पर ही करना चाहिए, जिससे उत्पादन हमारा अच्छा रहे और पौधा भी हमारा स्वस्थ बना रहे।
1: डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपके बहुमूल्य सुझाव पर बागवान भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन विषय पर अभी आप डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा से की गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। आज के सुविचार में सुनिए धर्म और सामाजिक न्याय के बारे में स्वर आशाराम मिश्रा का।
3: वर्तमान समय में जब धर्म का अर्थ और स्वरूप बुरी तरह विकृत हो, धर्म और सामाजिक न्याय में संबंध जोड़ना आश्चर्यजनक घटना ही माना जा सकता है। लेखन के दौरान मेरे एक सहयोगी इस शीर्षक को देखकर अचंभित रह गए। उनका तर्क था कि धर्म तो समाज के शोषण का अमोघ अस्त्र रहा है। आस्तिकों की धर्म वीरता और आस्थाओं का जिस तरह धर्माचार्यों धर्म के ठेकेदारों द्वारा अनुचित दोहन किया जा रहा है, वो वास्तव में हर विचारशील व्यक्ति को इस शीर्षक पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त है। किंतु यहाँ यह भी स्पष्ट करना समीचीन होगा कि हम इस शीर्षक के अंतर्गत जिस धर्म की चर्चा कर रहे हैं वो वर्तमान का रुग्ण धर्म नहीं है। बरसात के दिनों में गंगा का निर्मल जल मटेला हो जाता है, फिर भी गंगा जल आज भी उन समस्त दोषों से मुक्त और शुद्ध है। गंगा आज भी पवित्र है। गंगा जल आज भी रोगाणुहीन है। कुछ ऐसा ही धर्म के संबंध में कहा जा सकता है। धर्म का समूचा ताना वाना व्यक्ति केंद्रित है और व्यक्ति समाज का अंग है। व्यक्तियों से समाज बनता है, इसलिए व्यक्ति के आचरण पर बल देकर पूरे समाज के लिए विवेकशील चिंतनशील व्यक्तित्व का निर्माण ही धर्म की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। जिस समाज का हर व्यक्ति सदाचारी सुशिक्षित विवेकी और नेक होगा वो समाज भी सुखी और संपन्न होगा। आइए अब जरा धर्म और सामाजिक न्याय के संबंध में विचार करें। यद्यपि धर्माचार्यों ने कहीं भी सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया है, किंतु ऐसे अनेक नियम विधान अवश्य बनाए हैं जो सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं। धर्म कर्म को परलोक और मोक्ष से जोड़कर अत्यंत रहस्यमयी अनिवार्यता बना दिया गया। जो कार्य आज शासन लोक कल्याण की योजनाएं बनाकर कर रहा है, सामाजिक निकाय का वो कार्य बिना किसी नामकरण के कर दिया है। आज विश्व में प्रचलित हर धर्म दर्शन में ऐसे अनेकों कार्यों को अनुमोदित और अनुप्रेरित किया गया है जिसका उद्देश्य समाज के निर्बल साधनहीन रोगी अपाइस और कोड़ी लोगों को भोजन वस्त्र आदि मुहैया कराना रहा है। भूखों और अपाइजों को अन्नदान वस्त्रदान देना, निर्बलों की सेवा दान दक्षिणा जैसे धार्मिक कार्य सामाजिक न्याय के अनूठे उदाहरण हैं और भारतीय दर्शन और धर्म विधान ऐसे अनेकों सत्कार्यों की शिक्षा देता है। भारतीय धर्म दर्शन में चींटियों को चुमाना कौओं को खाना खिलाना भी धर्म कर्म की कोटि में रखा गया है, जो न केवल मनुष्य वरन जीव मात्र के पोषण की शिक्षा है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म ईसाई धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म सिख धर्म में दान गरीबों को अन्न वस्त्र देने भोजन खिलाने की व्यवस्था की गई है। धर्मशालाएं कुआं रैन बसेरा बनाने की प्रेरणा दी गई है। इस्लाम धर्म में तो हर व्यक्ति को अपनी आय का निश्चित अंश गरीबों अपाहिजों जरूरतमंदों मजलूमों पर व्यय करने का निर्देश दिया गया है। यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया है और तुमने खाना खा लिया है तो तुम्हारा खाना हराम।

0: कहने वाला धर्म चिंतन सामाजिक न्याय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धर्मशाला बनाना, प्यासों के लिए कुएं बनवाना, सराय बनवाना और रैन बसेरा का निर्माण करने का उद्देश्य मात्र साधनहीन लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना ही तो रहा है। ये समस्त कार्य धर्म के कार्य माने गए हैं। विश्व के हर धर्म दर्शन में किसी न किसी नाम और रूप में इन कार्यों को प्रोत्साहित किया गया है। ये हमारा अपना दुर्भाग्य, अपनी संकीर्णता और अज्ञानता है कि आज हम धर्म के सार्वभौम स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं।
1: अभी आप सुविचार में धर्म और सामाजिक न्याय के बारे में सुन रहे थे, स्वर आशाराम मिश्रा का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

श्री गणेश शुभ तत्व की निर्माता हैं। अतः प्रातः काल ही श्री गणेश जी का स्मरण करने से हमारा संपूर्ण दिन शुभ आनंदमय और निर्विघ्न व्यतीत होता है।

राम से बढ़कर है राम का नाम। जिसने भी राम नाम को आधार बनाया उसका जीवन सुगम हो गया। हे मन, तू संसार की विषय वासना और विकारों से प्रीति तोड़कर श्री राम नाम का जप कर ले।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति की इस धारा प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए अब हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 191।

कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। कुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक IFFCO।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना 16

0: और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।

0: भारतीयर्थविभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामि दिवसद्वयपर्यन्तं हरियाणा चण्डीगढ़ दिल्ली छत्तीसगढ़ झारखंड गुजरात गोवा महाराष्ट्रांध्र प्रदेश तेलंगाना पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडित्पातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साधन की जो सिर्फ सवारी का माध्यम नहीं बल्कि पर्यावरण, सेहत और बचपन की यादों से भी जुड़ा है। आज है विश्व साइकिल दिवस, एक दिन जो हमें ये याद दिलाता है कि साइकिल कोई पुरानी चीज नहीं बल्कि आज के समय की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल साइकिल चलाने को बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि ये भी बताना है कि कैसे साइकिल सामाजिक समरसता, पर्यावरण की रक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाती है। हमारे देश में साइकिल का इतिहास बहुत पुराना है। एक समय था जब साइकिल घर में होने का मतलब होता था आत्मनिर्भरता और सादगी। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या काम पर जाने वाले बड़े लोग, साइकिल हर किसी की जीवन शैली का हिस्सा हुआ करती थी। साइकिल चलाना न केवल एक अच्छा व्यायाम है बल्कि ये हमारे पूरे शरीर को सक्रिय करता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे पैरों की मांसपेशियां, दिल की धड़कन और फेफड़ों की क्षमता सब एक साथ काम करने लगते हैं। रोजाना 20 से 30 मिनट साइकिल चलाना शरीर को फिट रखने में काफी सहायक होता है। ये मोटापे को कम करने, मधुमेह को नियंत्रित करने, उच्च रक्तचाप को संतुलित रखने और हृदय को मजबूत बनाने में मदद करता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये व्यायाम बिना किसी जिम फीस के, बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है। बस एक साइकिल चाहिए और थोड़ा सा समय। बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन आदत है। सुबह सुबह अगर बच्चे साइकिल लेकर पार्क जाएं, खेलें, हंसें तो न केवल उनका शरीर चुस्त रहता है बल्कि उनकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। किशोरावस्था में साइकिल चलाने से शरीर में स्टेमिना विकसित होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। और यही नहीं, ये आत्मनिर्भरता की भावना भी पैदा करता है। खुद स्कूल जाना, खुद बाजार जाना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना, इन सब में साइकिल साथी बनती है। आज के समय में जब गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक की भीड़ और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तब साइकिल हमें सादगी और पर्यावरण से जुड़ाव की ओर वापस ले जाती है। ये न केवल प्रदूषण मुक्त होती है बल्कि शहरों में ट्रैफिक को भी कम करती है। कल्पना कीजिए अगर हम सप्ताह में 2 दिन भी अपने छोटे छोटे कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, जैसे कि बाजार जाना, ऑफिस के पास की दूरी तय करना, तो इसका प्रभाव न केवल हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा बल्कि पर्यावरण भी हल्का सांस ले सकेगा। महिलाओं के लिए भी साइकिल एक सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अब तक लड़कियों की स्कूल जाने की संख्या सीमित थी, वहां सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा साइकिल वितरण योजनाओं ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब लड़कियां आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती हैं, समय पर आती जाती हैं और शिक्षा की राह पर आगे बढ़ती हैं। साइकिल उनके लिए न केवल एक वाहन है बल्कि स्वतंत्रता का एक माध्यम भी बन चुका है। बुजुर्गों के लिए भी साइकिल चलाना हल्के व्यायाम का उत्तम विकल्प हो सकता है। कुछ लोग सुबह के समय शांत रास्तों पर आराम से साइकिल चलाते हैं। इससे उनके जोड़ों में लचीलापन बना रहता है और शारीरिक गति बनी रहती है। निश्चित रूप से उम्र के अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन जहां तक संभव हो साइकिल से

भी नहीं बनानी चाहिए। आज के दिन हमें ये समझना होगा कि अगर हम साइकिल जैसी सादगीपूर्ण चीज को अपने जीवन में फिर से अपनाएं, तो वो हमें एक नई ऊर्जा, शांति और स्वास्थ्य दे सकती है। कई देशों में तो अब साइकिल फ्रेंडली शहर बनाए जा रहे हैं, जहां पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए अलग रास्ते बनाए जाते हैं। भारत में भी कुछ शहरों में ये प्रयास शुरू हो चुका है और हमें इस दिशा में और पहल करनी होगी। श्रोताओं, आज विश्व साइकिल दिवस पर हम क्यों ना एक संकल्प लें कि हम सप्ताह में कम से कम 2 दिन साइकिल चलाएंगे।

है और हमें इस दिशा में और पहल करनी होगी। श्रोताओं, आज विश्व साइकिल दिवस पर हम क्यों ना एक संकल्प लें कि हम सप्ताह में कम से कम 2 दिन साइकिल चलाएंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, खुद बताएंगे और दूसरों को भी इसके फायदों के बारे में बताएंगे। ये छोटे छोटे कदम हमारी सेहत, पर्यावरण और समाज तीनों के लिए वरदान बन सकते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

अभी आप विश्व बाइसिकल दिवस पैडल से जुड़ी सेहत और सादगी की कहानी विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा संपन्न हुई। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला प्रसारित होगी रात 11:10 पर। विषय है मध्यम वर्ग कल्याण। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8:00 धर्मराज उपाध्याय से सुनिएगा काव्य पाठ, वाचन एवं संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी प्रयागराज मरकज की पेशकश, सुनिएगा मकाला। मौजू है शिबली नुमानी की मायनाज तसनीफ शेरुल अजम। मकाला निगार हैं प्रोफेसर सालेहा रशीद। इसके बाद कलामी शायर के तहत आप सुनेंगे डॉक्टर जफर उल्ला अंसारी से उनका कलाम। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज लखनऊ और गाजियाबाद जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व बाइसिकल दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात 10:30 पर सुभांत मुखर्जी का वायलिन वादन प्रसारित होगा। दिन में 1:15 पर आंगनवाड़ी कार्यक्रम में मातृत्व की सही आयु अधिक उम्र में मातृत्व क्या आती हैं दिक्कतें विषय पर डॉक्टर पुष्पलता शंखवार प्रोफेसर स्त्री एवं प्रसूति KGMU लखनऊ से की गई भेंटवार्ता बहने सुनेंगी। भेंटकर्ता हैं नीना सोनकर। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर डॉक्टर राम कुमार सिंह से भेंटवार्ता का विषय है धान की सुगंधित प्रजातियां। भेंटकर्ता हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर फिट इंडिया के अंतर्गत ओबी पर आधारित कार्यक्रम कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संस्कृति स्वस्थ दफ्तर सशक्त जीवन आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान प्रसारित होगा। विषय है फल फूल और सब्जियों में सामयिक प्रबंधन, फलदार पौधों की सघन बागवानी, खरीफ में सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मौन पालन और शहद उत्पादन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पंकज नौटियाल वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र 2 संडीला हरदोई। शाम 7:31 पर कानून की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे के गाए अवधि युगल गीतों का आनंद आप ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर कमाल अहमद खान की गाई गजलें पेश की जाएंगी। पुरानी फिल्मी नगमे सुनिएगा ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम में रात 10:00। पतवा ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातों बातों में श्रोता सुनेंगे शाम 7:45 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके

गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विश्व बाइसिकल दिवस। आज हम एक ऐसे साधन की बात करने जा रहे हैं जो साधारण दिखता है लेकिन जिसका महत्व असाधारण है। एक ऐसा साथी जो न केवल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व बाइसिकल दिवस की, जो प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। साइकिल केवल दो पहियों का वाहन नहीं बल्कि यह संतुलन, सरलता, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज जब दुनिया प्रदूषण, बढ़ती बीमारी, ईंधन संकट और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब साइकिल एक ऐसा समाधान बनकर सामने आती है जो सस्ता भी है, सरल भी और टिकाऊ भी। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने साइकिल के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत की, ताकि लोगों को इसके लाभों के प्रति जागरूक किया जा सके। मित्रों, यदि हम अपने बचपन की यादों में जाएं, तो साइकिल से जुड़ी अनेक मधुर स्मृतियां सामने आती हैं। किसी ने साइकिल चलाना सीखते समय गिरकर फिर उठना सीखा होगा, तो किसी ने पहली बार साइकिल मिलने पर खुशी का अनुभव किया होगा। साइकिल हमें केवल रास्तों पर चलना नहीं सिखाती बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखना भी सिखाती है। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। यही संदेश जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी बन गया है। आधुनिक जीवन शैली में लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं और परिणाम स्वरूप मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में साइकिल चलाना एक उत्कृष्ट व्यायाम है। यह हृदय को मजबूत बनाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, मांसपेशियों को सक्रिय रखता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। प्रतिदिन कुछ समय साइकिल चलाने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, व्यक्ति स्वयं को अधिक स्वस्थ एवं प्रसन्न महसूस करता है। विश्व साइकिल दिवस हमें पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। आज वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों प्रभावित हो रहे हैं। साइकिल एक ऐसा वाहन है जो ना धुआं छोड़ता है और ना ही शोर पैदा करता है। यह पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल साधन है। यदि छोटी छोटी दूरियों के लिए अधिक लोग साइकिल का उपयोग करें तो प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। साथियों, साइकिल आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं, इसके रखरखाव का खर्च भी कम होता है। यही कारण है कि यह समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लाखों लोग शिक्षा, रोजगार और दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। अनेक विद्यार्थियों के लिए साइकिल शिक्षा तक पहुँचने का माध्यम है। यह उनके सपनों को गति देने वाली साथी बन जाती है। आज दुनिया के अनेक देशों में साइकिल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं, लोगों को साइकिल उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

है और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की अवधारणा को मजबूत किया जा रहा है। भारत में भी कई शहरों में साइकिल चलाने के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। विशेष रूप से युवा वर्ग फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर साइकिल को अपना रहा है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन का संदेश है। विश्व साइकिल दिवस का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह भी है, समानता और समावेशन। साइकिल किसी विशेष वर्ग की नहीं, यह अमीर और गरीब, युवा और बुजुर्ग, महिला और पुरुष सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह सामाजिक समानता का प्रतीक भी है। जहां आधुनिक वाहन कभी कभी सामाजिक विभाजन को दर्शाते हैं, वहीं साइकिल सरलता और समान अवसर का संदेश देती है। आज डिजिटल युग में बच्चे और युवा मोबाइल तथा कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं। इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे समय में साइकिल उन्हें खुले वातावरण से जोड़ सकती है। साइकिल चलाने से बच्चों का शारीरिक विकास बेहतर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रकृति के साथ उनका संबंध मजबूत होता है। इसलिए अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करें। श्रोताओं, साइकिल हमें धैर्य, अनुशासन और निरंतरता का भी पाठ पढ़ाती है। जैसे साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पैडल मारना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। यदि हम रुक जाते हैं तो प्रगति भी रुक जाती है। साइकिल का यह सरल सिद्धांत जीवन की बड़ी सीख बन जाता है। कभी आगे कभी पीछे ये साइकिल।

आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जहां संभव हो छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे। इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण मिल सकेगा। यह केवल व्यक्तिगत लाभ का नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हित का भी विषय है। अंत में यही कहा जा सकता है कि साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वस्थ पर्यावरण और सतत विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक सशक्त कदम है। आइए विश्व साइकिल दिवस पर हम साइकिल के महत्व को समझें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें और एक ऐसे भविष्य के निर्माण में योगदान दें जहां विकास और प्रकृति के साथ साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको

0: एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है। उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
3: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। CBSE के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
4: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले

0: 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट डालें।
2: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने 2 दिवसीय आगरा दौरे के दौरान कल वहां के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के आगरा जिले के बिरहरू ग्राम पंचायत को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार आज नई दिल्ली में यह सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का विशेष आभार जताया।
3: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, RRC सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
1: वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी वाराणसी डॉ. राम नरेश पाल ने बताया कि प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
4: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918

0: बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
4: ये मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में, अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिए सुशांत मुखर्जी का राग अहीर भैरव और राग बसंत मुखारी में वायलिन वादन। पहले सुनिए सुशांत मुखर्जी का राग अहीर भैरव में वायलिन वादन। विलंबित छपताल में निबद्ध है, मध्य लय एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत प्रमोद कुमार मिश्र ने की है।

अभी आप सुशांत मुखर्जी का वायलिन पर बजाया राग अहिर भैरव सुन रहे थे। अब सुनिए सुशांत मुखर्जी का ही राग बसंत मुखारी में वायलिन वादन, विलंबित तीन ताल में निबद्ध है द्रुत तीन ताल में।

शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

अभी हमारी श्रोता सुशांत मुखर्जी का वायलिन पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रही थी। तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। इसी के साथ

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और

0: नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की

0: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रूपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त

0: राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी के शिव कुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत आज से ख़त्म कर दी है। और ख़वातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावी मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हरा कर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा मईशत खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिग्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी, तजारत और सरमायाकारी, दवा साजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई, दवा साजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत की ब्रिक्स सदारत में आज ओडिशा के शहर पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली जाती तौर पर तकनीकी मीटिंग शुरू हो रही है। इस 3 रोजा मीटिंग में 11 ब्रिक्स और पार्टनर ममालिक के मंदुबीन, पॉलिसी साज और आफात के बंदोबस्त के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आलमी खित्ते जनूब में आफात के ताल्लुक से लचकदारी को मुस्तहकम करने, पायदार तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी के शिव कुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में वाकई लोक भवन में जनाब शिव कुमार और नई काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इससे पहले जनाब सिद्धरमैया के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जनाब शिव कुमार के लिए इस आला ओहदे के लिए रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में लंबे अरसे से इकतदार के लिए जारी रस्साकशी भी खत्म हो गई। जनाब शिव कुमार को 2023 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत के वक्त से ही इस आला ओहदे के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। जुमेरात को जनाब सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में वाकई अपनी रिहाइशगाह पर सुबह मुनाकिद होने वाली एक मीटिंग में अपनी काबीना के वुजरा को अपने इस्तीफे के ताल्लुक से बताया था और इस बात का इशारा दिया था कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत के मुताबिक जनाब शिव कुमार वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत आज समाजी फलाह बहबूद की एक बड़ी पहल अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में अन्नपूर्णा योजना के मुस्तफिदीन तमाम ब्लॉक्स, म्यूनसिपल्टियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। मकामी सतह पर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अरकान असेंबली को मकामी सतह पर प्रोग्रामों में मदू किया गया है और वजीर आला का असल प्रोग्राम तमाम ब्लॉक और म्यूनसिपल हेडक्वार्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बराह रास्त नशर किया जाएगा। वजीर आला के इफ्तिताही खिताब के फौरन

0: फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की एक दो रोज़ा मीटिंग मुनाकिद करेगा। ये मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में पंचायत और ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेना है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती कौंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दतकार अक्टूबर-नवंबर 2023 और ज़िला तरक्याती कौंसिलों की मुद्दतकार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। ख्वातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावी मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है, 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को अहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जाँच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में BJP सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है, भारत और जनूबी अफ्रीका ने दो तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुरहमान को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा SJ शंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत आज से ख़त्म कर दी है। और ख़वातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावी मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हरा कर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजते रहिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। श्रोताओं, हमारे पास मेल आने शुरू हो गए हैं। पहला मेल हमारे पास आया है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का। दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का। आप सभी सुनना चाहते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राव्या रामटेके। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां। आप सभी सुनना चाहते हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

हमारे पास मेल आया है लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी का। आप सभी सुनना चाहते हैं प्रेम रोग फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास मेल भेजा है जनपद हरदोई से विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने, सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी ने। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म प्रेम रोग से।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और हमारे पास अगला मेल है जिला खरकौन सनावद मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, युषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाला और उनके सभी दोस्त, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, आप सभी सुन

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास मेल भेजा है मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप।

इसी गीत के लिए मेल है राजस्थान हनुमानगढ़ से, रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिस्मान खान का। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अब यहीं समाप्त हो रहा है। दीजिए इस कार्यक्रम से अंजलि श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए लखनऊ और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिनमें से लखनऊ भी एक था। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा,
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को

0: ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने 300 से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की सौगात दी, जिनमें से 198 उम्मीदवार भारतीय रेलवे का हिस्सा बने। श्री वर्मा ने कहा कि रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 मई को 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर प्रदेश की राजधानी पहुंचे। 6 मई की रात को उन्होंने लखनऊ के निजी होटल में फल निर्यातकों के साथ निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की। अगले दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाले केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में उन्होंने फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। श्री चौहान ने साफ कहा कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान लाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2026 को लखनऊ वासियों को विकास की सौगात दी। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 413 करोड़ की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायतों के चेयरमैन और लगभग 14,000 पार्षदों को 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा। उन्होंने कहा लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है, अब इसे पहले स्थान पर लाना है। श्री योगी ने कहा
0: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना है।
1: जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का काम लखनऊ में 7 मई 2026 से शुरू हुआ और 21 मई 2026 तक चला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों ने स्वगणना में भाग लिया। अब जनगणना के प्रथम चरण के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकान की गणना कर रहे हैं। 22 मई को शुरू हुआ यह कार्य 20 जून 2026 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और निदेशक शीतल वर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मकान की गणना के पहले दिन 1 करोड़ से अधिक मकान को सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ में जेठ मास के बड़े मंगलों की धूम मची हुई है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर से शुरू हुई यह परंपरा अब प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में प्रत्येक बड़े मंगल पर हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक हजारों भंडारे आयोजित हो चुके हैं। इस बार अधिमास लगने के कारण 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 मई को ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। 30 मई तक चले बकरीद पर्व पर लोगों ने कुर्बानी की परंपरा का निर्वहन किया। लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 के संस्करण में 7 मुकाबले लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेले गए, जिनका लुत्फ शहरवासियों के साथ साथ अन्य राज्यों और शहरों से आए लोगों ने भी उठाया। अब कान्हा स्टेडियम में 17 जून 2026 को भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला जाएगा।
2: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
3: भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के साथ साथ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के भी सपने पूरे हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि हर वर्ग को सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को रहने के लिए अपना छत मिली है जो किराए पर रहते थे। गाजियाबाद के रहने वाले पवन कौशिक ने बताया कि पहले वो किराए के मकान में रहते थे और हर एक 2-4 साल में उनको मकान बदलना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गाजियाबाद की बापूधाम योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। लाभार्थी पवन कौशिक ने बताया,
4: मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है वो GDA में फ्लैट आवंटन के लिए योजना निकाली गई है, तो मैंने उसमें 2020 में आवेदन किया था। अभी मुझे 1.5 महीने पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है, साथ के साथ कब्जा भी हो गया। सरकार ने बहुत अच्छा किया।
3: वहीं गाजियाबाद के अभिषेक कुमार कहते हैं,

0: एक मकान हर इंसान का सपना होता है। भारत सरकार ने मकान देकर निम्न वर्ग के सपने को पूरा किया। उन्होंने सरकार की भागीदारी से कम कीमत में उपलब्ध हुए मकान के लिए सरकार का आभार भी जताया। वहीं जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलान ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में बताया। सरकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर वो सुविधा देना चाहती है जिससे वह अपने आप को सक्षम महसूस कर सके। मकान हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। उस मकान को सरकार गरीबों के लिए भी आसानी से उपलब्ध करा रही है। उन्होंने जनपद गाजियाबाद में चल रही अन्य आवासीय योजनाओं के बारे में बताया और EWS के तहत भविष्य में आने वाली योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया,
1: सरकार की भी नीति है कि गरीब लोग अधिकतम से अधिकतम इसमें लाभान्वित हो। जो हमारे प्राधिकरण की खुद की योजनाएं हैं उसमें भी हम छोटे साइज के 40 स्क्वायर मीटर के, 60 स्क्वायर मीटर के, 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स जो कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ होते हैं उसको हम लॉटरी के माध्यम से अधिक जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
0: गाजियाबाद के सिकंदरपुर में बने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हवाई अड्डे का विस्तार 14 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इसमें से 6.8 एकड़ जमीन की खरीद को लेकर किसानों ने सहमति बनाने का जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शेष 7.2 एकड़ जमीन की खरीद के लिए सिकंदरपुर गांव के किसानों से अब जिला प्रशासन द्वारा वार्ता शुरू कर दी गई है। ऐसे में हिंडन हवाई अड्डे की उड़ान बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसे सीमित शहरों तक नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक होगी। इससे गाजियाबाद के विकास को पंख लगेंगे और आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी। शासन के निर्देश पर जनपद की 67,000 ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग, खेती करने, बैंकिंग कार्य करने सहित अन्य कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह को कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है। कम ब्याज पर बैंक से लोन दिलाया जाता है। वर्तमान में 2400 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। वित्तीय वर्ष 26-27 में सरकार ने जिले में 6,700 नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के निर्देश दिए हैं। एक महिला स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 10 महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे 67,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,700 महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार की एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल की सफलता के बाद अब ODOC एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसमें स्थानीय खान पान और स्वाद को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदेश द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना आवश्यक है। इसी क्रम में गाजियाबाद को सोया चाप के बाद हरी मिर्च के अचार को भी इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। जनपद में सोया चाप के कारोबार से 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। वहीं हरी मिर्च से तैयार अचार को भी एक जनपद एक व्यंजन योजना में शामिल किया गया है। इस अचार के निर्माण और व्यापार से 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
5: तुमने दी आवाज, दिलों में आ गया।
4: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
6: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ

0: क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सुनने वालों को शमीम का आदाब। सामईन हजरात, उर्दू अदब में जब भी तनकीदी अदब की बात होगी, हाली और आज़ाद के साथ शिबली का नाम भी लिया जाएगा। शिबली नुमानी ने मुख्तलिफ मौजू पर तनकीदी व तहकीकी किताबें लिखीं। सहाबाए कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर खामा फरसाई की, हालांकि उसको तकमील तक उनके शागिर्द ने पहुँचाया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिबली की दस्तरस अदब पर कितनी थी। बयक वक्त उर्दू, अरबी, फारसी व तारीख़ की किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ करना और इदारों में दर्स व तदरीस का काम अंजाम देना, इदारे कायम करना अहमियत के हामिल हैं।

0: कल यानी 4 जून को उनकी यौम विलादत है। इसी को जहन में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में प्रोफेसर सालेहा रशीद को मदु किया है। समात करिए मकाला शिबली नोमानी की माया नाज तसनीफ शेरुल अजम।
1: अल्लामा शिबली नोमानी का शुमार 19वीं सदी की उन नामवर हस्तियों में होता है जिन्होंने अपनी तलाश, जस्तजू, तहकीक और तनकीद के जरिए उर्दू अदब को न फकत वाफिर सरमाया अता किया बल्कि उसे एक खास मकाम तक पहुँचा दिया। दुनिया अदब आपको एक अजीम सवाने निगार, नक्काद और मुअर्रिख की हैसियत से याद करती है। आप 4 जून 1857 ईस्वी को बिनवल आजमगढ़ में पैदा हुए। आपके वालिद ने आपको उस वक्त के जैयद उलमा से फारसी, अरबी और दीगर राइज उलूम की तालीम दिलवाई। ताहम मौलाना फारूक चिड़ियाकोटी का नाम आपके मखसूस उस्ताद की हैसियत से लिया जाता है। आपने वकालत का इम्तिहान भी पास किया और कुछ वक्त के लिए वकालत की, मगर ज्यादा दिन तक आप उससे जुड़े ना रह सके। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के कायम करदा कॉलेज में अरबी व फारसी के उस्ताद की हैसियत से तकर्रुर मिला और अलीगढ़ चले गए, जहां सर सैयद की सोहबत से फैजियाब होने के मौके मिले। यहीं से शिबली की इल्मी व तहकीकी जिंदगी का आगाज होता है। यहां आपकी मुलाकात प्रोफेसर ऑर्नॉल्ड से हुई, जो एक मारूफ मुस्तशरिक और अलीगढ़ के MAO कॉलेज में फलसफा के उस्ताद थे, जिनके तवस्सुत से आपने मगरबी तहजीब व मुआशरत के महासिन जाने और मशरिकी तहजीब के साथ उसकी आमेजिश भी की। अलीगढ़ की मुलाजमत के दौरान शिबली ने तुर्की, शाम और मिस्र का सफर किया। 1898 ईस्वी में सर सैयद की वफात के बाद शिबली ने अलीगढ़ को खैरबाद कहा और अपने वतन वापस आकर अपने कायम करदा नेशनल स्कूल को फरोग देने में मसरूफ हो गए। फिर वो हैदराबाद गए और वहाँ 4 साल तक क्याम किया। हैदराबाद क्याम के दौरान ही शिबली ने मुतअद्दिद अहम शख्सियात की सवाने उमरियाँ, जैसे सवाने मौलाना रूम, अल गज़ाली, सादी, सीरत, अल फारूक, अल मामून, मौज़ने अनीसो दबीर वगैरह तालीफ की। इसके बाद वो लखनऊ आ गए और नदवतुल उलमा के तालीमी मामला देखने लगे। इसी असना आपने शेरुल अजम तालीफ की। शिबली खुद भी फारसी और उर्दू में शेर कहते थे। आपकी फारसी गजलों को शराबे दो आतशा कहा गया। इसके अलावा बेशुमार तनकीदी व तहकीकी मजामीन लिखे, इस गरज से कि तारीख दानी और तारीख नवीसी का रुझान आम हो सके। आपका ख्वाब था कि एक ऐसा इदारा कायम हो जहां उलमा और मुहक्किकीन जमा होकर इल्मी तहकीक और इशात का काम अंजाम दें। 1913 ईस्वी से आपने इस मुहिम पर काम करना शुरू कर दिया था, मगर उम्र ने साथ ना दिया और 18 नवंबर 1914 को आपने इस दारे फानी को खैर बात कह दिया। अल्लामा शिबली नोमानी की शोहरे आफाक तालीफ शेरुल अजम फारसी शायरी की तारीख और तनकीद का मंबा है। ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसकी 4 इब्तदाई जिल्दें उनकी जिंदगी में, जबकि 5वीं जिल्द उनकी वफात के बाद मंजरे आम पर आई। मौजूआती एतबार से देखें तो हिस्सा अव्वल में फारसी शायरी की तारीख, जिसके ज़ैल शायरी की इब्तदा, उसकी अहद बहद तरक्की, खसूसियात और असबाब पर मुफस्सल गुफ्तगु और मशहूर शोरा का तफसीली जिक्र और उनकी शायरी पर तकरीर और तनकीद है। शिबली ने फारसी शोरा के 3 दौर उदमा, मुतवस्सितीन और मुताखरीन के नाम से कायम किए हैं। पहला दौर जो कदमा का है वो हंजला से शुरू होकर निजामी पर, दूसरा कमाल इस्माइल से लेकर जामी तक और तीसरा जो मुताखरीन का दौर है वो फुगानी से लेकर अबू तालिब कलीम पर ख़त्म होता है। पहले हिस्से में तमहीद और सबब तालीफ, शेरुल अजम के माखज, मसलन नाम किताब, लुबाबुल अलबाब, नाम मुसन्निफ, औफीयस्ती, कैफियत के ज़ैल में लिखते हैं। सबसे पहला तस्करा है मुसन्निफ 7वीं सदी हिजरी में था और अपने अहद तक के हालात लिखे हैं। प्रोफेसर ब्राउन ने तस्वीर

0: गजल कहने के दिन थे जो गजल गाने के दिन। याद आते हैं तेरी जुल्फों के बल खाने के दिन, जो गजल कहने के दिन थे जो गजल गाने के दिन। फूल जैसा अपना चेहरा है जो मुरझाया तो क्या, फूल जैसा अपना चेहरा है जो मुरझाया तो क्या। मुस्कुरा उठेंगे हम भी तेरे आ जाने के दिन। फूल जैसा अपना चेहरा है जो मुरझाया तो क्या, मुस्कुरा उठेंगे हम भी तेरे आ जाने के दिन। क्या तुझे इसकी खबर है ऐ बुते मस्ते शबाब, क्या तुझे इसकी खबर है ऐ बुते मस्ते शबाब। किस तरह से कट रहे हैं तेरे दीवाने के दिन, क्या तुझे इसकी खबर है ऐ बुते मस्ते शबाब। किस तरह से कट रहे हैं तेरे दीवाने के दिन, काट लेंगे उनको आसानी से हम खाना खराब। काट लेंगे उनको आसानी से हम खाना खराब, वो हकीकत के हो दिन चाहे वो अफसाने के दिन। काट लेंगे उनको आसानी से हम खाना खराब, वो हकीकत के हो दिन चाहे वो अफसाने के दिन। ये खबर सुनकर न क्यों हो बुलबुले शैदा उदास, ये खबर सुनकर न क्यों हो बुलबुले शैदा उदास। आ गए हैं बाग में फूलों के मुरझाने के दिन, ये खबर सुनकर न क्यों हो बुलबुले शैदा उदास। आ गए हैं बाग में फूलों के मुरझाने के दिन, कायनाते दिल में फैली है उदासी दूर तक, कायनाते दिल में फैली है उदासी दूर तक। हैं ये पैगाम वफा हर समत फैलाने के दिन, फूल उम्मीदों के हर सू मुस्कुराएंगे यहाँ, फूल उम्मीदों के हर सू मुस्कुराएंगे यहाँ। देखना एक दिन फिरेंगे मेरे वीराने के दिन, फूल उम्मीदों के हर सू मुस्कुराएंगे यहाँ। देखना एक दिन फिरेंगे मेरे वीराने के दिन। आज तक हम तशना लब हैं बस इसी उम्मीद पर, आज तक हम तशना लब हैं बस इसी उम्मीद पर। जाने कब गुजरेंगे तेरे साथ मैखाने के दिन, आज तक हम तशना लब हैं बस इसी उम्मीद पर। जाने कब गुजरेंगे तेरे साथ मैखाने के दिन। क्यों न वो बामे तकब्बुर से उतरते हैं जफर, क्यों न वो बामे तकब्बुर से उतरते हैं जफर। हैं यही अहदे वफा के गर्चे दोहराने के दिन, याद आते हैं तेरी जुल्फों के बल खाने के दिन, जो गजल कहने के दिन थे जो गजल गाने के दिन।
1: डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी के कलाम के साथ ही आज का उर्दू प्रोग्राम खत्म होता है।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इसमें सुनिए कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे के युगल स्वरों में अवधि लोकगीत। सबसे पहले इनके आवाजों में हम आपको सुनवाते हैं ये देवी गीत।

कैसे मैं दर्शन पाऊं। अभी आप कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे की आवाजों में ये देवी गीत सुन रहे थे, और इन्हीं की आवाजों में अब हम आपको सुनवाते हैं दादरा।

0: अभी आप कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे के युगल स्वरों में ये दादरा सुन रहे थे। संगत कर रहे थे नाल पर सत्यम शिवम सुंदरम सिंह, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर थे मुकेश कुमार और साइट रिदम पर गौरव गुप्ता। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया,

0: कि वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए फकीरा फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत में साथ दिया है लता मंगेशकर ने।

फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला

0: किला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और लोगों को संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि चीन ने मौजूदा क्षेत्रीय संकट के दौरान ईरान को सैन्य सहायता दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास चीन में बने कुछ सैन्य उपकरण जरूर हैं, लेकिन हाल के संघर्ष में चीन की किसी भी ऐसी कार्रवाई का पता नहीं चला है जिससे सैन्य संतुलन प्रभावित हुआ हो। श्री रूबियो ने चीन से अपील की कि वो संयुक्त राष्ट्र में अधिक रचनात्मक भूमिका निभाए, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात सुचारू रखने के प्रयासों में। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य नीति का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक हथियारों की क्षमता को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। श्री रूबियो ने दावा किया कि हाल के अमरीकी सैन्य अभियानों से ईरान की सैन्य क्षमता में काफी गिरावट आई है। ईरान की नौसेना अब काफी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी कार्रवाई में ईरान के ड्रोन उत्पादन ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि कुवैत और बहरीन की ओर दागी गई ईरान की मिसाइलें या तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई या उन्हें बीच में ही रोक लिया गया। सेना ने यह भी कहा कि इसके बदले में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमान के अनुसार ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट क्वेश्म द्वीप पर स्थित ईरानी सैन्य जमीनी नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाकर किए गए। इस द्वीप पर एक डिसेलिनेशन संयंत्र भी है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी सेना ने कहा कि कुवैत की ओर दागी गई दो मिसाइलें रास्ते में ही नष्ट हो गईं, जबकि बहरीन की ओर दागी गई मिसाइलों को अमरीका और बहरीन की सेनाओं ने बीच में ही रोक लिया। स्थानीय मीडिया खबरों के अनुसार ये घटनाक्रम तब सामने आए जब ईरान ने युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने के संबंध में मध्यस्थों से बातचीत बंद कर दी। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि बातचीत जारी है। एक अन्य घटनाक्रम में अमरीका की सेना ने कहा कि उसने अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे तेल टैंकर को रोकने के लिए एक मिसाइल दागी। सेना ने कहा कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में रोका गया ये 7वां जहाज था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत विदेश विभाग को यह निर्धारित करना होगा कि क्या चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ नरसंहार या मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं। इससे मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर चीन पर कांग्रेस का दबाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यूजर्सी के रिपब्लिकन सांसद क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद टॉम स्वोजी ने कल तिब्बत अत्याचार निर्धारण अधिनियम पेश किया। इसके अंतर्गत विदेश मंत्री को अधिनियम लागू होने के एक

0: वर्ष के भीतर तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों का आकलन करते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस विधेयक में तिब्बत के बौद्ध धर्म के चीन के अनुसार और तिब्बती भाषा और संस्कृति के दमन के उद्देश्य से चीन की सरकार की कार्रवाइयों की समीक्षा का भी प्रावधान है। रिपोर्ट में विदेश विभाग के निष्कर्षों और तीसरे पक्ष के विश्लेषणों का उपयोग किया जाएगा और प्रतिबंधों, वीजा प्रतिबंधों और राजनयिक उपायों सहित अमरीका की संभावित प्रतिक्रियाओं की सिफारिश की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के तहत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के तहत अब प्रथम वर्ष के 100 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। ये सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए अभियानों में 17 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के अनुसार पिछले महीने क्वेटा के निकट हुई ट्रेन बम विस्फोट की घटना के बाद मस्तुंग, नुश्की, जेहरी, खुजदार और केच जिलों में ये अभियान चलाए गए। इस विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। आज विश्व साइकिल दिवस है। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिल गया। SAAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का सामना सेमीफाइनल में भूटान से होगा। ये मुकाबला गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम ग्रुप बी में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान। विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
5: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
4: एक ऐसा कार्यक्रम
5: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
4: विकास की बातें, संगीत की मिठास
5: और एक नए भारत की आवाज़।
4: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
5: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: आइए जुड़िए।

0: जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन माहे बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आकाशवाणी लखनऊ में अब आप सुन लेंगे कार्यक्रम चितपट से, इसमें सुनिए कुछ नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है ब्रह्मास्त्र फिल्म से, आवाज है अरिजीत सिंह की।

गीत राजशेखर का, संगीत वैभव पाणी का, आवाजें हैं विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की, और फिल्म का नाम है सैयारा।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी को फिल्म केदारनाथ में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं के आवाज़ में फिल्म जहर का गीत।

0: रीजन तो बता दो ना बोलने का।
1: सिर्फ ना काफी नहीं है क्या?
2: अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल और नीति मोहन को फिल्म दो दीवाने शहर में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह को फिल्म जीनियस में।

0: और फिल्म जहर के इस गीत के साथ ही क्षमा कीजिएगा, फिल्म जीनियस के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। और आज मैं आपकी साथी विभा श्रीवास्तव हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन करके अपनी मनपसंद फिल्मी गाने सुनते हैं और करते हैं हमसे अपनी बात। तो आपको फ़ोन नंबर बता देते हैं जिस पे कि नए श्रोता भी हमसे जुड़ सकें। फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। तो चलिए शुरू करते हैं सुरों की शानदार महफिल और देखते हैं हमारे साथ हमारे पहले कॉलर कहाँ से हैं और उनकी फरमाइश क्या है। तो जुड़ते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: हाँ कैसे हैं आप, अपना परिचय दीजिए।
1: बढ़िया है आप?
0: बस हम भी ठीक हैं, हम बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, अब पहले अपना परिचय दीजिए जिसमें कि हम आपका नाम जान सकें आपका पता जान सकें। क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम सनमान सिंह कुशवाहा, ग्राम बामोर यशवंतपुर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा सनमान सिंह कुशवाहा। चलिए भाई बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। तो और बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। और कोई बगीचा

0: करते हैं मैम, तो बगीचे में लगे रहते हैं।
1: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, बगीचे में लगे रहते हैं। तो आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए?
0: बोल राधा बोल का कोई सा भी सुना दीजिए।
1: चलिए तो बोल राधा बोल का टाइटल सॉन्ग ही आपको सुना देते हैं
0: जी।
1: ठीक है चलिए,
0: तो हमारे इनसे बात कर ले थोड़ी
1: आप। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ नमस्कार, चलिए।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: हाँ चलिए भाई, आपकी पसंद का आपको गीत सुनवा देते हैं, आप सब लोग सुनिए। ठीक है
2: हाँ
1: ठीक है, नमस्कार
2: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो आपको एक बार नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0522-223-8825 0522-223-8825 और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो
1: हेलो जी नमस्कार
0: नमस्कार कैसे हैं आप
1: जी? नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बताइए विश्वजीत जी कैसे हैं आप?
1: मैं तो ठीक हूँ, ज्यादा गर्मी धूप है तो इसीलिए बहुत ही दिक्कत आ रही है, बारिश तो नहीं हो रही है।
0: हाँ, अब बारिश का मौसम आ रहा है, अब बारिश का मौसम आ रहा है, मानसून आएगा ज़रूर। और भाई गर्मी और सर्दी सब अपने मौसम अपनी तरीके के होते हैं, गर्मी में गर्मी तो पड़ती है, बस उसी को थोड़ा सा हम लोग को एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि गर्मी में थोड़ा सा हम लोग को सतर्क रहना पड़ता है कि गर्मी ना लग जाए, धूप ना लग जाए।
1: हाँ
0: बहुत ज़रूरी है, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और सर को ढक के चलिए, ये सब करना चाहिए। तो आज
1: तो
0: विश्वजीत जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप बताइए। हेलो,
1: मुझे गाना सुना दीजिए, बड़ी अच्छी लगती है फिल्म से।
0: आप मुझे अच्छे लगने लगे, शायद यही आप कहना चाहते हैं।
1: जी जी जी, जी आप मुझे अच्छे लगने लगे उसको टाइटल सॉन्ग सुनी दीजिए।
0: ठीक है जी, लीजिए।
1: तो मेरे दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
0: जल्दी जल्दी से नाम ले लीजिए जिसमें कि गाना सब दोस्त आपके सुन ले।
1: जी जी जी जी, तो मेरे साथ है, मेरे भैया जी है, अविनाश भैया है और आशुतोष भैया है और जितना भी श्रोता अभी सुन रहे हैं, मेरे भगवान भैया है।
0: हाँ, सबके जितने आपके सुनने वाले हैं
1: और अभी सुनेगा। ठीक है
0: ठीक है, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बस हम भी ठीक हैं। और पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: नाम राम प्रसाद,
0: राम प्रसाद जी, बहुत बहुत
1: ग्राम
0: स्वागत।
1: अजनी, जिला हरदोई से। जी
0: अच्छा, हरदोई से बोल रहे हैं। तो राम प्रसाद जी, बताइए आज कौन सा
1: गीत
0: गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आदमी खिलौना है फिल्म का है,
0: अच्छा, आदमी खिलौना।
1: और गाने के बोल हैं बहुत बहुत सताते हो चाह हमसे। जी
0: अच्छा चलिए भाई, आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं।
1: हमारे मित्र के नक्शेदार हैं प्रभुदयाल, उनका फोन निकाल नहीं लगता, तो
0: अच्छा
1: उनके लिए डेलीगेट रहेगा।
0: चलिए भाई, उनके लिए डेडिकेट रहेगा, और उनसे कहिएगा फोन मिलाते रहें, एक ना एक दिन जरूर लगेगा फोन। ठीक है?
1: प्रयास ही नहीं करते हुए
0: हाँ, तो जब प्रयास नहीं करते तो फोन कैसे लगेगा, प्रयास करेंगे तभी फोन लगेगा। ये बात है ना। चलिए ठीक है, फिर आपको सुनो।
1: हम उन्हीं के यहाँ बैठे हैं।
0: चलिए भाई, आप सबकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं। ठीक है?
1: जी जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। क्या क्या पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
1: जी, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी,
0: भगवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो हमारे नियमित श्रोता
1: आपका
0: हैं और आपके जितने
1: दीदी
0: दोस्त हैं वो भी आपको गाने बहुत सुनवाते हैं।
1: जी हाँ दीदी, और जी मेरा आकाशवाणी लखनऊ में सबसे ज्यादा कॉल दीप्ति जोशी के जी के पास, आपके पास,
0: हाँ,
1: बद्रिका दुबे जी के पास और मंजरी निगम जी के पास बहुत सारे कॉल लगे हैं जी।
0: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आपसे हमारी बात होती है और आपकी पसंद के गाने हम आपको सुनवाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो बताइए भगवान सिंह परमार जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और
0: हाँ
1: गाने को बोले मेरा सनम सबसे प्यारा है, और आपको डेडिकेट रहेगा दीदी, जो जो जो श्रोता बहनों भाई सुन रहे हैं
0: सबके
1: सभी को
0: लिए
1: लाइव,
0: डेडिकेट,
1: सभी को
0: बिल्कुल
1: डेडिकेट रहेगा।
0: सबके लिए डेडिकेट। चलिए भाई, धन्यवाद आपको इस गाने के लिए। और ये गाना गाया है आशा भोसले, कुमार सानू ने, तो आप सबकी पसंद पे ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो सर।
0: नमस्कार।
1: हाँ आप श्रवण कुमार शुक्ला बोल रहे हैं,
0: हाँ
1: जिला सीतापुर,
0: हाँ
1: ग्राम बराई खेरा पोस्ट शाहजलालपुर।
0: चलिए भाई श्यामा कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहे में। तो श्रवण कुमार जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते
1: हाँ
0: हैं?
1: सर, हम तो किसानी करते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है
1: हमारे
0: भाई।
1: दो बच्चे हैं सर, तो दोनों पुलिस पोस्ट में हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: एक डीजीपी ऑफिस लखनऊ में है
0: हाँ,
1: और एक पुलिस कमिश्नर के यहाँ कानपुर में।
0: चलिए भाई बहुत अच्छी
1: और हम लोग
0: बात है।
1: बहुत छोटे काश्तकार थे, लेकिन
0: हाँ
1: लेकिन हमारा ये कहना है, कदम चूम लेती है चल करके मंजिल,
0: हाँ
1: मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने श्रवण कुमार जी, आपकी यही हिम्मत आपके बच्चों को बहुत आगे ले जाएगी। तो
1: हाँ
0: बताइए
1: सर,
0: हाँ श्रवण कुमार जी, आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए?
1: हम सर शोले फिल्म का सुनना चाहते हैं, धर्मेंद्र हेमा मालिनी का।
0: अच्छा चलिए भाई सुनवा देते हैं
1: और
0: आपको।
1: जितने भी सब सुन रहे हैं वो आप सब लोग,
0: हाँ
1: और हमारा तो पहली बार लगा है फोन, तो
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपकी पहली
1: और
0: बार
1: हम
0: फोन
1: यहाँ
0: मिला।
1: सीतापुर के रहने वाले हैं सर,
0: हाँ
1: और लालता देवी के हम लोग छोटे मोटे भक्त हैं, तो कभी आइए तो माता जी

0: दर्शन करिए नैमिषारण्य।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नैमिषारण्य जरूर दर्शन तीर्थ स्थल है, बहुत अच्छा दर्शनीय है। तो चलिए भाई, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं शोले फिल्म से, ठीक है? चलिए, श्याम को नमस्ते।

0: और अब जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और देखते हैं उनकी फरमाइश क्या है। हेलो,
1: रात की चांदनी आपके आंगन में आए, हर तारा लोरी गा के सुलाए, और आए इतने हसीन ख्वाब कि आप नींद में भी मुस्कुराए।
0: क्या बात है, आपकी शायरी से आपका नाम तो हम जान ही गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय खुद दें। बताइए आपका नाम क्या है?
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, पालताना का इंदौर से।
0: हसीना जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, और बताइए क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक?
1: अच्छे मैडम, लखनऊ से जुड़े रहते हैं और लखनऊ जो सुनते हैं तो खुश रहते दिन भर।
0: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आप हमेशा खुश रहिए और लखनऊ आकाशवाणी लखनऊ सुनते रहिए। तो ये बताइए, आज कौन सा गाना चुना है आपने सुनने के लिए?

0: हेलो
1: मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और बताइए क्या हाल है आपके।
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं।
0: बस हम भी ठीक हैं। आप अपना परिचय दीजिए।
1: जी मैं नहीं जानी पहचान पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवरायबरेली से। जी
0: पिंकी जी, आप हमारी नियमित श्रोता हैं भाई, और हमें फोन भी
1: बिल्कुल
0: करती
1: मैम, हम आपका
0: हैं।
1: कार्यक्रम सुबह से लेकर मैम रात तक सारे कार्यक्रम
0: चलिए
1: सुनते हैं,
0: भाई,
1: और
0: बहुत
1: मुझे विविधा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और हम आप हमारे कार्यक्रम सुनती हैं। और
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: मैम।
0: हाँ, तो आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए, बताइए।
1: जी मैम, सनम तेरी कसम का टाइटल ट्रैक सुना दीजिएगा। और मैम ये गीत आपको और मैं अपने भाई दिलीप राज माही, नीरज राज माही और मेरी सिस्टर है रिंकी और गुड़िया दीदी और पूनम दीदी और समा परवीन साहिब अंसारी के साथ सुनना चाहेंगे मैम।
0: चलिए
1: और
0: भाई,
1: गुंजन तिवारी है हमारी दोस्त।
0: गुंजन तिवारी, चलिए भाई जिसके लिए डेडिकेटेड है उन सब के साथ सुनिए ये प्यारा
1: जी
0: सा
1: मैम, और
0: गीत।
1: मैम आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश कर रही हैं।
0: धन्यवाद धन्यवाद पिंकी जी। चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं आपको।
1: ठीक है मैम,
0: नमस्कार,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो देखते हैं फोन पर अगले कॉलर कहाँ से हैं और उनकी फरमाइश क्या है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार। और आप अपना?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: अच्छा लतीफ जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और बताइए कौन सा? हाँ बताइए।
1: कश्मीर में इस समय मौसम तो ठीक है, सुहाना मौसम है।
0: हाँ कश्मीर में तो ठंडा मौसम रहता ही है, तो
1: यहाँ पर्यटक भी आजकल बहुत सारे आते हैं।
0: हाँ बहुत पर्यटक आते हैं, सही बात है, ये मौसम ही ऐसा है।
1: यहाँ
0: हाँ
1: पे
0: हाँ
1: आजकल मौसम सुबह शाम ठंडे, दिन में तो
0: गर्मी
1: बहुत
0: रहती है।
1: गर्मी रहता है, आज
0: हाँ
1: लगभग 25-26 इतना
0: ओ
1: गर्मी रहता है।
0: हाँ अच्छा। तो आज कौन सा गीत चुना है लतीफ जी, बताइए।
1: आज हमें ये गाना सुने, कर लो मेरा एतबार यारो, सोनी चांदी से महंगा है प्यार यारो,
0: चलिए भाई आपको सुनवा देते हैं उदित नारायण की आवाज़ में
1: ये वाला गाना सुनना है।
0: ये गीत सुनवा देते हैं आपको।
1: आज मेरे लगभग 15-20 दिन से बाद लगा काल।
0: चलिए, लग तो गया, आपने
1: हाँ
0: प्रयास किया।
1: वहाँ पे जो भी शो होता है वो मौका नहीं देते हैं हमें।
0: नहीं, ऐसा नहीं है, वो असल में फोन सब
1: नहीं
0: लोग
1: वो तो
0: लगाते
1: रोज
0: हैं।
1: लगाते हैं, हमें
0: हाँ
1: मौका नहीं मिलता है ना।
0: चलिए, आप लगाते रहिए, आपको भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना।
1: अगर इसमें इसमें समय होगा तभी सारा लिस्टनरों को कॉल लगेगा,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है,
1: इतने
0: आपकी
1: समय
0: पसंद।
1: होगा ना, 15 दिन या 10 दिन।
0: हाँ चलिए, आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं, सुनिए।
1: हाँ मैडम।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी। मैम हम बढ़िया हैं, आप कैसी हैं?
0: बस हम भी ठीक हैं। और अपना नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए, कहाँ से हैं आप, क्या करते
1: जी,
0: हैं?
1: देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं मैम।
0: अच्छा बाबू अंसारी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी
0: और बताइए, आज कौन सा गीत चुना है? आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं बाबू अंसारी जी।
1: जी मैम, फिर मूवी का नाम रहेगा छिछोरे और सॉन्ग के लिरिक्स हैं खैरियत पूछो और अरिजीत सिंह जी के आवाज में है।
0: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्यारा सा गाना है, आपको सुनवा देते हैं।
1: जी मैम, और अजी मैम अरिजीत सिंह के जो है मैं फैन भी हूँ, इसलिए उनके गाने मुझे बहुत अच्छे
0: बहुत
1: लगते हैं।
0: अच्छे लगते हैं। हाँ सही बात है, जो
1: जी
0: आपकी पसंद का ये गीत आपके लिए। नमस्कार।

0: और देखिए कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और सुनते हैं अपनी उनकी फरमाइश क्या है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार। देखिए भाई, हम आपकी आवाज़ सुन के तो आपका नाम समझ ही गए हैं, लेकिन एक बार आप अपना परिचय स्वयं दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: ग्राम सनोतिया, जिला
0: लगुना,
1: मध्य प्रदेश से विवाह श्रीवास्तव जी का भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: हाँ मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बताइए जल्दी से, आज आपका पसंद का गीत कौन सा है, क्योंकि आज आप हमारे कार्यक्रम के अंतिम श्रोता हैं जिनकी पसंद का
1: श्रोता
0: गीत।
1: है, ये बात आपने सही कही, अंतिम कॉलर हूँ मैं और समय है नहीं है।
0: हाँ
1: तो फिल्म का नाम तो रहेगा खानदान और गाने के बोल रहेंगे नील गगन पे उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
0: तो चलिए भाई, बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है सुनने के लिए, तो आपको सुनवा देते हैं जल्दी से ये गीत आपकी
1: जी
0: पसंद का। ठीक है, नमस्कार।
1: जी ठीक है बहन जी, नमस्कार।

और इस गीत के साथ ही फ़ोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और इस समय दिन के 12 बजने को है और अब समय है प्रायोजित कार्यक्रम का। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है।

0: है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
0: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
0: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
1: जी,
0: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
0: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ, जरूर।
0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी,
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से 2 दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया।

0: वो क्या करेंगे हम?
1: क्या करेंगे? देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
0: ओ, ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
1: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
0: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: अरे, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
1: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
0: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
0: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर ले जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुप

0: दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? मैं
0: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
1: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
0: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
1: ये रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
0: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
1: बच गए, लगता है रीच चला गया।
0: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
0: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
0: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
1: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
0: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगी।
7: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हाँ?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
9: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
9: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
10: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
9: आप तो काम करती है ना?
10: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
9: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन

0: द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
2: नहीं कटने देंगे,
3: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरा मा,
5: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरा मा, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरा मा,
5: हाँ?
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ गौरा मा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
5: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
6: बिल्कुल,
5: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हम सब तैयार हैं।
6: नहीं कटने देंगे।
3: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
5: ये है जंगल के उपकार,
7: मिट्टी पानी और बयान,
5: मिट्टी पानी और बयान।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
5: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।

0: दोनों आगे बढ़ो।
1: अरे कहाँ से?
0: मिनट की बातों में बताओ।
2: मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
4: नहीं लगाने देंगे
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
5: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
0: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
6: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
0: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
6: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
6: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
7: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
6: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें https प्रसार भारती गवर्नमेंट इन NIPP। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

श्रोता, हम आपको बता दें, प्रत्येक बुधवार को सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ से मैं हूं आपकी अपनी विभा और लेकर आई हूं एक बार फिर वही महकते सुरों का गुलदस्ता यानी सदाबहार नगमे। वो गीत जो कभी पुराने नहीं होते, वो धुनें जो वक्त के साथ और भी जवां हो जाती हैं, और वो आवाज़ें जो सीधे दिलों के तारों को छू जाती हैं। आज आधे घंटे में हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे ही अमर गीत जिन्होंने दशकों से हमारी यादों को रोशन कर रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले प्यारे से नगमे से।

श्रोताओं, सच बात है कि पुराने गीतों की मिठास कुछ और ही होती है। इन गीतों में शब्द शायराना होते थे और संगीत में एक सादगी भरी गहराई। कहा भी गया है, कुछ नगमे उम्र भर गूंजते रहते हैं, वो दिल से निकले ही तो असर करते हैं। अब पेश है अगला सदाबहार गीत, जो मोहब्बत के एहसास को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है।

क्या खूबसूरत गीत! वाकई ऐसे गीत समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी तो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है, और जब बात हो सदाबहार नगमों की तो हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। तो सुनिए ये प्यारा सा सदाबहार नगमा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से सदाबहार नगमे। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा नगमा जिसमें मोहब्बत की गहराई और समर्पण की खूबसूरती बखूबी झलकती है। जब प्यार अपनी हदों को पार कर जाए तो इंसान खुद को भी भूल बैठता है। कुछ ऐसी ही भावना लिए ये मधुर नगमा आज भी दिलों को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा।

और अब सदाबहार नगमों का आखिरी पड़ाव। तो बस आज की मुलाकात सदाबहार नगमों में बस इतनी ही। फिर कभी मिलेंगे सदाबहार नगमों के लिए। आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

0: श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.1 मीटर था। 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। और लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। आलोक कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम नाहिल पोस्ट पुवाया जनपद शाहजहांपुर से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री सुरभि 25 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। सुरभि का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 17 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट 4 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा। जिस समय ये घर से निकली थी इन्होंने बैगनी रंग का सूट और प्लाजो पहना हुआ था। इनके मिलने की कोई भी सूचना अगर प्राप्त हो तो आप इस पते पर दे सकते हैं। आलोक कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम नाहिल पोस्ट पुवाया शाहजहांपुर। श्रीमती दर्शन देवी पत्नी स्वर्गीय लाला राम निवासी ग्राम त्योलक थाना सिधौली।

शाहजहांपुर से सूचित करती हैं कि उनके पुत्र सुमित 12 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। सुमित का हुलिया इस प्रकार है, लंबाई लगभग 4.6 फिट, रंग सांवला, उम्र 23 वर्ष, चेहरा गोल है। जिस समय ये घर से निकले थे, इन्होंने जीन्स और सफ़ेद शर्ट और पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई थी। इनके भौं पर चोट का निशान है। इनके मिलने की कोई भी सूचना अगर प्राप्त हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 7880382125। नंबर एक बार फिर से, 7880382125। अरुणदेव त्रिपाठी पुत्र ब्रह्मदेव त्रिपाठी हथौड़ा बुजुर्ग पुरानी पंप फैक्ट्री के पास से सूचित करते हैं कि आशय त्रिपाठी 9 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। आशय त्रिपाठी का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 26 वर्ष, रंग गोरा, इकहरा बदन। जिस समय ये घर से निकले थे, इन्होंने सफ़ेद शर्ट और काला लोअर पहना हुआ था। इनके मिलने की सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 6393914614। नंबर एक बार फिर से, 6393914614। सुमन देवी पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम दिदुरिया कॉलोनी थाना पुवाया जनपद शाहजहांपुर से सूचित करती हैं कि उनकी पुत्री मौसमी 11 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। मौसमी का हुलिया इस प्रकार है, उम्र लगभग 16 वर्ष, लंबाई 5 फिट 1 इंच।

कि उनकी पुत्री मौसमी 11 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। मौसमी का हुलिया इस प्रकार है, उम्र लगभग 16 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। जिस समय मौसमी घर से निकली थी उस समय इन्होंने गुलाबी रंग का दुपट्टा, स्लेटी रंग का सूट और पैरों में जूती पहनी हुई थी। इनके मिलने की सूचना आप इस पते पर दे सकते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

श्रोता, हम आपको बता दें, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुश्तरका डिवीज़नल खरीफ पैदावारी सेमिनार 2026 का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार के ज़रिए हुकूमत किसानों को बीज के मेयार, टेक्नोलॉजी और जदीद ज़रई तरीक़ों के साथ साथ हुकूमती मंसूबों और तैयारियों से आगाह करती है। वज़ीर-आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनाज पैदा करने वाली सबसे बड़ी रियासत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उत्तर प्रदेश चीनी, आलू, दूध और एथेनॉल पैदावार में पहले नंबर पर है। वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार कीमियाई खादों और कीड़े मार अदवियात को कम से कम करने और ज़रात को मज़ीद कुदरती सतह पर बहाल करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे पहले कल वज़ीर-आला ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 270 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-आला ने कहा कि डबल इंजन हुकूमत ने तरक्की, तहफ्फुज़ और रोज़गार का नया माहौल बनाया है। जनाब योगी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि स्कीमों का फ़ायदा आखिरी शख्स तक पहुंचे।
1: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: वज़ीर-आला ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सियाहत की तरक्की और खूबसूरती के मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतों ने झीलों और तालाबों को नज़रअंदाज किया, लेकिन डबल इंजन हुकूमत उनकी हिफाजत कर रही है। ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की एक अहम मीटिंग 4 और 5 जून को वाराणसी में होगी। इस बैन-उल-अक़वामी इवेंट में ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमीरात समेत 11 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुलाकात के दौरान सकाफत, विरसे के तहफ़ और बाहमी सकाफती तआवुन से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रिक्स के मंदूबीन के काशी दौरे को यादगार बनाने के लिए सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। वाराणसी के रीजनल कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर राम नरेश पाल ने बताया कि मंदूबीन की आमद पर हवाई अड्डे से लेकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फोक डांस पेश किया जाएगा। हुकूमत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए अख्तियार करदा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही कैपेसिटी बिल्डिंग

0: कमीशन की चेयरमैन एस राधा चौहान करेंगी। कमेटी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पर्सनल और ट्रेनिंग महकमे को पेश करेगी। इस दरमियान बोर्ड ने कल दर्जा 12 के तलबा के लिए स्कैनशुदा जवाबी पर्चों में पाई जाने वाली गलतियों की तस्दीक और जवाबात का दोबारा जायजा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सहूलत सिर्फ उन तलबा के लिए दस्तियाब होगी जिन्होंने अपनी जाँचशुदा जवाबी पर्चों की स्कैन कापियाँ हासिल कर ली हैं। इस दरमियान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम इससे कबल वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। CBSE सेक्रेटरी का भी तबादला कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में गैर मामूली तब्दीली देखी है जो कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूल पर कारफरमा है। आज हम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
1: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1:15:49 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता पंचन का पंचे नीना सोनकर बहिनी के नमस्कार, जय हिंद। पंचे, अब हम ये पूछ पाए कि आप लोग कैस हो, तो आप लोग कहियो हो कि हम तो भैया गर्मी से हुई रहन बड़े बेबस लाचार, काहे से कि ख्यातन पर जाए का है, जौन घर की मेहरिया हैं उनका रसोई घर में खाना पकाए का है और पोए पकाए के ख्यातन पर ले जाए का है। तो ये पूछे वाली बात तो है नहीं कि गर्मी के मौसम में तो कैस रही, तो ये मौसम तो बदलत रहा था, लेकिन जब मौसम बदलत है तो हर मौसम के अपन आनंद है। तो इस समय भीषण जौन गर्मी पड़ रही, कहूँ कहूँ 45 डिग्री, कहूँ कहूँ 40 डिग्री, कहूँ कहूँ 42 डिग्री, तो ई वदे पड़ रही कि इके देखो अपन मजा है, आम खाइए अभी आप और खात भी हो और खाए भी रहे हो, लेकिन जिनके मधुमेह है जरा हिसाब किताब से खाएं, है ना पंचे। और जौन लीची है, मीठे फल हैं, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब जो खाए पिए का आपका मिल रहा, खीरा ककड़ी, ये सब देखो प्रकृति अपन रूप कैसे बदलत ही, तो वैसे ही हम लोग का भी चाहिए कि प्रकृति रूप बदली से तो हमऊ का बदले का है। अब का है, भीषण गर्मी है, अब घर के बाहर जाना मजबूरी है या आप चाहते हो, ये तो है नहीं ना कि घर में बैठ के खेत खलिहान के काम हो जाए। तो सर पे तनी रख ले गमछा, सफ़ेद रंग के रखी हो तो ज़्यादा अच्छा है, काहे से धूप जौन है उनकी किरणें जौन है उम्मा सोख ले। अब अगर आप रंग बिरंगा कुछ मतलब गमछा या कौनो कपड़ा उपड़ा रखा हो, जैसे काला होए, गहरा हरे रंग की होए या फिर भूरा होए, तो ये सब कपड़न से बचाओ। और इसे पहनावा का भी कहा जाता है कि जौन पहनाओ वो ढीला ढाला सूती होए, सूती कपड़ा से कहा है ना, जो मेहरियाँ हैं घर की, जब चौका और

मतलब चौका मचा थी और खाना वाना पाया मतलब बना थी, या पोती पकौती हैं आप पंचे के लिए घर परिवार के लिए, तो उनके एक हिफाजत भी उससे होती, का होती, वो सुरक्षित रहा थी। कैसे अब सोचियो, जैसे अब सूती कपड़ा है तो आँच वाँच से थोड़ा वैसे तो दूर आपका रहे का चाहिए और आप रहती भी हो, लेकिन कभी कभी ऐसे भी देखे मात है कि लापरवाही से या कौनो हड़बड़ी जल्दी माँ, जैसे कौनो घर की मेहरिया है और कौनो पुकारिस की, देखो फलाना चीज़ जल्दी लाओ हमका जाए का है, तो बेचारी भगती हैं दौड़ती हैं, वो सोचती हैं कि जल्दी जल्दी कर दे, तो पल्लू से जौन है उनके आचर जो उन्होंने अचरा से पकड़े लग जाती भगोना, अचरा से पकड़े लग जाती कढ़ैया, तो इससे बचे वहनी सूती कपड़ा यही वजह पहना जात है कि उससे आपके बचाव होए, आप सुरक्षित रहो। वैसे आगी वागी तो वैसे सुरक्षित रहे का बहुत जरूरी भी है और रहती भी हुई हो। और अब देखो गर्मी है, गर्मी का होत है जब मतलब शिद्दत की गर्मी पड़ रही, तो अपने आप जौन 45-45 डिग्री पे तो बांधा बांधा जैस जौन सहार है वन अपने आप अगिया लग जाती, ऐसा मालूम देते थे कि जैसे कौन लगाए दीस है, कौन दिया सिलाई से फूंक दीस है। तो ई गर्मी है, लेकिन गर्मी के भी अपन मौसम आत है और गर्मी की भी जात थी, फिर बरसात आती, लेकिन आज बात करबे केवल गर्मी के ही मौसम की। अब इम्मा कहा जाता है कि जो गर्मी है कौनों का लग जाती तो कि जान भी जा सकती, तो का करे का है, वही ताज़ा भोजन खाए का है, वही शरीर का पानी से बिल्कुल परिपूर्ण रखे का है, नहीं तो निर्जलीकरण से मनई के जान की भी लाले पड़ सकत है। कहा जाता है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के जाए से बचाओ, लेकिन जो खेत खलिहान में काम कर रहे हैं उनके लिए हम पहले ही कहा, उनका तो जाए का है और वो तो जैबे करिए, तो पानी खूब पियो, तरल पदार्थ के सेवन करो, ORS के घोल जरूर रखो अपन घर में, नींबू पानी है, छाछ है, नरियल पानी है, बेल के शरबत है, ये सब पियो, और ये जो ने काफी है, चाय है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं, ये सबसे बचे का है। और जैसे बतावा है कि पहनने के लिए सूती ढीला ढाला कपड़ा लत्ता पहनो, सर का ढक के रखाओ, त्वचा की सुरक्षा करो, यानी कि आपका जब सर ढकियो तो अपने आप पे आपका उसे सुरक्षा मिली, और छतरी बतरी लेके थोड़ा अपन का काम वाम करो तो सही रही हो, घर का खान पान जो ने घरे के रखो, यानी चाट पकौड़ा इधर उधर की हार वार के ना खाओ और खुला कटा फल वल ना खाओ, दिन के समय जो ने खिड़की और पर्दा का बंद रखो ताकि गर्म हवा और धूप अंदर ना आए, और संध्या की खिड़की उड़की खोल दो, हल्का भोजन खाए का है तला भुना मसालेदार खाए से बचाओ, और ताज़ा खाना खाओ, खीरा तरबूज ककड़ी बतावा तो है फालसा भी देखो कहूँ कहूँ उनका देखे हमको मिला है आढ़त में मंडी में, तो ये सब जो है अपन जो उन खाद्य पदार्थ ये आपका खाए का है, सैतूत खा ये सब जो उन बतावा है। और जो बाहर की गतिविधि करे के लिए बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका बहुत ध्यान रखिएगा, 65 साल से ऊपर के जो उन बूढ़ ठूढ़ हैं मतलब घर परिवार में जो सम्मानित हमारे बुजुर्ग हैं वो, और बच्चे या फिर बीमार कौनो मरीज है तो उनका बाहर नहीं जाए का, जी के मान लो किडनी की समस्या ही, जी का और कौनो समस्या ही, तो डॉक्टर भैया यहू बताते हैं ना, तो ध्यानपूर्वक उनकी बात सुना करो। और जैसा बतावा मसालेदार भोजन वोजन खाए का नहीं ना, नींबू पानी पियो, आयरन कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर भोजन लेकिन आपका ले का है, ई का करी आपका पूरा पोषण दे। तो ई तो हो गई भैया लू से गर्म से कैसे बचा जावे, तो लू भी चली अभी और गर्मियों लगी, सुना तो यही है भैया समाचार में रहा कि प्रयागराज में मतलब बनारस में आवा बवंडर, तो कब का आए लग जाए ई कोनो कहीं नहीं सकत है, तो ध्यान पूर्वक समाचार यही लिए कहा जाता है कि आकाशवाणी के समाचार सुनाओ तो उससे रहियो अपडेट, और देखो कब कब ऐसे होते घर परिवार जो उन्हें जब अपडेट नहीं रहता है ना तो बहुत सी बातें हुई जाती, अब कौनों के जौन मनसिद्धू हैं वो चितों से उतर जाते हैं। ऐसे ही देखो कुछ है ये गौनई माँ कि गाय गाय कैसे बतावा जाए रहा कि हमरे जौन मनसिद्धू हैं वो हमरे चित से कैसे उतर गए, अब उनका मनाए के लिए वो काका कर रहे हैं अपन मेहरिया का मतलब लुभाए रहे हैं, मोहब्बत की बोली बोल रहे हैं, तो आपो सुनो।

0: जहाँ हमारे चित से उतर गया बालम। अरे नहीं बहनी, ऐसे गुस्सा उस्सा ना हो। और घर परिवार की गाड़ी तो देखो ऐसे ही नोक झोंक से जौन हल्की फुल्की होती चला थी तब अच्छी नीक लागत थी, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है ना। मतलब जब घर के बर्तन की आवाज़ बाहर सड़क पे आए लग जाए तो दिक्कत आती। तो खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक घर की गाड़ी का चलाओ, और जब जनगणना वाले आए घर के मनई की गिनती करें तो उनका सब सच सच बताओ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: तो पंचे एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आंगनबाड़ी। जौन है महतारी बच्चा के कार्यक्रम, मातृ शिशु स्वास्थ्य के कार्यक्रम आंगनबाड़ी। हमेशा की तना देखो हम लेके आए हैं आज जौन भेंट वार्ता। हम बिल्कुल समय न नष्ट करब, ध्यान पूर्वक सुनो। जो बिटेवा है ना वह सुने घर माँ। जरा वॉल्यूम जौन है रेडियो के थोड़ा थोड़ा हाई कर ले, थोड़ा तेज कर ले, और मोबाइल पे सुन रहे हो तबाव कर ले। कहे से ही बहुत जानकारी वाली है। अगर आप अपन भविष्य के बारे में सोच रही हो, पढ़े लिखे के लिए माता पिता घर परिवार आपके कुल कुनबा आपका अनुमति दे दीस है, तो यहू जानो बिटेवा कि विवाह की भी एक आयु होती। विवाह भी जरूरी होता है। प्रकृति जौन है जौन अपनी मतलब नियम बनाई से, जौन अपनी चीज़ें बनाई से, उम्मा ये सब बातें बहुत जरूरी हैं कि विवाह समय से होए और बाल बच्चा भी समय से पैदा करे का है, मतलब उत्पन्न करे का है, तब है सब

0: याद बना थी, अब सब कुछ देखो इम्मा परिचय दीन का है और आप ध्यान से सुनो और फिर हमका बताए उमेल करके कि का सुने हाओ, ठीक है? तो ले सुनाओ। श्रोताओ, आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पलता शंखवार जी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर पुष्पलता शंखवार जी एक जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और आज जिस विषय पर हमने अपने स्टूडियोज में इन्हें चर्चा करने के लिए बुलाया है वो विषय है मातृत्व की सही आयु, अधिक आयु में माँ बनने में क्या आती हैं दिक्कतें। डॉक्टर पुष्पलता शंखवार जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद नीना जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका तजुर्बा क्या कहता है कि माँ बनने की सही उम्र क्या है?
1: जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रजनन हमारी एक बेसिक नीड है और हर एक प्रजाति में एक सही उम्र होना, एक हेल्दी शिशु को जन्म देना एक प्रायोरिटी होती है। तो इंसानों में जो इसकी आयु है लगभग 20 से 30 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं वो प्रायः देखा गया है कि स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं, मेंटली अच्छे साउंड होते हैं और उनमें विकृतियां या कहें कि जो जन्मजात विकृतियां होती हैं उनकी संभावनाएं कम होती हैं। तो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए 20 से 30 वर्ष के बीच में अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हमें प्रेगनेंसी आउटकम अच्छा देखने को मिला है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि प्रकृति ने स्त्री के शरीर को ऐसा बनाया है कि उसकी आयु जो है, यानी कि प्रजनन की आयु, किसी भी बच्चे को जन्म देने की आयु, वो भी एक तरह से कहा जाए कि निर्धारित की है कि इस आयु में अगर कोई भी स्त्री जन्म देती है किसी भी शिशु को तो वो सही हष्ट पुष्ट और स्वस्थ पैदा होगा।
1: जी, जैसे चिकित्सा में हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं करीब 35 वर्ष से ऊपर की हैं और वो प्रेगनेंसी करती हैं तो उनमें जोखिम की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, परेशानियां ज्यादा होती हैं और इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में एडवांस मैटरनल एज बोलते हैं, 35 वर्ष की या उससे अधिक आयु के। तो इनमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं और अगर कोई स्त्री 40 वर्ष के ऊपर प्रेगनेंसी करती है तो उसमें और भी ज्यादा खतरे की संभावनाएं रहती हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, आज हर बच्ची चाहती है कि अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, पढ़े लिखें अच्छे से, और अब वो इतना ज्यादा दिमागी तौर पर इतना विचारों से मजबूत हो चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपने निर्णय खुद ले रही हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि पहले का समय नहीं है कि माता पिता ने कहा कि बेटा कोई अच्छा रिश्ता आया है, बेटी तो अब तुम्हारे हाथ पीले करने हैं तो अब तुम विवाह कर लो। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बेटियां बताती हैं कि अभी नहीं, और वो हाँ कब होती है ये भी नहीं माता पिता को मालूम होता है, और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि माता पिता विवश हो जाते हैं। तो ये आपने जो बताया है कि मातृत्व की सही आयु ये है, और क्या कारण है कि अगर हम देर में मातृत्व धारण करते हैं, अब इस पर और विस्तार से क्या बताना चाहेंगी?
1: जी देखिए, ऐसा है कि प्रकृति ने तो हमें कहा है कि 20 से 30 वर्ष के दरमियान आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए, बच्चे करने हैं तो आप कर लीजिए। लेकिन आज का दौर प्रगति का दौर है और हमारे साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और साथ ही साथ हमारी जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, महिला और पुरुष समान अधिकार सबको मिले हुए हैं और जो बेटियां हैं हमारी वो अपेक्षाकृत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। तो हमारे जैसे सामाजिक और व्यक्तिगत जो कारण है कि हमारी जो लड़कियां देर में शादी कर रही हैं, तो सबसे पहले तो वो सोचती हैं कि उनको जितना अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें।
0: जी।
1: कई बार लड़कियां ज्यादा पढ़ जाती हैं तो उनको मैच मिलना भी बड़ा मुश्किल सा आज के जीवन में ये देखा गया है। कई बार आपके जीवन शैली इतनी बदल चुकी होती है कि आप हर चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि किसी ने कुछ कहा और आप बिल्कुल उसी ढर्रे पे चल गए। आपकी अपनी भी सोच डेवलप हो रही होती है तो आप भी अपना माइंड मेकअप करते हैं कि आपको कैसा साथी चाहिए। तो इन सब कारणों से शादी में देरी होती है और इसीलिए बच्चा धारण करने में भी देरी होती है प्रेगनेंसी होने में।
0: जी, मान लीजिए किसी ने डॉक्टर साहब 35 वर्ष की आयु में गर्भ धारण किया, तो क्या उसकी जो डिलीवरी होगी बिल्कुल सही से एक नॉर्मल और प्राकृतिक तरीके से, जिस तरह आम कम उम्र की बेटियों की डिलीवरी होती है, यानी जब वो माँ बनती है,

0: या फिर कुछ जटिलता आती है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है कि अल्ट्रासाउंड में तो सब कुछ सही दिखा रहा था, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो जन्मजात विकृतियां भी होती हैं। तो ये सब क्या है, क्या बताना चाहेंगी?
1: बिल्कुल सही बात है,
0: देखिए 35 साल एक अलार्मिंग
1: एज है। बिल्कुल 35 वर्ष के ऊपर एक डेफिनेटली अलार्मिंग सिग्नल है कि आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए। क्योंकि देखिए, एक स्त्री जो है टोटल नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं उसके डिफाइंड होते हैं
0: जी,
1: और वो धीरे धीरे करके समय के साथ हर साइकिल में उनका क्षरण होता रहता है, वो खत्म होते रहते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उस हिसाब से वो अंडे भी कम हो जाते हैं, एग्स कम हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है। तो ये चीज, जितना आप प्रेगनेंसी डिले करेंगी उसमें नंबर ऑफ एग्स कम हो जाएंगे, उनकी गुणवत्ता में कमी रह जाएगी और धीरे धीरे कभी ना कभी आपके शरीर में जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या और प्रेगनेंसी ना धारण करने की जो इनफर्टिलिटी की समस्या है वो देखा गया है कि समय के साथ ज्यादा होती हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है, जैसा आपने बताया कि 35 साल की आयु एक अलार्मिंग सिग्नल की तरह है कि इससे ज्यादा नहीं तो फिर बहुत
1: प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज्यादा
0: बहुत सारी जटिलताएं आ सकती हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि फिर मूव करती हैं IVF की तरफ। तो हम IVF की बात नहीं करेंगे, लेकिन उन जटिलताओं की जरूर बात करेंगे कि जब 35 साल की आयु में विवाह होता है और उसके बाद प्रेगनेंसी ठहरने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं।
1: जी, भाई हमने बोला ना, इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, जो कि 20 से 30 वर्ष की आयु में इतनी इनफर्टिलिटी का देखा गया है कि 8 से 10% लोगों में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये 20 से 30, 35, 40% तक भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और जब माँ की आयु बढ़ती है तो कुछ अनुवांशिक विकार होते हैं, जो हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जिसमें बच्चा मानसिक तौर पे विकलांग पैदा होता है
0: जी।
1: और ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13, इस तरह के जो अनुवांशिक विकार होते हैं वो बढ़ती आयु में देखा गया है कि ज्यादा होते हैं। इसलिए जो आप एल्डरली मदर्स हैं हमारी, अगर वो प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं, तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस कराने की जरूरत है। और कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें हम लोग इन बीमारियों को पकड़ते हैं अर्ली। तो अगर सब कुछ ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई सिम्टम्स लगते हैं कि प्रॉब्लम है, जैसे कि उसमें अनुवांशिक कोई विकार है, या कई बार बढ़ती एज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी समस्याएं बढ़ती हैं, ब्लड शुगर के इंसिडेंसेस देखे गए हैं कि वो बढ़ जाते हैं, आपको जो ब्लड प्रेशर के कारण कभी सर दर्द, धुंधला दिखना, पैरों में सूजन, ये सब चीजें, ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा थायराइड की समस्याएं, ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। प्लेसेंटा की समस्याएं भी कई बार देखने को मिला है कि प्लेसेंटा अपनी जगह पे ना होके नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, इन सब की समस्याएं भी थोड़ा सा उम्र के साथ ज्यादा देखने को मिलती हैं। और जब ये समस्याएं रहती हैं उम्र के साथ, सिजेरियन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी कैरी हो रही है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बीच में कोई भी समस्या आ गई और ऑपरेशन की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य प्रसव है उसकी उम्मीद मतलब बहुत कम प्रतिशत तक रह जाती है कि
1: बहुत कम तो नहीं कहेंगे, तो जैसे अभी का जो हमारा सिजेरियन का रेट है करीब 30-40% है
0: जी
1: टर्शरी केयर सेंटर में, लेकिन अगर गांव देहात में देखा जाए तो अभी ऑपरेशन इतने नहीं होते हैं क्योंकि वहां प्रेगनेंसी भी जल्दी होती है, और जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती हैं या एल्डरली प्रेगनेंसी होती है वो हमारे पास आती हैं। तो ऐसे में जो ये वाली महिलाएं होती हैं, इसमें ऑपरेशन की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, क्योंकि कभी बीपी की समस्या के कारण, कभी ब्लड शुगर की समस्या के कारण, या कभी उनको और किसी तरह की समस्या है, कई बार उनकी हड्डी इतनी सक्रिय होती है, या कभी उनका बच्चे का वजन ज्यादा होता है, या बच्चे का वजन कभी बहुत कम होता है
0: जी।
1: इस तरह की तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं एल्डरली मदर्स में, तो उसमें ऑपरेशन की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि जोखिम बढ़ता जाता है, 35 साल एक अलार्मिंग है, चेतावनी देता है ये वर्ष कि अब बस आगे नहीं जाना है, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। और फिर एक कहा जाए कि सामान्य जीवन भी प्रभावित होता है, घर परिवार प्रभावित होता है, मेंटल टेंशन होती है, मानसिक अवसाद की भी स्थिति आती है कि हम क्या करने चले थे, कहाँ आ गए, क्या होगा आगे।
1: मानसिक अवसाद की

0: तो बात करी आपने, तो ये एक बड़ा कारण आजकल देखने को मिल रहा है
1: जी
0: कि कभी जैसे प्रेगनेंसी, एल्डरली एज आपकी हो रही है और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो एक मानसिक अवसाद दिमाग में घर कर जाता है कि प्रेगनेंसी होगी भी कि नहीं। अब चलिए हमारा करियर हो गया, ये हो गया, लेकिन हमने समय से बच्चा नहीं प्लान किया तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो आगे वो फिर उसका इलाज कराती हैं, कई बार IVF का सहारा भी लेना पड़ता है ऐसे
1: जी
0: में प्रेगनेंसी होने में, और उसकी IVF की अपनी खुद की समस्याएं काफी हैं। और उसमें तो ये आपको देखना है कि आप समय से अगर प्लान कर सकती हैं, प्लान कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि स्त्री के शरीर की संरचना प्रकृति ने ऐसी की है कि कहा जाए कि एक उम्र की सीमा लगाई है प्रकृति ने,
0: जी
1: और प्रकृति चूंकि जब मौसम के परिवर्तन के साथ अपने रूपों को बदलती है, तो
0: जी
1: जाहिर सी बात है जो मनुष्य का शरीर दिया है स्त्री के रूप में, तो उसे भी ये समझना होगा कि हर बात जो है वो प्राकृतिक है और शरीर भी प्रकृति के हिसाब से ही चल रहा है, तो
0: जी
1: हमें प्रकृति की सुननी होगी।
0: जी बिल्कुल। जैसे कि स्त्री के जीवन में तमाम तरह के पड़ाव आते हैं, स्त्री
1: जी
0: किशोरी बनती है, फिर एडल्ट बनती
1: जी
0: है, फिर मीनोपॉज आता है। तो मीनोपॉज की अमूमन आयु देखा गया है 45 से 55 साल के बीच में है, ऑन एन एवरेज 51-52 साल में मैक्सिमम
1: जी
0: लेडीज को मीनोपॉज हो जाता है, और कुछ स्त्रियों में 40 वर्ष की उम्र में भी मीनोपॉज हो जाता है। तो अगर मान लीजिए उनका हेरिडिटरी मीनोपॉज थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो ऐसी स्त्रियों को प्रेगनेंसी थोड़ा जल्दी प्लान कर लेना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद फिर प्रेगनेंसी प्लान करना या IVF का सहारा लेना वो थोड़ा और जटिल हो जाता है। उसमें आपका फाइनेंशियल खर्चे भी बहुत अधिक रहते हैं और प्रेगनेंसी होने में तमाम तरह की और भी दिक्कतें आती हैं।
1: जी परिवार की क्या भूमिका इस समय होनी चाहिए? उम्र बढ़ रही है तो परिवार किस तरह अपनी भूमिका को निभाए?
0: देखिए, सबसे पहले तो जो उनका पार्टनर है वो काफी
1: जी
0: समझदार, एडजस्टिंग होना चाहिए, और स्त्री को भी अपने शरीर को समझना होगा
1: जी
0: कि हमारा शरीर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेगनेंसी को अच्छे से कैरी कर सकता है, ताकि उसमें कम से कम प्रॉब्लम्स या जटिलताएं हों। और हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक संतुलित आहार लेना चाहिए, मानसिक तौर पे दोनों को एक सामंजस्य बना के रखना होगा कि अब हम अपनी फैमिली प्लान कर लें अगर उनकी एज बढ़ रही है। अगर वो कोई दुर्व्यसन कर रहे हैं, या जैसे आजकल स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बहुत कॉमन हो रहा है यंग कपल्स के बीच में, तो अगर प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं तो ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए। पार्टनर और महिला दोनों लोग, महिला और पुरुष दोनों इस बात को ध्यान रखें कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे पहले ये सब चीजें, अगर आप बीड़ी शराब या कोई भी
1: सिगरेट,
0: सिगरेट या
1: तंबाकू,
0: तंबाकू है तो, या हुक्का बार आजकल बहुत चल रहे हैं,
1: जी
0: तो इस तरह की अगर कोई भी आपकी आदत है तो उस पे आप विराम लगाइए। फॉलिक एसिड टैबलेट आप लेना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद स्वस्थ खाना खाइए। स्वस्थ और बैलेंस खाना, संतुलित खाना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आप फ्रूट्स ज्यादा खाइए, आप लेग्यूम्स ज्यादा खाइए, दालें, हरी सब्जियां, और पैक्ड फूड अवॉइड करिए। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं या हार्ड ड्रिंक्स हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना होगा, ताकि अगर आप एल्डरली एज में भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी तरीके से,
1: जी
0: स्मोकिंग या खैनी या कैसे भी अल्कोहल, तो उन पेशेंट्स में देखा गया है कि बच्चे इतने स्वस्थ नहीं पैदा होते हैं, उनके अंदर फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, भ्रूण स्वाभाविक तरीके से स्वस्थ नहीं पैदा होता, कमजोर रहता है, उसको जो ब्लड सप्लाई उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो अगर वो ये सब चीजें, स्वस्थ खाना खाएंगी और अपने दुर्व्यसनों से दूर रहेंगी, मानसिक तौर पे अपने आप को मजबूत रखेंगी, तो आप स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं एल्डरली एज में भी। ये कोई व्यवधान नहीं है कि 35 वर्ष हो
1: जी
0: गया या तो आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। आप सावधानियों के साथ प्रेगनेंसी को नॉर्मल कैरी कर सकती हैं और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब ये बताइए कि उम्र ज्यादा हो गई है तो किस तरह की जांचें आप करवाती हैं?
0: जी देखिए, अगर प्रेगनेंसी एल्डरली एज में हुई है तो उनको कुछ जांचें स्पेशल तौर पे करानी होती हैं, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस। उसमें शुरू में जो हम लोग एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं,
1: जी
0: जिससे ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी सामान्य जगह पे है, कितने नंबर्स में है, ट्विंस ट्रिपलेट्स तो नहीं है, या कोई और प्रेगनेंसी लाइव है कि नहीं, ये
1: जी
0: देखना।

0: पड़ता है, तो उसमें एक अल्ट्रासाउंड शुरू में होता है, उसके बाद एक 11 टू 14 वीक्स के बीच में हम लोग NTNB स्कैन कराते हैं, जिसमें ये पता लगता है कि उसको कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। एक और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन आया है जिसको हम लोग NIPT या NIPS नाम से जानते हैं। ये थोड़ा महंगा इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं शरीर में या जेनेटिक डिफॉर्मिटीज हैं, वो उस टेस्ट में पता चलती हैं। थोड़ा सा महंगा जांच है, लेकिन ये हम लोग कभी कराते हैं कुछ हाई रिस्क पेशेंट में। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम लोग एक एमनियोसिंटेसिस नाम की जांच भी कराते हैं, जिसमें हम लोग जो भ्रूण के आसपास जो पानी होता है उसको निकाल के हम लोग उसमें टेस्ट करते हैं कि उसमें ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। उसके बाद हम लोग एक एनोमली स्कैन कराते हैं, फिर हम नियमित अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है कि नहीं, और हर विजिट पे आपको ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर देखना बहुत जरूरी है, उसका जांच करना बहुत जरूरी है। शुगर टेस्ट और PP की जांच काफी जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुगर नहीं है, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वो डेवलप हो जाती है। ब्लड प्रेशर भी ऐसे पेशेंट्स में थोड़ा सा, क्योंकि एंग्शियस रहती हैं कपल्स और माएं, तो उनको BP की समस्याएं भी हो जाती हैं। आजकल तो डिजिटल BP अपरेटस रहते हैं, उससे आप घर पे भी नाप सकती हैं, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि कितना नॉर्मल है या कितना बढ़ा है। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब आप डॉक्टर के पास जाके दिखा लीजिए, और हो सकता है आपको बीपी की दवाई की जरूरत हो, या कुछ और खान पान में आपको बताया जाए कि कैसे क्या करना है। तो ये कुछ जांचें हैं जो करानी चाहिए। और अगर आप प्रेगनेंसी लेट एज में प्लान कर रहे हैं तो पहले से आप जांच करा लें, वो बेहतर रहेगा।
1: जी डॉक्टर पुष्पलता शंखवार जी, आपने बहुत विस्तार पूर्वक जो बातें बताई हैं, उनसे ये समझ में आया है, अगर हमारी बहनें सुन रही होंगी, कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना है और जांचों पर ध्यान देना है, डॉक्टर जो परामर्श दे रहे हैं उसी के अनुसार चलना है, और अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, ये नकारात्मकता और कोई भी ऐसी चीज की झाड़ फूंक से कुछ होगा, कुछ नहीं है, इसकी जो जांच है वो डॉक्टर्स के द्वारा कराई जाएगी, इलाज आपका जो सरकारी अस्पताल है वहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर होगा सही तरीके से, और जो डॉक्टर बताए उन्हीं के परामर्श के हिसाब से आप चलेंगी तो आप निश्चित तौर पर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगी और एक स्वस्थ माँ भी कहलाएंगी। डॉक्टर पुष्पलता जी, आप प्रोग्राम में आई, आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखो, हम बच्चे सुनत रहे ध्यान से कि कौनो बात छूट तो नहीं गई आप लोगों के बदे, तो पुष्पलता बहनी का दे फिर से एक बार धन्यवाद। और ये देखो कल आई रही भागत भागत, कहीं कि तीन तीन ऑपरेशन लगे रहे हैं, तो परसों आए नहीं पाए, तो इनका दिल से देव धन्यवाद, और जरूर लिखाओ मेल भरपूर लिखाओ कि कैस लगी, कहे से ये आप के बदे आत हैं, मेडिकल कॉलेज की बड़ी डॉक्टर हैं। और इंद्र कुमार मिश्रा भैया, सबसे पहले हमका मेल भेजी ने, तो सबसे पहले आपे के पढ़ब, 19 घंटा पहले भेजिन है, लेकिन है कि 27 तारीख का जो उन माहवारी विषय पर जानकारी मिली वो बहुत नीक लगी। ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा, आशा अवनीश, विनीश, अक्षत गरिमा और रजनी बहिनी, जितेंद्र सिंह लिखे ने 100% अच्छा कार्यक्रम, रोचक लगत है। और ई है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना गोलू, बिंदु कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से लिखे ने आंगनबाड़ी कार्यक्रम हम सुना था, नीक लगत है, बहुत रोचक, सुमन योजना के बारे में बतावा गा, शौचालय के प्रयोग के बारे में बतावा गवा, तंबाकू सेवन से बचे के लिए कहा गा, और जो महावारी के दौरान स्वच्छता विषय पर जो 28 तारीख का रहा, 28 मई का जो विश्व मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, हमका भी बताना पड़ा था आपका अच्छे तरीके से, तब आप लोग समझ पाते हो सब कुछ, इनका नीक लगत है। दुर्गेश नागनपुरे भैया, लड्डू ढेर सारा भेजी ने, बधाई भैया, हम खाए लेन आपके लड्डू। सौरभ पांडे भैया, सादर प्रणाम करिन है। विजयपाल यादव जी, इनके हम कैसे भूल सकत हन, किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललोवा जिला लखीमपुर खीरी के, इनके साथ शुभम यादव, ऋचा यादव, शिखा यादव गुड़िया और विजय पांडे जी हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और देखो ये लिखन है कि 27 तारीख का जो 27 मई का कार्यक्रम रहा महावारी के दौरान स्वच्छता, डॉक्टर नीरू मित्तल जी से जो बातचीत हम किया वो इनका रोचक लगी, जो उन्हें गौनाई सुनावा वह रोचक लगा, सबे का दिल से दही धन्यवाद, ऐसे ही बने रहो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के साथ।

भिंडी के भाई नंदलाल टमाटर खुशियां मनावे हो, ये देखो एक हाथ से सुहर गीत रहा और ये गौनई आप पंचे का जरूर निक लगी हुई हमका पूरी उम्मीद है। और ऐसा ही अच्छा अच्छा जौन है हम लय के आप आपके लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम में। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में तो आप सब पंचे का पता है कि 9 तारीख का सबे का निःशुल्क जांच के लिए जाना होता है। ब्लड प्रेशर, वजन, रक्त की जांच, शुगर है, हीमोग्लोबिन है, भ्रूण की जानकारी, ये सब सबका मालूम है ज़्यादातर से। तो बिल्कुल आप लोग इनमें लापरवाही न बरते हो। हमारी पूरी मतलब कोशिश रहा थी कि एक कार्यक्रम में हम जाने काका मोती पिरोए के संजोए के आपके समक्ष प्रस्तुत करी, लेकिन पता भी नोट कर ले, कार्यक्रम में आंगनबाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001। देव नीना सुनकर बहनी का आज के कार्यक्रम समाप्त करे की अनुमति, सभी श्रोता पंजन का नमस्कार, जय हिंद।

0: मंदिर को तू सुंदर बोलने लगी किसका पानी।
1: अभी आप सुन रहे थे मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जवानों के लिए।

जवानों के लिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फौजी साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम है हमारा मेल पर आधारित और पत्रों पर आधारित, तो सबसे पहले हम आपको अपना मेल आईडी बता दें, कार्यक्रम जवानों के लिए @gmail.com। और हमारे पास मेल आए भी हैं जवानों के लिए कार्यक्रम में, सबने अपनी फरमाइश भी बताई है, तो चलिए देखते हैं पहला मेल हमारे पास कहाँ से आया है। ये

मेल आया है सुरेंद्र संधू जी का। तो और इन्होंने कहा है कि आप हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए अपनी पसंद का। तो चलिए फिर हम आपको गीत सुनवा देते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ये प्यारा सा गीत।

और देखिए ये मेल आया है हमारे पास विजयपाल यादव जी का ललहुआ से, और इन्होंने लिखा है विश्व साइकिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हैं जो हम पढ़ के सुनाते हैं। अहंकार से नहीं विनम्रता से जीत होती है, शब्दों से नहीं कर्मों से पहचान होती है, जो संस्कारों को जीवन में उतार ले उसे दुनिया खुद सम्मान देती है। सही कहा विजयपाल जी आपने, और आपके यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप सबकी मधुर आवाज़ बहुत मनमोहक लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी, और इन्होंने जो फरमाइश की है वो है फिल्म गीत गाता चल से गाने की, और इन्होंने लिखा है कि गीत के बोल लिखे हैं शाम तेरी बंसी, तो आपको सुनवा देते हैं ये गीत जिसे गाया है आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह ने फिल्म गीत गाता चल से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम जवानों के लिए में। और देखिए, ये हमारे पास मेल आया है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेधा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा का। रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा का। और आप सब लिखते हैं शुभ दोपहर, नमस्कार। और आपको भी नमस्कार भाई। फिल्म का नाम इन्होंने लिखा है नसीब अपना अपना। गीत के बोल हैं भला है बुरा है जैसा भी है। तो भाई, आप सबकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णामूर्ति ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास

0: एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम

0: ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर राम कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता, धान की सुगंधित प्रजातियां। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में आप धान उत्पादन की योजना बनाए हैं, विशेषकर सुगंधित धान की उन्नत प्रजातियां लगाना चाहते हैं, तो इनकी विशेषता क्या है और इनकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ यूपी एग्रीज परियोजना डॉक्टर आर के सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहाँ धान उत्पादन के लिए सुगंधित प्रजातियां उगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जैसा कि बासमती धान विश्व में अपनी एक विशिष्ट सुगंध एवं स्वाद के लिए भलीभांत जाना जाता है, भारत को बासमती धान का जनक कहा जाता है। बासमती धान की विश्व में मांग तथा भविष्य में इसके निर्यात की अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए इसकी वैज्ञानिक खेती काफी महत्वपूर्ण हो गई है। किसी भी फसल के अधिक उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता में फसल की किस्मों का अत्यधिक महत्व होता है। अब हम सभी जानते हैं कि अच्छी किस्म के उपयोग मात्र से ही 20-25% उत्पादन बढ़ जाता है
1: और स्वाद से और भी।
2: हाँ, और गुणवत्ता हमारी उत्पाद की कीमत कई गुना बढ़ा देती है। तो बासमती चावल में विशिष्ट सुगंध एवं स्वाद होने के कारण इसकी विभिन्न किस्मों का अलग अलग महत्व है। बासमती धान की पारंपरिक प्रजातियां प्रकाश संवेदनशील होती हैं, लंबी अवधि की होती हैं, अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई वाली होती हैं, जिससे बासमती धान की उपज कम होती है। परंतु हमारे वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत किस्में विकसित की गई हैं जो अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं, कम ऊंचाई वाली होती हैं, खाद और उर्वरक के प्रति ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होती हैं और अधिक उपज देती हैं।
1: तो ऐसे में जहाँ सुगंधित धान की प्रजातियाँ चुनना है किसान भाई बहन, तो कौन कौन सी बारीकी करें?
2: हाँ, अच्छी पैदावार तथा उत्तम गुणवत्ता लेने के लिए अच्छी प्रजाति का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और चयन के लिए जो विशेषताएँ देखनी चाहिए किसान भाइयों को, उसमें अधिक पैदावार, उत्तम गुणवत्ता, कीट एवं रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, कम ऊंचाई, कम समय में पकने वाली, बाजार में अधिक मांग एवं अच्छी कीमत देने वाली प्रजाति होनी चाहिए।
1: तो शुरुआत करें बासमती प्रजातियों की। तो
2: हाँ, सबसे पहले बासमती प्रजातियों की बात करते हैं। बासमती प्रजातियां, इनके दाने लंबे होते हैं, पतले होते हैं और पकाने पर लंबाई में काफ़ी बढ़ जाते हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं
1: पकाने के बाद।
2: हाँ, पकाने के बाद, ये खास बात है। तथा उनमें मेवे तथा पॉपकॉर्न जैसी सुगंध होती है। सबसे पुरानी, देश की पहली अर्धबवनी उच्च उपज देने वाली अगर बासमती प्रजाति की बात करें तो पूसा बासमती एक का नाम आता है। यह 135 से 140 दिन की प्रजाति है। 50 से 55 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी उत्पादन क्षमता है। जीवाणु झुलसा और ब्लास्ट रोग के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। उत्कृष्ट स्वाद एवं सुगंध के लिए जानी जाती है प्रजाति।
1: इसके अलावा

0: इसके अलावा अन्य प्रजातियां हैं जिसमें पूसा बासमती एक को पुरस्कृत करके उन्नत बासमती एक बनाया गया। अवधि 125 से 130 दिन, उपज 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जीवाणु झुलसा के प्रति अवरोधी है, दाने पकने के बाद लंबा एवं बेहतरीन खुशबू वाले होते हैं।
1: आजकल डॉक्टर साहब, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा कई बासमती की प्रजातियां विकसित हुई हैं।
0: जी जी, सबसे पहले बात करें तो पूसा 1121 एक प्रजाति है। इसका भारत में और भारत के बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड रही। 135 से 40 दिन की प्रजाति है, 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखती है। चावल लंबा, पतला और सुगंधित होता है, अपेक्षाकृत रोग भी कम लगते हैं। एक प्रजाति है पूसा RS10, ये संकर प्रजाति है
1: जी, यानी सुगंधित में संकर।
0: हाँ, सुगंधित में संकर, और ये 125 से 130 दिन की प्रजाति है। उपज भी 50 से 55 कुंटल पर हेक्टेयर तक देता है, अपेक्षाकृत रोग और कीट कम लगते हैं। एक प्रजाति है PB1637
1: जी,
0: यह 125 से 130 दिन की प्रजाति है और उपज 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ब्लास्ट अवरोधी तथा दाने लंबे, पतले और सुगंधित होते हैं। अगली प्रजाति है PB1728, 135 से 138 दिन की प्रजाति है, 50 से 60 कुंटल तक उपज होती है। ब्लास्ट एवं बैक्टीरियल ब्लाइट दोनों के लिए अवरोधी है। एक प्रजाति है CSR30, जिसको यामिनी भी कहते हैं,
1: यानी समस्याग्रस्त भूमि में भी इसको।
0: हाँ, ऊसर भूमि के लिए बहुत उपयुक्त है। 130 से 140 दिन की प्रजाति है, 30 से 35 कुंटल उत्पादन देती है। स्टेम राट अवरोधी भी होती है। जो आधुनिक प्रजातियां हैं उसमें पूसा बासमती 1509, अवधि 115 से 120 दिन है, उपज 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ये बौनी प्रजाति है, 95 से 100 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है।
1: इसके अलावा डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बासमती की और प्रजातियां हैं?
0: इसके अलावा पूसा बासमती 1847 है, पूसा सुगंध 5 है, पूसा RS60 संकर प्रजाति है, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985, ये दो प्रजातियां जो है DSR के लिए भी ये रिकमेंड की गई हैं।
1: डॉक्टर साहब, अगर गैर बासमती सुगंधित प्रजातियों की बात करें तो काला नमक बहुत पुराना है।
0: हाँ, काला नमक KN3 के नाम से जानते हैं,
1: पारंपरिक काला नमक।
0: हाँ, काला नमक है। दूसरा बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102, पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, 1652, काला नमक किरण PB1692, मालवी 105, मालवी 4-3, मालवी सुगंध धान 1, पूसा सुगंध 5, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 2, पंच सुगंध 1, पूसा CRD KN2 और पूसा नरेंद्र KN1, नरेंद्र सुगंध भी है।
1: तो इनकी खासियत क्या महसूस करते हैं?
0: ये गैर बासमती की प्रजातियां हैं, उनके दाने छोटे होते हैं और पकाने पर चिपकते हैं, लेकिन वो उनके बेहतरीन जो खुशबू होती है, वो जो कहते हैं कि मक्खन जैसी और फूलों जैसी खुशबू होती है, इसके लिए ये विशेषता इनकी होती है,
1: पूरी दुनिया में जाने जाते हैं,
0: पसंद किए जाते हैं
1: और इनकी डिमांड भी है।
0: हाँ, बहुत ज्यादा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियों की बहुत ज्यादा डिमांड है।
1: सब एक सवाल और कि जहाँ भी सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी डालनी है तो कब तक डालें किसान भाई बहन?
0: सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी 15 से 20 जून के बीच में डाल देना चाहिए और रोपाई जो है 15 से 20 जुलाई के बीच में करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि उसमें उचित जो है खुशबू आए और अच्छी गुणवत्ता मिले। दूसरी बात मैं किसानों भाई से कहना चाहूँगा कि कंपोस्ट और गोबर की खाद अवश्य डालें
1: और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की सुगंधित प्रजातियों के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके UP एग्रीज परियोजना आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर 7905699045, यानी कि 7905699045।
1: डॉक्टर RK सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए।

0: और जहां धान की सुगंधित प्रजातियां उगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, यानी बासमती और गैर बासमती की कौन कौन सी सुगंधित प्रजातियां चुनें ताकि उनको अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा लाभ मिले, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता, विषय था धान की सुगंधित प्रजातियां। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए आप सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। श्री पातिराम पुत्र रामपाल, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर सिमरिया थाना सिधौली शाहजहांपुर से, सूचित करते हैं कि रचना 15 मई 2026 से कहीं लापता हैं। रचना का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 35 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा। जिस समय ये घर से निकली थी इन्होंने हरे रंग की साड़ी और पैरों में चप्पल पहनी हुई थी। इनके मिलने की कोई भी सूचना अगर प्राप्त हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9956159610। नंबर एक बार फिर से 99561596100।

सोनू पुत्र संवृक्ष, काशीराम कॉलोनी, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर से सूचित करते हैं कि धन देवी 15 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। धन देवी का हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 26 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा। इनके पेट पर जले का निशान है। जिस समय घर से निकली थी इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था। इनके बाईं तरफ हाथ पर जले का निशान है और पेट पर बाईं तरफ जले का निशान है।

श्री चिंटू पुत्र धनपाल ग्राम अमृता थाना फतेहगंज जनपद बरेली से सूचित करते हैं कि दुर्जन 13 मई सन 2026 से कहीं लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है, उम्र लगभग 80 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला इकहरा मजबूत जिस्म चेहरा गोल। जिस समय ये घर से निकले थे इन्होंने सफ़ेद रंग का कुर्ता व धोती तथा पैरों में प्लास्टिक के काले जूते पहने हुए थे। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके मिलने की कोई भी सूचना अगर प्राप्त हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9368130303। नंबर एक बार फिर से 9368130303। मिट्टी लाल तिलकपुरवा से सूचित करते हैं कि पवन 26 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता।

होता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 40 वर्ष, लंबाई 168 सेंटीमीटर, रंग गोरा। इन सब के मिलने की सूचना आप इस पते पर दे सकते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। और लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे के युगल स्वरों में अवधी लोकगीत। सबसे पहले इनसे सुनते हैं सोहर।

अभी आपने कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे के युगल स्वरों में सुना खेमटा, और आइए कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे के युगल स्वरों में सुनते हैं ये नकटा।

अभी आपने सुना कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे के युगल स्वरों में अवधी लोकगीत। इनके साथ संगत करता थे नाल पर सत्यम शिवम सुंदरम सिंह, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर मुकेश कुमार और साइड रिदम पर गौरव गुप्ता। इसी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकमाधुरी अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर था 747 किलोहर्ट्स पर। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

सेकंड हो चले हैं दोस्तों, और शुरू हो चुका है प्रोग्राम सतरंगी दुनिया, जिसमें प्यारे प्यारे से गीत आप तक पहुंचा रही है।

Sad.

सेकंड हो चले हैं और अब आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 थी, जिसे बढ़ा दी गई है और ये अब 31 जुलाई 2026 तक कर दी गई है। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं prasarbharti.gov.in पर जाएंगे और NIPP सेलेक्ट कर लेंगे, या आप akashvani.gov.in पर जाएंगे, वहां पर भी इसकी जानकारी मिल सकती है। और सुनते रहे 100.7 FM रिंगबो, धड़कन लखनऊ की प्रोग्राम सतरंगी दुनिया।

0: male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रोग्राम सतरंगी दुनिया।

0: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: शहर आपका, धुन आपकी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, अपना प्यार बरसाते रहें और सुनते रहें

खेती किसानी के क्षेत्र में आए परिवर्तन के कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। किसान समाज व राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। किसानों ने कृषि विकास दर को 8 से बढ़ाकर 18% तक पहुँचाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में आयोजित गोरखपुर आजमगढ़ व बस्ती के संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस दमकल सेवाओं और अन्य आपातकालीन कर्मियों के समन्वित प्रयासों से 40 से अधिक लोगों को बचाया गया है और उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज कानपुर पहुंचे। श्री पाठक ने यहां कमलापत मेमोरियल हॉस्पिटल का जायजा लिया और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर के औद्योगिकी स्वरूप को पुनर्स्थापित करने और निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। वाराणसी में 4 और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित होगी। यहां ताज होटल में प्रस्तावित इस बैठक में देश विदेश के वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता, सांस्कृतिक विशेषज्ञ एवं विशिष्ट प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: 107.7 FM Rainbow.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: शहर आपका, धुन आपकी, सुनते रहिए 107.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आचार्य सात एफएम रेनबो।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। अब मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, सभा के आरंभ में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसार

0: पर्यावरण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटना क्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 400.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। शाम के 5:05 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज की इस सभा और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 11:45 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुन सकेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00 सुनिएगा धर्मराज उपाध्याय का काव्य पाठ। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा तलाक संबंधी कानून, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी देंगी एडवोकेट सीमा भटनागर और भेंट करता होंगी सुमोना पांडे। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:10 पर। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे कमाल अहमद खां की गाई चंद गजलें। आज शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज का विषय होगा फल फूल और सब्जियों में सामयिक प्रबंधन, फलदार पौधों की सघन बागबानी, खरीफ में सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मशरूम मौन पालन और शहद उत्पादन। इस विषय पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकेंगे और हमारे स्टूडियोज में आपके उत्तर देने के लिए मौजूद रहेंगे वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र 2 संडीला हरदोई से डॉक्टर पंकज नौटियाल और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर आपको रोज की तरह सुनवाएंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग और शाम 5:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नई उड़ान। श्रोताओं, ये था विवरण आज की इस सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। कल रात 9:30 पर क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आपको सुनवाएंगे रात 11:10 पर। सुबह 10:10 पर सुनिएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम में समात फरमाइएगा नकमगी। जिले की हलचल ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाएंगे आपके समक्ष सुबह 9:15 पर। हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00 कल आप सुनेंगे महेंद्र भीष्म की कहानी बचाव। साप्ताहिक कार्यक्रम सुनिएगा खेल जगत कल शाम 7:31 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम कल सुनिएगा शाम, माफ कीजिएगा रात 8:10 पर, जिसमें कल सुनिएगा अनिमेश मुखर्जी के गाए गीत व भजन। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी आप सुनेंगे कल सुबह 9:50 और दिन में 2:45 पर। कल इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी शिखा श्रीवास्तव। कृषि कार्यक्रमों के अंतर्गत सुबह 6:05 पर सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें कल सुनिएगा गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल आपको सुनवाएंगे कृत्रिम गर्भधान में पशु नस्ल सुधार, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी देंगे डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह और भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। बहने अपना कार्यक्रम घर आंगन सुनेंगी कल दिन में 1:15 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का समय होगा कल सुबह 7:00, जिसमें कल नीना सोनकर बताएंगी गर्मी में लू से बचाव, सावधानी में ही सुरक्षा, इस विषय पर। विविधा कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:10, जिसमें कल सुनिएगा बच्चे आभासी दुनिया के भ्रम से। इसके अलावा दिन में समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। श्रोताओं, ये था विवरण आज की इस सभा और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। मैं हूं आपकी दोस्त सुरभि। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मियों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, गर्मियों से क्या आपको एक याद याद है? वो समय जब गर्मियों की छुट्टियों में सुबह होते ही हम साइकिल लेकर घर से निकल पड़ते थे, जब साइकिल चलाना सीखना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता था। कभी पापा पीछे से सीट पकड़कर दौड़ते थे, तो कभी बड़े भाई बहन बैलेंस बनाना सिखाते थे, और कभी गिरने पर लगी चोट भी हमें साइकिल चलाने से नहीं रोक सकती थी। मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं

स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। मैं हूं आपकी दोस्त सुरभि। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मियों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, गर्मियों से क्या आपको एक याद याद है? वो समय जब गर्मियों की छुट्टियों में सुबह होते ही हम साइकिल लेकर घर से निकल पड़ते थे, जब साइकिल चलाना सीखना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता था। कभी पापा पीछे से सीट पकड़कर दौड़ते थे तो कभी बड़े भाई बहन बैलेंस बनाना सिखाते थे, और कभी गिरने पर लगी चोट भी हमें साइकिल चलाने से नहीं रोक सकती थी। मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं साइकिल की ऐसी दीवानी हुआ करती थी कि कई बार चोट लगती थी तो बस जल्दी से घुटने उठने झाड़ लिए, उठे और फिर से साइकिल चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप सब भी इस याद से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों, बचपन में साइकिल चलाना केवल एक शौक नहीं बल्कि आज़ादी का पहला एहसास था। मोहल्ले की गलियों में दोस्तों के साथ साइकिल दौड़ाना, घंटी बजाते हुए वहां से निकलना और ये महसूस करना कि अब हम अपने दम पर कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि आकाश में उन्मुक्त पंछी अपने गगन में उड़ान भरते हैं, उसी तरह हमें भी लगता था कि अब हम भी कहीं जा सकते हैं। ये छोटी छोटी खुशियां साथियों आज भी हमारी स्मृतियों में ताजा हैं। समय बदला, साधन बदले, लेकिन साइकिल से जुड़ी वे यादें आज भी हमारे दिल के बहुत करीब हैं। शायद यही कारण है कि साइकिल केवल दो पहिया वाहन नहीं है बल्कि हमारे बचपन, हमारी मुस्कान और हमारी अनगिनत यादों का एक अभिन्न हिस्सा है, जब यही साइकिल हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और बेहतर जीवन की साथी भी बन जाए तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। और इसी अहमियत को समझते हुए हम 3 जून को मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। जी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मान्यता दी। इसका उद्देश्य था लोगों को साइकिल के स्वास्थ्य, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूक करना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सतत विकास और स्वस्थ जीवन शैली के लिए छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, साइकिल केवल दो पहियों का साधन नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। दोस्तों, साथियों, दो पहियों पर चलने वाली ये साधारण सी साइकिल वास्तव में असाधारण खूबियों से भरी हुई है। बदलती जीवन शैली, बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के इस दौर में साइकिल एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान बनकर हमारे सामने आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नियमित रूप से साइकिल चलाने से शरीर की लगभग सभी प्रमुख मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, और साइकिल चलाना अपने आप में एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो हृदय को मजबूत बनाता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं के जोखिम को भी कम करता है और मानसिक तनाव को भी दूर करने में सहायक होता है। दोस्तों, मेरी मानिए, इस वक्त सुबह के वक्त आप 5 बजे उठ जाइए और निकालिए अपनी साइकिल और सड़कों पे आराम से आधे घंटे तक साइकिलिंग करिए। ये अपने आप में एक अपनी एक्सरसाइज है। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार यदि प्रतिदिन केवल 30 मिनट साइकिल चलाई जाए तो शरीर अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ बना रह सकता है। आज जब युवा वर्ग मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया के कारण अधिक समय बैठकर बिताता है, ऐसे में साइकिल एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली की ओर लौटने का माध्यम बन सकती है। साइकिल दोस्तों केवल हमारी सेहत ही नहीं बल्कि पर्यावरण की भी सच्ची मित्र है। ये ना पेट्रोल मांगती है, ना डीजल और ना ही किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाती है। तो और भी बातें करेंगे, लेकिन आइए लेते हैं यंत्राल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साइकिल के बारे में। साइकिल साथियों केवल सेहत ही नहीं बल्कि पर्यावरण की भी एक अच्छी दोस्त है। बढ़ते वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच साइकिल का उपयोग एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देता है। यदि छोटी छोटी दूरियों के लिए हम मोटरसाइकिल या कार की बजाय साइकिल का प्रयोग करें तो केवल ईंधन की भी बचत होगी बल्कि वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। साथियों, पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। ज़रूरी है कि हम इस समस्या को समझें और इसे सुलझाने के लिए इसके उपायों पर भी चर्चा करें। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वार्ता। वार्ताकार हैं प्रज्ञा सिंह। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
4: पर्यावरण अर्थात परिधन आवरण, कहने का तात्पर्य है कि वह आवरण जो हमको चारों ओर से ढके हुए है। पर्यावरण वही आवरण है जो जीवों को पोषित और सुरक्षित रखता है। धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वह प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं, वह सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व। हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः पर्यावरण को संरक्षित रखना हमारे जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें। पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना यहाँ मानव जाति का ज्ञात इतिहास है। परंतु आज के आधुनिक युग में विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर शोर शराबा, मोटर गाड़ियों की बढ़ती संख्या, कल कारखानों से निकलता धुआं तथा अपशिष्ट पदार्थ प्लास्टिक का उपयोग वातावरण के साथ साथ जल को भी दूषित कर रहा है। यह फैलता हुआ प्रदूषण हवा, जल, भोजन सबको दूषित कर रहा है। इसलिए प्रकृति को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम अपने बच्चों को छोटी सी चोट लगने पर विचलित हो जाते हैं, अपने पालतू जानवरों के बीमार पड़ने पर परेशान हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, सभी आधुनिक सुविधाएं देना चाहते हैं। परंतु हम यह नहीं सोचते कि जब वे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तभी इन चीज़ों का भोग कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि पहले हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, उसे संरक्षित करना है, तभी इस धरती

पर जीवन बचेगा। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं जो अतीव घातक हैं, जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूक्षरण, आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मिता का आनुवांशिक प्रभाव आदि। प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल, वायु तथा परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से आक्रांत होना देखे जा रहे हैं। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य जरूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा, साथ ही जल को संरक्षित भी करना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी, समीपस्थ नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा, क्योंकि कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं जो नदियों के जल को विषाक्त कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जल में रहने वाले जंतुओं के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में लाते हैं, जिससे उपजाऊ भूमि विषैली हो जाती है। उसमें उगने वाली फसल व सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित हो जाती हैं। इन दिनों जल संकट बहुआयामी है। इसके साथ ही इसकी शुद्धता और उपलब्धता दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि हमारे देश में सतह के जल का 80% भाग बुरी तरह से प्रदूषित है और भूजल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। आज हमारे जीवन के तीनों बुनियादी आधार वायु, जल एवं मृदा खतरे में हैं। सभ्यता के विकास के शिखर पर बैठे मानव के जीवन में इन तीनों प्रकृति प्रदत्त उपहारों का संकट बढ़ता जा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण न केवल महानगरों में ही बल्कि छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी शुद्ध प्राण वायु मिलना दुर्भर हो गया है, क्योंकि धरती के फेफड़े अर्थात वन समाप्त होते जा रहे हैं। वृक्षों के अभाव में प्राणवायु की शुद्धता और गुणवत्ता दोनों ही घटती जा रही है। वायु प्रदूषण के लिए वाहन भी कम उत्तरदायी नहीं है। बसों, कारों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों, रेलों आदि सभी पेट्रोल अथवा डीजल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनसे भारी मात्रा में दम घोटने वाला काला धुआं निकलता है। जीवन की सार्थकता तभी हो सकती है जब हम अपनी नदियां, पर्वत, पेड़, पशु, पक्षी, प्राणवायु और हमारी धरती को बचा सकें। इसके लिए सामान्य जन को प्रकृति उन्मुख जीवन के क्रियाकलापों जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से परिचित कराया जाए। युवा पीढ़ी में पर्यावरण की बेहतर समझ के लिए स्कूली शिक्षा में ज़रूरी परिवर्तन करने होंगे। पर्यावरण मित्र माध्यम से सभी विषय पढ़ाने होंगे, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने परिवेश को बेहतर ढंग से समझ सके। विकास की नीतियों को लागू करते समय पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव पर भी समुचित ध्यान देना होगा। प्रकृति के प्रति प्रेम व आदर की भावना, सादगीपूर्ण जीवन पद्धति और वनिकी के प्रति नई चेतना जागृत करनी होगी। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि मनुष्य के मूलभूत अधिकारों में जीवन के लिए एक स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण को भी शामिल किया जाए। हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सी नीतियां बनाई हैं, बहुत से अधिनियम भी बनाए हैं, जिससे हमारे वनों की कटाई रोकी जा सके, वन्य जीवों की रक्षा की जा सके, विलुप्त होते पशु पक्षियों की रक्षा की जा सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्नपूर्णा वन, नगर वन, अमृत वन के तहत पौधे लगाकर पर्यावरण को संतुलित किया जाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बिना पर्यावरण संतुलन के जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण के अनुकूल रहें। सरकारी प्रयासों के अलावा प्रत्येक नागरिक अपने छोटे से प्रयास से पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करके, शहरों गांवों में वाहनों का प्रयोग कम से कम करके तथा जोर से हॉर्न बजाने पर रोक लगाकर। अंधाधुंध जंगलों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, अतः खेती, वन तथा जंगलों का योग्य तरीके से रखरखाव करके, कम से कम उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग करके तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास गमलों में छोटे छोटे पौधे भी लगा सकता है।

0: बिजली कम पानी कम गैस का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका निभा सकता है। प्रदूषण को रोकने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग कम करना जरूरी है। घर की खाली जमीन, बालकनी, छत पर पौधे लगाएं। ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद या जैविक खाद का उपयोग करें। कपड़े के बने थैले लेकर निकलें। पॉलीथीन प्लास्टिक ना लें। खिड़की से पर्दे हटाएं। दिन में सूरज की रोशनी से काम चलाएं। खाना बनाने में और सब्जियां धोने में उपयोग होने वाले पानी से पौधों की सिंचाई करना सुनिश्चित करें। ब्रश करते समय नल खुला ना छोड़ें। शावर की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाएं। सोलर पैनल लगवाएं। सोलर कुकर में खाना बनाएं। लीक हो रहे नल को ठीक करवाएं। बल्ब की जगह CFL या LED बल्ब लगाएं। आसपास जाने के लिए साइकिल लेकर जाएं या पैदल जाएं। लोगों को पौधे गिफ्ट करें। कमरे से निकलने पर TV लाइट, पंखा, AC बंद करके निकलें। प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच, स्टील या तांबे की बोतल का प्रयोग करें। बिना उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर को प्लग में ना लगा रहने दें। प्लास्टिक का प्लेट की जगह मिट्टी के कुल्हड़, कागज या पत्ते के बने प्लेट अपनाएं। गाड़ी के पहिए में हवा चेक कराते रहें, इससे भी पेट्रोल बचता है। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। खुद की गाड़ी की बजाय ट्रेन, बस, मेट्रो या शेयर कैब का उपयोग करें। इस तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास बूंद बूंद से सागर भरता है कहावत को चरितार्थ करेंगे तथा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, किसी बड़ी मंजिल को जब पाना हो तो शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करनी चाहिए। अगर हमें अपनी धरती माँ को, अपनी पृथ्वी को बचाना है, पर्यावरण को संरक्षित रखना है, तो शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से होनी चाहिए। और वो छोटे छोटे प्रयास कोई दूसरा नहीं, वो छोटे छोटे प्रयास हमें करना होगा, शुरुआत हमसे करनी होगी। तो प्रज्ञा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। और साथियों, वक्त हो चुका है कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत का, तो आइए सुनते हैं गीत, मिलते हैं गीत के उस पार।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे ODOP की, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना का मकसद है प्रत्येक जिले की पारंपरिक कला, शिल्प और उद्योग को नई पहचान देना। इसी क्रम में साथियों, आज हम बात करेंगे नवाबों के शहर लखनऊ की, लखनऊ की उस कला की जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। साथियों, ये कला है चिकनकारी और जरी जरदोजी की। जी साथियों, लखनऊ की चिकनकारी कढ़ाई अपनी नफासत, खूबसूरती और बारीक कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस कला का इतिहास कई सौ वर्षों पुराना है। सफ़ेद या रंगीन कपड़ों पर हाथों से की जाने वाली ये कढ़ाई साधारण वस्त्र को भी बेहद आकर्षक बना देती है। फिर चाहे वो कुर्ते हों, साड़ियाँ, दुपट्टे, सूट और कई अन्य परिधानों में चिकनकारी का काम आज फैशन की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान रखता है। वहीं जरी जरदोजी लखनऊ की एक और गौरवशाली हस्तकला है। इसमें सुनहरे और चांदी जैसे चमकदार धागों, मोतियों और अन्य सजावटी सामग्री का उपयोग करके कपड़ों पर शानदार कढ़ाई की जाती है। कभी ये कला नवाबों और राजघरानों के परिधानों की शोभा बढ़ाती थी और आज विवाह तथा विशेष अवसरों के वस्त्रों की पहचान बन चुकी है। साथियों, ODOP योजना के माध्यम से इन पारंपरिक कलाओं से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे न केवल स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि लखनऊ की ये विरासत देश विदेश तक पहुंच रही है। तो अगली बार साथियों, जब आप किसी खूबसूरत चिकनकारी के कुर्ते या जरदोजी की कढ़ाई, शानदार कढ़ाई वाले परिधान को देखें, तो ये याद रखिएगा कि उसके पीछे लखनऊ के कुशल कारीगरों की मेहनत, कला और वर्षों पुरानी परंपरा छिपी हुई है। इसी जानकारी के साथ साथियों, अब आइए सुनते हैं एक गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।

तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने बात की साइकिल की, और साथ ही हमने बात की ODOP की, जिसके अंतर्गत हमने चिकनकारी के विषय में समझा। साथियों, कल के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे स्वरोजगार पर, जानेंगे कि स्वरोजगार क्या है, इसके क्या लाभ हैं, और वर्तमान समय में युवाओं के लिए उपलब्ध अवसर कौन कौन से हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर रोजगार के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के भेंट वार्ता खंड में हमारी विशेष बातचीत होगी श्री राजीव कुमार जी से। बातचीत का विषय होगा राष्ट्रीयकृत बैंकों की समेकित विकास योजनाएं। साथियों, इस वार्ता के जरिए हम जानेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं किस प्रकार किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रही हैं। साथ ही ऋण सुविधाएं, सरकारी योजनाएं के विषय में भी हम महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। लेकिन साथियों, अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। अपनी दोस्त सुरभि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:45 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

नमस्कार, स्वागत आप सभी का नई उड़ान कार्यक्रम में। और आज आपके साथ है आपकी दोस्त अर्पित। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपको हम बहुत सारी जानकारियां देते हैं, लेकिन आपको मनोरंजन भी कराते हैं। और कैसे कराते हैं? गीत के माध्यम से। और कैसे? इसके साथ ही साथ होती है स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित ओ भी, और साथ ही साथ आपको ले चलते हैं विकास समाचार की ओर, यानी क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या विकास हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों, कहते हैं कि दो पहियों पर चलती एक ऐसी सवारी है। आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रही हूँ भाई, सुनिए आगे। जो ना पेट्रोल मांगती है, ना डीजल, ना ट्रैफिक में ज़्यादा जगह घेरती है, और ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। अब आप सोच रहे हैं आखिर इतनी सारी बातें हमने कह डाली तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, एक ऐसी चीज़ जो हम सभी के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो कौन है? साइकिल। बिल्कुल, साइकिल हमें जीवन के कई सबक भी सिखाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये हमारे स्वास्थ्य को, पर्यावरण को, और साथ ही हमको आत्मनिर्भर भी बनाने में कहीं ना कहीं मदद करती है। दोस्तों, ये साइकिल की बात मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आपको ये बताती हूँ कि साइकिल जिसे हम केवल एक साधन समझते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये स्वस्थ जीवन के लिए हमको मजबूत बनाती है। और बचपन में जब हम लोग कभी जाते हैं, या तो हमारे पास साइकिल है और अगर नहीं होती है ना, तो क्या करते थे हम लोग? किराए की दुकान, मतलब दुकान पे जाते थे और किराए पे साइकिल लेकर आते थे, और उसके बाद उस साइकिल को सीखते थे, गिरते थे, फिर क्या उठाते थे, फिर उसको चलना सीखते थे, मतलब इतनी सारी चीज़ें करते थे। तो देखिए, एक नई नए अनुभव होते हैं, नई नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि गिर रहे हैं, गिर के बाद हम उठ रहे हैं, उठ के हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने बोला ना कि जीवन में एक सबक सिखाती है साइकिल, तो ये कहीं ना कहीं हमें जीवन के हर एक पहलू में आगे बढ़ने में मदद करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और क्या है, हमें स्वस्थ रखती है। अच्छा, इतनी खूबियां हमने साइकिल के बारे में बता दी, लेकिन आपको ये बता दें कि आज अगर हम इस साइकिल की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज जो है वो विश्व साइकिल दिवस है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य लोगों को साइकिल के उपयोग के बारे में जागरूक करना, पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना। और आपको ये बता दें, आज जब आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, इतनी सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उसमें जो सबसे सरल समाधान है वो और कोई नहीं है, वो शायद अगर हम साइकिल को अपनाएंगे। जितना ज़्यादा जो है हम ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी आराम वाली चीज़ों जैसे कार हो गया, बस हो गया, या टैक्सी हो गया, इन सब का इस्तेमाल करने की जगह हम जो है साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और वैसे भी आपको बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार जो है प्रतिदिन, जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, रोज 30 मिनट साइकिल चलाने से हृदय स्वस्थ होता है, शरीर को अतिरिक्त कैलोरी मिलती है। साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि साइकिल जो है वो मानसिक तनाव को भी दूर करती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं तो उनको मजबूत बनाने में, शरीर को ऊर्जा देने में कहीं ना कहीं साइकिल की विशेष अहमियत है। तो दोस्तों, सोचिए यदि छोटी दूरी के लिए हम कार या बाइक की जगह साइकिल का उपयोग करें तो क्या कर सकते हैं हम? ईंधन की बचत कर सकते हैं, वायु प्रदूषण में कमी होगी। ये एक छोटा सा कदम है जो शायद हमारे शहरों और आने वाली पीढ़ियों में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आज देश के कई शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं, वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों और साइकिल का इस्तेमाल करें। सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या कार्यालयों में साइकिल टू वर्क और साइकिल टू स्कूल जैसी पहले शुरू की गई हैं। दोस्तों, साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और ख़ास बात आपको बताते हैं कि साइकिल जो है वो सामाजिक समानता का भी प्रतीक है। ये हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ है, आर्थिक रूप से किफ़ायती होती है, और शायद यही कारण है कि साइकिल को सतत विकास और हरित भविष्य का साथी भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि साइकिल जो है वो केवल मंजिल तक

पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि स्वस्थ शरीर, स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर भविष्य को बढ़ता हुआ सफर है। तो दो पहियों की छोटी सी सवारी स्वास्थ्य, बचत और हरियाली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज जब हमने साइकिल की बात करी और आज विश्व साइकिल दिवस है, तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, मैं चली मैं चली, और ये जो है इसमें आवाज़ दी है लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: तो इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम नई उड़ान में। अच्छा दोस्तों, ये सोचिए कि हम सभी अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो। तो अगर ऑफिस का काम हमें करना है अच्छे से, क्योंकि देखिए अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और खुले दिमाग से काम नहीं करेंगे तो वो काम अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपका जो बॉस है वो भी कंप्लेंट करेगा। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि जो दफ्तर का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर जो है ना सारे चीज़ें जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें, और माहौल अच्छा होगा, मिला जुला होगा, सब आपस में बात करेंगे अच्छे से, तो आप अपने काम को बखूबी तरीके से कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, स्वास्थ्य संस्कृति, स्वस्थ दफ्तर, सशक्त जीवन। इस पर पारुलकांत कई लोगों से बात कर रही हैं, क्या है आइए जानते हैं इस ओबी के माध्यम से।
2: नमस्कार साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारा दफ्तर केवल काम करने की जगह है या ये हमारे जीवन की ऊर्जा का स्रोत भी बन सकता है, स्वच्छ वातावरण, संतुलित दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, ये सब मिलकर बनाते हैं स्वच्छ दफ्तर, सशक्त जीवन। और आपका जवाब भी सकारात्मक ही होगा कि जब तक हमें दफ्तर में एक स्वस्थ वातावरण, एक खुशहाल माहौल नहीं मिलता, तब तक हम दिल लगाकर कभी भी काम नहीं कर सकते। तो आइए आज हम बातचीत करेंगे अलग अलग विशेषज्ञों से, जो हमें बताएंगे कि कैसे एक सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति हमें न केवल बेहतर कर्मचारी बल्कि बेहतर इंसान भी बना सकती है। और साथियों, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संस्कृति, स्वस्थ दफ्तर, सशक्त जीवन विषय पर बात करने के लिए अब मेरे साथ है एक प्रतिष्ठित मॉल के मैनेजर दिशांत शर्मा जी, और आइए उनसे करते हैं बातचीत और पूछते हैं कि दफ्तर में स्वास्थ्य संस्कृति कितनी आवश्यक है। दिशांत जी, आपका हमारी कार्यक्रम नई उड़ान में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी।
2: दिशांत जी, बताइए कि आपके मॉल में कर्मचारियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं?
3: देखिए, ज्यादातर जो कर्मचारी कंपनी के पेरोल्स पे होते हैं उनका कंपनी उनकी देखभाल करती है, जैसे हेल्थ केयर पॉलिसी इश्यूज करती है, या जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनका एक पोर्शन उनकी सैलरी में कटता है जो कि ESI होता है, जिससे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ESI हॉस्पिटल्स में जाके वो अपना इलाज करवा सकते हैं। और कभी कभी जो बड़ी प्रत्यक्ष कंपनियाँ होती हैं या मॉल्स होते हैं वो फ्री हेल्थ कैंप्स भी लगवाते हैं साल में 3 से 4 बार।
2: तो ये बताइए कि इतने बड़े वर्क फोर्स में स्वास्थ्य संस्कृति बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
3: बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत प्राइवेट जॉब्स आप जानती हैं बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहते हैं, समय सीमा लंबी रहती है काम की, और उसमें और आप जानते हैं वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें हेल्थ के इश्यूज आने स्वाभाविक।
2: हॉल में जनरली देखा गया है कि लंबे समय तक खड़े रहने वाला स्टाफ होता है, जैसे कि सिक्योरिटी है, हाउसकीपिंग है, और जो लोग ब्रांड में भी काम करते हैं वो भी जो स्टाफ है, तो उनको सबसे ज्यादा कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं?
3: देखिए, लंबे समय तक खड़े रहने से या तो पैरों में आपके दर्द और थकान समस्या सबसे ज्यादा कॉमन है, और ज्यादातर लंबे समय से रहने से स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम होती है, और एक वेरिकोज वेन्स होता है जो नस फूल जाने की प्रॉब्लम आती है, फिर आपका लोअर बैक पेन हो गया, ज्वाइंट पेन हो गया, ये सब कॉमन प्रॉब्लम रहती है।
2: तो उनके लिए क्या आप ब्रेक्स वगैरह देते रहते हैं बीच बीच में कि वो बैठ सकें या थोड़ा चल सकें, जिससे परेशानियां ना हों?
3: देखिए, उनके लंच ब्रेक्स वगैरह होते हैं या टी ब्रेक्स होते हैं, तो उसमें ड्यूटी को बदला जाता है और उतनी देर में वो आराम करते हैं, या वॉशरूम वगैरह जाना है या कुछ ही जाना है तब उसके लिए वो ब्रेक लेते हैं अपनी ड्यूटी में बीच में।
2: जी, और जब हम बात करते हैं पीक आवर

0: की या जब त्योहार होते हैं जो फेस्टिवल सीजन कहलाते हैं, या जनरली देखा गया है कि मॉल्स में जो वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडेज उनमें बहुत भीड़ होती है, तो ऐसे समय में स्टाफ पर मानसिक दबाव कितना पड़ता है?
1: बहुत ज्यादा मानसिक दबाव रहता है क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती है। अब आप मानिए, और कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास लिमिटेड स्टाफ होता है, सिक्योरिटी हो गया चाहे हाउसकीपिंग का स्टाफ है जो कि क्लीनिंग कंटिन्यूस करते रहना है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव रहता है इस चीज को कि सिक्योरिटी की व्यवस्था ठीक से बनी रहे, जो हमारे जो कस्टमर्स जो मॉल में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा और कोई उनको प्रॉब्लम इश्यूज ना हो
0: जी।
1: साफ सफाई से रिलेटेड भी हाउसकीपिंग को ये वॉशरूम की क्लीनिंग कंटिन्यूस करते रहना होता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है।
0: और आखिरी में बस ये सवाल कि स्टाफ के लिए क्या अलग से रेस्टरूम, कैंटीन और उनके पानी वगैरह, उनके हाइड्रेशन के लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं होती हैं मॉल में?
1: जी हाँ, वॉशरूम रहते हैं स्टाफ के लिए, और इसके अलावा वाटर मशीन वगैरह भी रहती हैं, कोल्ड वाटर मशीन भी रहती हैं जहाँ से वो अपना पानी वगैरह पी सकते हैं। बहुत सारे बड़े जो मॉल्स हैं जिनमें एक आउटर एरिया में कुछ एक शॉप्स वगैरह दी जाती हैं जहाँ पे वो सब्सिडाइज फूड खा सकते हैं। ज्यादा स्टाफ अपने लंच कैरी करते हैं।
0: जी दिशांत जी, आपने हमसे बहुत अच्छी जानकारियाँ साझा की हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और साथियों, अब मेरे साथ हैं एक कंपनी में HR पद पे कार्यरत स्नेह जायसवाल। इनकी कंपनी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के काम को मैनेज करती है, तो इनका काफी काम चलने फिरने में भी, इवेंट मैनेजमेंट में भी जाता है, और कुछ काम बैठने का और लैपटॉप पे काम करने का ही होता है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि हमारा जो आज का विषय है इस पर इनकी क्या पॉलिसीज हैं। स्नेह जी नमस्कार, और आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार पारुल जी, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस बातचीत का मौका दिया।
0: स्नेह जी, क्योंकि आपकी कंपनी इवेंट्स भी मैनेज करती है और ये इन्फ्लुएंसर्स के कैंपेन्स को भी देखती है, तो जो बर्नआउट और स्ट्रेस की समस्या आपके सेक्टर में कितनी आम है, और एक HR होने के नाते आप पॉलिसीज बनाती हैं, तो इसका समाधान आप कैसे करती हैं?
2: देखिए पारुल जी, आजकल तनाव और काम का दबाव काफी आम बात है और हर सेक्टर में ही आप इसे पाएंगे। HR के रूप में हम कर्मचारियों से नियमित बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं, और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं जितना हो पाता है। हम यह भी ध्यान रखते हैं कि काम का दबाव जरूरत से ज्यादा ना हो और कर्मचारियों को आराम करने का भी समय मिले, ताकि उनका स्वास्थ्य भी बना रहे और काम में विकास भी होता रहे।
0: और ये बताइए स्नेह जी, कि आपकी कंपनी में नियमित हेल्थ चेकअप या योगा सेशन, मेडिटेशन या कुछ फिटनेस चैलेंज जैसे ऐसे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे कि कर्मचारी प्रेरित हों और समय समय पर फिजिकल वर्क और दिमागी कसरत भी करते रहें?
2: जी हाँ, समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कर्मचारियों को अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करें। जरूरत के अनुसार योग हो गया, मेडिटेशन और अन्य वेलनेस गतिविधियाँ भी कराई जाती हैं, जैसे कि हम एक बोलते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज, हमारे यहाँ कहते हैं ऐसे। हम ऐसे बहुत सारी गतिविधियाँ कराते हैं, चाहे वो शारीरिक एक्टिविटीज हो या फिर चाहे वो मानसिक हो, हम दोनों तरीके से कोशिश करते हैं कि हम उस हिसाब से गतिविधियाँ कराएं जिसमें हमारे कर्मचारियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बना रहे।
0: जी स्नेह जी, आपने अपना समय दिया और हमसे ऐसी बातें साझा की जिससे कि पता चले कि आजकल की कंपनीज भी अपने कर्मचारियों से सिर्फ काम नहीं लेती हैं बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह जी।
2: थैंक यू सो मच पारुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारा मानना है कि जब कर्मचारी स्वस्थ और खुश रहते हैं तो वे अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं, इसलिए कर्मचारियों की सेहत और खुशहाली किसी भी कंपनी की सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और अब आज के विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूपुर शर्मा, और आइए आज उनसे जानते हैं कि कार्यस्थल पर स्वच्छता कितना मायने रखती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद पारी जी।
0: तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल जो महिलाएं हैं ज्यादातर कामकाजी हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन सी स्त्री रोग संबंधी समस्याएं देखने को

0: सकती हैं?
1: सबसे पहले मैं स्त्री रोग से पहले कहूंगी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो थोड़ा सा इरेगुलर साइकिल मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी पे फर्क आ जाता है और देन डिपेंड्स ऑन कि क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग समस्या होती है।
0: अच्छा, लंबे समय तक बैठकर काम करने से, ज्यादातर लैपटॉप पे काम करने से और तनाव के कारण महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है?
1: देखिए, लंबे समय तक बैठकर काम करने से सबसे पहले जो परेशानी आती है वो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे बैक एक बहुत बढ़ जाता है, स्लिप डिस्क हो जाता है, कमर में दर्द होना, सर्वाइकल हो जाना, ये रहता है। और क्योंकि बैठ के काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कम हो रही होती है तो थोड़ा फैट बढ़ता है, जैसे ही फैट बढ़ता है वैसे ही हमारा पीसीओ का चांस बढ़ जाता है, थोड़ा थायराइड वगैरह का चांस बढ़ जाता है, ये परेशानियां रहती हैं।
0: डॉक्टर साहब, क्योंकि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आपके यहाँ डिलीवरीज वगैरह भी होती हैं बच्चों की, तो इस अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आप अपनी क्लिनिक में स्वच्छता रहे इस पर क्या विशेष ध्यान देती हैं?
1: क्लिनिक पे तो फिर स्वच्छता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जहाँ टॉयलेट जा रहे हैं वहाँ पे हम फ्रीली जा सकें। ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक टॉयलेट है उसे यूज करने से इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक टॉयलेट इतना गंदा होता है कि हम यूज नहीं करना चाहते हैं, इस कारण हम पानी कम पीते हैं जिससे फिर यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो टॉयलेट साफ होना चाहिए। अगर हम ऑफिस में या हमारे हॉस्पिटल में खाना खा रहे हैं तो भाई जो ये वाला वेस्ट है ये अलग तरीके के कूड़ेदान में होना चाहिए जिसे हम खाद के रूप में बाद में प्रयोग कर सकते हैं, और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग से डिस्पोज करें जिससे दोनों आपस में ना मिले, इनका ध्यान रखना। डिसइंफेक्टेंट डाल के पोछा लगाना अस्पताल के लिए बहुत जरूरी है, घर के लिए रेगुलर उतनी जरूरत नहीं होती है। ऑफिसर से डिपेंड करता है कितना फुटफॉल है, उस हिसाब से डिसइंफेक्शन के साथ पोछा या सफाई कराई जा सकती है।
0: तो डॉक्टर साहब, एक विशेषज्ञ, एक एक्सपर्ट होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, आप कंपनी ओनर्स को या एचआर मैनेजर्स को क्या संदेश देंगी कि वो दफ्तर में किस प्रकार की स्वास्थ्य संस्कृति को विकसित करें कि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी बनी रहे?
1: देखिए, जो मैंने अपने बचपन से आज तक एक बहुत बड़ा चेंज देखा है वो ये है कि ऑफिस टाइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए अपने लिए समय ही नहीं रह गया है। जब हम बच्चे थे हमारे फादर्स काम करते थे तो किसी के भी पिताजी मैं नहीं देखती थी जो 5 बजे के बाद घर आते हो। आज का यूजुअल टाइम 8 बजे के बाद घर आने का है। तो जब अपने लिए ही समय नहीं बचेगा तो स्वास्थ्य पे ध्यान कैसे जाएगा, और जब आपके यहाँ कोई काम कर रहा है वो स्वस्थ नहीं है तो वो अपना 100% कैसे देगा? तो ऑफिस टाइमिंग कम होने चाहिए, और अगर लगता है कि उससे बहुत परेशानी हो रही है तो एटलीस्ट ऑफिस में ही इस तरीके की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि आप योगा क्लासेस रख लें बीच में ब्रेक के लिए, या जुम्बा क्लासेस रख लें जिससे कि थोड़ा सा एक्सरसाइज का टाइम मिले। क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, कई सारे बाथरूम जरूरी है, औरतों के लिए अलग टॉयलेट होना बहुत जरूरी है क्योंकि मेल्स का यूरिन हाइजीन उनका बहुत खराब है, तो उसके लिए अलग टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। बाकी मेरा ये मानना है समय भले ही कम होगा मगर प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ जाएगी अगर लोगों को अपने ऊपर समय देने का मौका मिलेगा, तो ऑफिस टाइम थोड़ा सा कम होना चाहिए।
0: जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां साझा की जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अब मेरे साथ आज के विषय पर बात करने के लिए आकाश रमन हैं जो कि एक स्टार्टअप कोच हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि वो जब कोचिंग देते हैं नए व्यवसाय शुरू करने के लिए तो वो स्वच्छ दफ्तर के विषय में क्या बताते हैं लोगों को। आकाश जी नमस्कार, और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
2: नमस्ते पारुल जी, और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: ये बताइए कि क्या आपने देखा है कि स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं वो अक्सर अपने स्वास्थ्य को आखिरी प्राथमिकता देते हैं, इसका कारण क्या है?
2: जी बिल्कुल, सच कहूँ तो मैं खुद भी स्वास्थ्य को आखिरी प्राथमिकता देता था जब मैं अपनी स्टार्टअप चलाता था। जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टअप में काम तो बहुत होता है पर पैसे कम होते हैं, तो इन कम पैसे की कमी की वजह से लोगों को हायर करना मुश्किल हो जाता है, तो फाउंडर सब कुछ खुद ही करने लगते हैं। तो चाहे वो फंडरेजिंग कर रहे हों, टीम बना रहे हों, या कस्टमर से बात कर रहे हों, या रुकता क्योंकि स्टार्टअप चलाने के साथ काफी दबाव आते हैं, लेकिन इसे बैलेंस
0: कोचिंग देते हैं तो आप फाउंडर्स को अपने दफ्तर में

0: स्वच्छता रखने के लिए और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए कैसे कन्विंस करते हैं?
1: मैं तो ये मानता हूँ और मैं ये उनसे कहता भी हूँ कि हेल्थ एक पर्सनल इशू नहीं है, बिजनेस इशू है। फाउंडर एक कंपनी के इंजन जैसा है, तो उस इंजन को चलाने के लिए ईंधन भी चाहिए और मेंटेनेंस भी चाहिए, और इस सब के लिए बड़ी चीजें करने की ज्यादातर जरूरत नहीं होती है। स्टैंडिंग डेस्क लगा सकते हैं जहाँ पर खड़े होकर काम करें कुछ घंटा, या फिर मीटिंग्स के बीच छोटी छोटी वॉक्स भी कर सकें तो काफी होती है। मेरा मानना तो ये है कि हेल्थ को एक्स्ट्रा काम नहीं बनाना चाहिए, वो काम करने के तरीके का एक हिस्सा बना लेना चाहिए जिससे वो साथ में बढ़ती रहे।

0: डिसीजन लेना हो और आपने रात भर जागने के बाद लिया हो या वही डिसीजन आपने अच्छी नींद के बाद लिया हो, तो जो डिसीजन की क्वालिटी है उसमें बहुत फर्क आएगा। तो हमने तो ये देखा है कि जब लोग हेल्दी होते हैं तो मिस्टेक्स कम करते हैं, नए आइडियाज ज्यादा आते हैं, टीम वर्क भी उनका बेहतर हो जाता है। तो हेल्दी कल्चर केवल लोग
1: और सोच का हिस्सा है। एक स्वच्छ दफ्तर हमें सशक्त जीवन की ओर ले जाता है, जहां काम केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। किसी और अंक में किसी और विषय पर आपसे फिर मिलूंगी। तब तक आपकी रेडियो दोस्त पारुल का नमस्कार।
2: तो दोस्तों, आज फिट इंडिया का इसके अंतर्गत आपने कार्यस्थल पर स्वस्थ संस्कृति, स्वस्थ दफ्तर और सशक्त जीवन, इसके बारे में पारुल कई लोगों से बात कर रही थी। ये आपने सुना ये भी, और ये नई उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंची। फिलहाल तो आइए देर बिल्कुल नहीं करते हैं, बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट विकास समाचार की ओर, जहां पर कई बातें हम आपको बताएंगे विकास से जुड़ी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में संविदा अस्थायी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जल्द बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता की नियमावली इस माह जारी कर सकती है। नई व्यवस्था लागू होने पर जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको देश भर में राशन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि गिग वर्कर्स और निश्चित अवधि के अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में भी लाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और उभरती प्रौद्योगिकी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। कैसे? नई दिल्ली में एम्स भटिंडा के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों को AI, सटीक चिकित्सा और टेलीमेडिसिन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अत्याधुनिक PET, CT सुविधा, हाई एनर्जी लीनियर एक्सलेटर इकाई, बर्न इंटेंस केयर यूनिट और बाल विकास एवं प्रारंभिक सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि तकनीक के साथ मानवीय संवेदनाएं भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा की आधारशिला होती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगा। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों को सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने का भी जोर दिया। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान राजकोट ने विभिन्न विभागों में 88 सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। ये भर्ती भारत सरकार की रेजिडेंसी योजना के तहत की जा रही है। पात्र और इच्छुक भारतीय नागरिक संस्थान की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट जल्दी से नोट करिए, www.aiimsrajkot.edu.in। इस पे आप जा करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 जून 2026 शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी, आगे की सभी सूचनाएं केवल एम्स राजकोट की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगी। तो उम्मीदवारों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की जा रही है। तो ये हमने आपको विकास समाचार और अवसर की बात करी। फिलहाल तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अर्पित को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

0: जब ये लापता हुई थीं तब इन्होंने लाल सलवार सूट पहन रखा था। इनके विषय में यदि कोई भी सूचना हो तो कृपया इस पते पर दें। सुरेंद्र पाल तिहलिनिया, परसई माझेला, जनपद हरदोई। अगली सूचना भी हमें जनपद हरदोई से ही मिली है। रमेश पाल हमें सूचित करते हैं कि पूजा पाल, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, ये 15 जुलाई सन 2025 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र मैं आपको एक फिर से बता दें, 35 वर्ष। इनका कद 5 फुट है, इनका रंग गोरा है और इनकी शारीरिक बनावट औसत है। इनका चेहरा गोल है और इनकी आंखें सामान्य हैं। विशिष्ट पहचान के रूप में इनके ऊपरी होंठ के हिस्से में एक कटे का निशान है। जब ये लापता हुई थी तब इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके विषय में यदि कोई भी सूचना हो तो कृपया रमेश पाल ग्राम फतेहपुरवा, जनपद हरदोई को संपर्क करें। संबंधित व्यक्ति के विषय में आप फोन भी करके बता सकते हैं। कृपया नंबर नोट कर लें, 8953931190, यानी 8953931190। खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
5: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः 1,000 crore rupees आय व्यय सहायतां प्रदातुं कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। कर्णाटक राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री DK शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। पश्चिम बंगालस्य तृणमूल कांग्रेस दलात् निष्कासितः TMC विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डः, 21 जनाः मृताः। अपि च भारतं 25,000-tame वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकं जातम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात् ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचना। सुरेंद्र पाल हमें सूचित करते हैं कि कुमारी पूजा, जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, वे 3 मई सन 2026 से रात 11 बजे से ग्राम बिछनिया से कहीं लापता हैं। इनका कद 5 फीट है, इनका रंग गेहुआ है और इनकी शारीरिक बनावट इकहरे किस्म की है। इनका चेहरा गोल है और इनकी ठुड्डी पे एक तिल का निशान है।

0: तैले विपणन समवायिभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति एषा सहायता योजना 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थम् अपि एकस्याः बृहत्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम् आर्थिक सम्बद्धया मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीप पर्यन्तं 63 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अन्तिम गृहं यावत् अन्तिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवान् कृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीय वर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक तो विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी और कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं उनके कोई जमीन नहीं जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है
0: राष्ट्रपतिः सर्वासां संस्थानां हितधारकान् आहूतवती यत् जनजातीय युवभ्यः सम्मानजनक जीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम्
1: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोडमैप बनाना चाहिए आप कौन सी गांव को कवर किया कौन सी पॉपुलेशन के थे ट्राइबल के कितने लोग हैं कहां तक हम पहुंच पाए कहां तक नहीं पाए पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं लेकिन उनको खुलना पड़ेगा शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए समाज के विकास के लिए आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा
0: कर्नाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः शपथ ग्रहणं कृतवान् कर्नाटक राज्ये कांग्रेस विधानमण्डलस्य दलस्य नेता डीके शिवकुमारः अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य 25वां मुख्यमंत्री रूपेण शपथग्रहणं कृतवान् राज्यपालः थावरचन्द गहलोतः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान् वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वरः उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान् अन्ये च द्वादशमन्त्रिणः अपि मन्त्रिपरिषदि सम्मिलिताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान् संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति पश्चिम बंगालस्य पूर्वसत्तारूढ दले तृणमूल कांग्रेस दले आन्तरिक मतभेदाः प्रतीताः दलात् निष्कासितः टीएमसी विधायकः ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति अस्य कथनस्य कारणेन राज्य विधानसभायां सत्ता संतुलन परिवर्तनस्य सम्भावनां प्रति चर्चाः तीव्राः जाताः तस्य समूहेन विधानसभायाः अध्यक्षाय रतीन्द्र बोस महोदयाय पत्रं प्रेषितं यत् स्वदलस्य वास्तविक तृणमूल कांग्रेस इति नाम्ना मान्यतां दातुम् आग्रहः कृतः अस्मिन् अन्तरे पूर्वमुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगरे आयोजितायां जनसभायां

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।
1: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली।

0: तो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
1: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
2: पंचो जय हिंद।
3: अनूप भैया।
2: हाँ प्रकाश भैया।
3: जहाँ यह समय हम सभी जो है अपने धान की नर्सरी लगाओ में यहाँ व्यस्त हन, वहाँ बहुत सारे ऐसे पंच है जो सोचते हैं कि हम अपनी जो खेती है खरीफ के लिए, जहाँ मुख्य रूप से धान के लिए प्रजातियाँ चुनी जाती है, तो उनका कहूँ ना कहूँ आर्थिक रूप से कहूँ कमजोरी भी हो जाती है कि वह नहीं सही प्रजाति नहीं चुन पावत हैं।
2: बिल्कुल सही कहा जाता है आप कि जब कोनो नई प्रजाति के बीज लेख है और हमें वके लिए पर्याप्त खाद की आवश्यकता हुई सिंचाई के लिए, वके लिए जो इधर है वके व्यवस्था कर के लिए पैसा की जरूरत पड़ी, और जब पैसे की जरूरत पड़ी तो हम पंचे सूचित है कि अभी पैसा की व्यवस्था कहाँ देती हुए। लेकिन अकेले घबराने की जरूरत नहीं है, अपन जो सरकार ही वो भी हम लोग उनके बहुत ख्याल रखती थी, और देखो जो योजना है अपने सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है किसान क्रेडिट कार्ड योजना,
3: हाँ ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से जो है बहुत कम जो है ब्याज पर हम सबका जो है लोन ऋण मिल जाता है, और वो ऋण के माध्यम से हम अपना उपयोग कर सके थे कि कैसे कैसे बीज लेके कहाँ उर्वरक लेके कहाँ खाद लेके उनका उपयोग करके, और जहाँ जब फसल हमार तैयार हो जाए बेच बाज के और जो पैसा भी वापस हम अगर जमा कर दी तो हमारा एक तरह से लॉयल्टी भी बढ़ जाती है, और अगले साल जो है जब हमका ऋण ले की मात्रा भी बढ़ जाती है कि जो धनराशि वो बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा था भैया, अगर समय समय पर वह ऋण कहे जो हम लिए हैं वक्त जमा करते रहे तो सरकार हम लोगों की वह कर्ज पर यहाँ अनुदान भी देती।
3: हाँ।
2: और देखो भैया ये खाद बीज दाई तो है ही है, लेकिन हम अपने अगर उद्यम का बढ़ावे के लिए कोनो और जैसे डेयरी उद्योग है और मत्स्य पालन है पशुपालन
3: पालन
2: यहू के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का हम लाभ उठाए के हम पंचे आत्मनिर्भर बन सकते थे और अपने आय के यहाँ दुगुनी तिगुनी कह सके थे
3: एकदम भैया। और जहाँ खेती के जो रकबा है प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो कम हो चली जा रही है, तो जब कम हो चली जा रही है तो जरूरत ही बात की है कि कम क्षेत्रफल में यहाँ ऐसी चीज़ें उपजाई जाएँ जिससे हमका लाभ ज़्यादा हुए, और ज़्यादा लाभ के लिए हमका जो कृषि विविधीकरण है इसका अपना एक पर्थ है, और ईमान खास तौर पर जहाँ हम पारंपरिक खेती करे थे धान के के या दलहन के, तो उनके साथ साथ अब हम लोग फूल की खेती फल की खेती और तमाम तरह के जो ऐसे हैं जो एक वर्षीय द्विवर्षीय हैं वृक्ष उनके जो ने लगाए के उनसे हम अलग से लाभ ले सके थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो जो औषधियों सगंध पौधे उनकी खेती करके हम बढ़िया लाभ कमा सके थे और अपनी आमदनी का बढ़ा सके थे।
2: बिल्कुल सही कहा था भैया, ये जो आप बतायो कि अभी फसल का विविध तरीके का कर उत्पादन करे के वही के संदर्भ में देखो दिन तो आज है बुधवार
3: एकदम भैया, और आज के दिन जो है कुछ विशेष होते हैं।
2: हाँ आज अपने विशेषज्ञ भैया आवत हैं और अपने जो पंच भाई होते हैं उनके समस्या का समाधान करते हैं, फोन के माध्यम से पंचे अपने प्रश्न पूछते हैं, तो अपने पंच भाई का आज के विषय बता दिया जाए।
3: एकदम जरूर है।
2: हाँ, फल फूल और सब्जियों में सामयिक प्रबंधन, खरीफ में सब्जी उत्पादन, फलदार वृक्षों की सघन बागवानी, फूल उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मौन पालन,
3: ये सब के बारे में बात हुई विस्तार से, और इसके बारे में यहाँ विस्तार से बताई हैं डॉक्टर पंकज नौटियाल भैया जो वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान संडीला हरदोई से अपने बीच में आए के बैठ गए हैं, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और संचालन कह रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, और जो है अपने विशेषज्ञ के पास चले से पहले अपने जो है कार्यक्रम के फ़ोन नंबर बता दी जाए।
2: बिल्कुल भैया, अपने पंच भाई जो है यह कार्यक्रम में अपने समस्या के निवारण खातिर फ़ोन नंबर नोट कर लें जिन्हें पर हमसे हमारे विशेषज्ञ भैया से बात करें, 0522-2238-825।
3: तो पंच से निवेदन है कि जो विषय बताए गए हैं वही से विषय से संबंधित जो है सवाल पूछें ताकि जो है उनके जवाब अपने पंच के यहाँ अपने विशेषज्ञ महोदय दे दें। तो चला जाए
2: बिल्कुल, चला जाए।

0: हमारे साथ होंगे
1: जी।
0: और किसान भाइयों बहनों के लगातार सवाल होंगे। आज का फोन इन का नंबर उनको बता दें, 0522 2238

0: यानी 05022 22 38 825। और किसान भाई फल फूल और सब्जियों में सामयिक प्रबंधन क्या करें, खरीफ में जहां सब्जी उत्पादन की योजना बनाए हैं तो उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: फलदार वृक्षों की जहां सघन बागवानी करना चाहते हैं उसके बारे में सवाल, फूल उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मौन पालन और शहद पालन से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछें। फोन इन का नंबर है 05222238825 यानी 05222238825। डॉक्टर साहब, बातचीत का सिलसिला शुरू करें कि खरीफ अभियान शुरू हो गया है, ऐसे में किसान भाई बहन जहां खरीफ में सब्जी उत्पादन की शुरुआत करना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो कैसे शुरू करें?
1: जी देखिए, सब्जी उत्पादन के लिए ये अभी बहुत उपयुक्त समय है क्योंकि खरीफ का हमारा सीज़न शुरू हो रहा है। जायद अभी हमारी जायद की फसल अभी खेतों में तैयार है और उसके अभी तुड़ाई भी चल रही है और लगभग समाप्ति की ओर भी है। तो अब खरीफ फसलों की बात करेंगे क्योंकि बरसात के टाइम में बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जो सब्जी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग लगाते हैं, जायद में भी उनको लगाया जाता है लेकिन खरीफ में भी हम लोग लगाते हैं। तो अभी सबसे पहले तो अभी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता बनाना ज़रूरी है। अगर जायद में भी आपने सब्जी ली है तो खरीफ के लिए अगर आप सब्जियों की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने खेत अगर आपके खाली हो गए और आप खरीफ की फसलों की तैयारी कर रहे हैं तो खेतों में गोबर की खाद प्रयोग करें और हरी खाद का प्रयोग करें और बायो जैव उर्वरकों का प्रयोग करें,
0: यानी खेत की सेहत सुधारें, खेत का हीमोग्लोबिन सुधारें।
1: बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई इस बीच जुड़े हैं।
1: जी।
0: हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
0: भैया, नाम बताएं अपना। हेलो, महेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, अपना सवाल पूछें।
2: हम साहब धनिया पलटी बोल रहे हैं।
0: अच्छा, एक काम करें महेश भैया कि रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं, रेडियो सेट से दूर। आप सवाल पूछें, धनिया और पालकी बोना चाहते हैं।
2: हाँ
0: डॉक्टर साहब, धनिया और पालकी, ताकि इनको भाव अच्छा
1: भाव अच्छा मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सोचा है और इस समय आप कर सकते हैं, धनिया और पालक को आप लगाइए और अच्छा आपको इसकी कीमत मिलेगी क्योंकि आप जल्दी ले लेंगे, अर्ली ले लेंगे तो फिर आपको इसकी कीमत बढ़िया मिलेगी। तो आप धनिया लगाइए, पालक लगाइए, हरा साग लगाइए।
0: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियों का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है।
1: जी देखिए, ऐसा है क्योंकि इस समय पे खासकर जो हमारा केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस के हैं,
0: भारतीय सब्जी अनुसंधान
1: जो हमारा बनारस संस्थान जो है बनारस का, उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो उपलब्ध रहती हैं और उनके एटिक्स जो उनका विपणन केंद्र है या कृषि विज्ञान केंद्र जो है वहां पर इनके उपलब्ध रहते हैं, तो वहां से वो मंगा सकते हैं।
0: चाहे तो उनकी वेबसाइट के माध्यम से फोन करके
1: ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बिल्कुल।
0: और बाजार में भी बहुत सारे हाइब्रिड
1: सीड हैं
0: और इम्प्रूव
1: बिल्कुल है। अगर वो हाइब्रिड करना चाहते हैं तो उसको भी करें और बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उनके सामान्य किस्मों को लगाएं।
0: बहुत धन्यवाद महेश भैया। डॉक्टर साहब, हम लोग जहां भी सब्जी उत्पादन कर रहे हैं या बागवानी कर रहे हैं या फूल उत्पादन कर रहे हैं
1: जी,
0: तो खेत की सेहत सुधारना भी जरूरी है और इस समय खेत बचाओ अभियान चल रहा है।
1: बिल्कुल, जैसे हमारे भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा एक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है 1 जून से 30 जून तक, और इसमें मुख्य हमारा यही उद्देश्य है कि भैया आप जो रासायनिक खाद है उसका कम से कम प्रयोग करें, केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं, और हम किसी तरह से इनके विकल्पों को चुनें कि हम कैसे किस प्रकार से हम हरी खाद का प्रयोग करके, चाहे ढेंचा और सनई लगा के, उसके अलावा हम लोग हरित क्रांति से पहले जो करते थे, जो पूर्व हमारी खेती थी, हम हरी खाद पर निर्भर थे, हम गोबर की खाद डालते थे, हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते थे,
0: हम
1: जीवाणु खाद का प्रयोग करते थे, जैव उर्वरक का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग दोबारा अगर हम करें तो हमारी मिट्टी की सेहत सुधर सकती है
0: और खेती की लागत भी कम
1: होगी। बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पर हैं।
1: जी
0: हेलो।
3: हेलो नमस्ते बाबू जी।
0: नमस्ते, अपना नाम बताएं भैया।
3: सर हमारा नाम सुबेदार है।
0: सुबेदार भैया कहाँ से?
3: सर हमारा ग्राम पतरास डिस्ट्रिक्ट हरदोई ब्लॉक तिहानी से बोल रहा हूँ।
0: बहुत स्वागत है सुबेदार भैया, सवाल क्या है आपका?
3: सर हम थोड़ा बजरा लगाना चाहते हैं, थोड़े सर उर्द लगाना चाहते हैं आगे समो आने पर।
0: बहुत समय से चेते हैं। देखिए, बाजरा क्या हरे चारे के लिए या दाने के लिए?
3: नहीं, दाने के लिए सर लगाना चाहते हैं, तो संकर प्रजाति का लगाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कितना

0: डालें एकड़ या हेक्टर में?
1: डॉक्टर साहब देखिए, बाजरा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त है
2: जी।
1: एकड़ की बात करें तो 2 किलो बाजरा पर्याप्त है आपको बुआई के लिए। आप अपने ब्लॉक के कृषि बीज भंडार से पता कर लें,
2: बिल्कुल,
1: या बाजार में अगर विश्वसनीय दुकान से हाइब्रिड बाजरा मिल,
2: हाइब्रिड बाजरा मिल जाता है आजकल। जैसे इनके नियरेस्ट कोई एफपीओ के सेंटर है, जैसे माधोगंज में इनका एफपीओ सेंटर है, उनके पास भी बाजरा के
0: सेंटर 92-31 वगैरह आता है।
2: हाँ हाँ, 92-31 भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रजाति। लेकिन 2 किलो से ज्यादा नहीं, बल्कि 1.5 से 2 किलो के कम से कम रखें, हाइब्रिड में कम से कम रखें तो अच्छा है। 2 किलो हम लोग सामान्य किस्म रखते हैं, 1.5 किलो में भी आपका काम चल जाएगा, तो आप करिए, बहुत अच्छा है। हाँ, उड़द में तो देखिए, उड़द का दोनों सीजन में आप लगाते हैं, जायद में भी और खरीफ में भी। और इस समय खरीफ में पंत उर्द है, यह हमारे IIPR की बहुत अच्छी प्रजाति आई है, IIPR 2,
1: भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
2: जी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है। आप कानपुर से वहां से मंगा सकते हैं, कानपुर के वहां पे उपलब्ध रहता है।
1: और ये हरदोई के किसान है तो डॉक्टर साहब आपको भी मदद,
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
1: सुविधार
2: आप कृषि विज्ञान केंद्र में आइएगा, कृषि विज्ञान केंद्र
0: बाबूजी कानपुर में बिना मेला मिल जाएगा।
1: कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, कल्याणपुर में, कल्याणपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, वहाँ का एटिक सेंटर है जहाँ किसानों का बीज मिलता है।
2: वैसे आप कृषि विज्ञान केंद्र जो 52 में है, फर्स्ट इनका पिहानी इसमें आता है, तो आप वहाँ पे जाइएगा, वो आपका अरेंज भी कर देंगे, क्योंकि उनके पास अभी कुछ
1: डेमोस्ट्रेशन
2: भी रहते हैं CF Field 52 हरदोई के पास,
1: पॉलिटेक्निक के पास है, पॉलिटेक्निक चौराहे के पास में कृषि विज्ञान केंद्र, आप वहां से संपर्क करें। बहुत धन्यवाद सुबेदार भैया। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जहां बुआई करनी है
2: जी, जी
1: खरीफ की सब्जियों,
2: खरीफ की सब्जियों के,
1: तो कैसी योजना बनाएं, कैसी प्रजातियों का चुनाव करें, और बरसात का समय होगा तो क्या मचान तकनीक भी फायदेमंद?
2: हाँ, बिल्कुल, मचान तकनीक भी अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा तो, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी जैसे हमने खेत बचाव की बात करी, तो पहले तो हम विकल्पों का चुने, ढेंचा अगर अभी समय है, क्योंकि ढेंचा भी कृषि विभाग में उपलब्ध है, बिल्कुल अभी कर सकते हैं अभी, क्योंकि 45 दिन में हम लोग उसको पलट देते हैं। तो अगर आप अभी भी आप ढेंचा बोना चाहते हैं तो कृषि विभाग में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ढेंचा के बीज, आप वहाँ से लीजिएगा, सब्सिडी में आपको मिल रहा है 78.50 रुपये में, आप उसको लीजिए, उसको लगाइए जरूर खेत में,
1: 40 दिन में पलट,
2: 40 दिन में उसको
1: फूल आने के ठीक पहले,
2: बिल्कुल फूल आने के बाद उसको पलट दीजिए 40 दिन के बाद। उसके बाद आप अपने जो खरीफ की फसल है, जो भी आप सब्जी लगाना चाहते हैं, चाहे आप और फसलें कोई लगाना चाहते हैं, तो आप उसको पलट देंगे, और उसके बाद आप खेत तैयार करें। आपको जो आगे जो यूरिया, आपको जैसे 100 किलो यूरिया देना था, तो आपको 70 किलो में ही काम चल जाएगा, 30% यूरिया मात्रा आपकी कम हो जाती है,
1: खेत की पोटी मजबूत हो जाएगी,
2: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: और जो रासायनिक खाद डालेंगे उसका असर दिखेगा,
2: बिल्कुल। और उसके बाद ही आप अपना जो मचान बनाना है, क्योंकि मचान बनाना आवश्यक है, बरसात में अगर आप बिना मचान के सब्जी उत्पादन करते हैं तो आपका फिर फसल नुकसान होने के चांस ज्यादा होते हैं, फफूंद लगने का चांस ज्यादा होता है।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई और टेलीफोन लाइन पर है
2: जी।
1: हेलो
3: डॉक्टर साहब, नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, सीतापुर से,
3: गांव भगवानपुर, तहसील राम से लेगा, जिला बाराबंकी।
1: अमर बहादुर भैया, आज का सवाल क्या है आपका?
3: हमारा सवाल यह कि डॉक्टर साहब, हमारा नींबू का पौधा पहले फल देता था, इसके बाद में पत्तियां सूखी, पत्तियां सूखने के बाद भी टहनी भी सूख रही, सूख गई, उसको भी हमने 2 फुट ऊपर से काट दिया तो अंदर से काला काला जो अंदर जो
1: कई साल का पेड़ है भैया,
2: कितने साल का पेड़ है आपका?
3: जो कल्ला निकल रहे हैं तो वो भी अब
2: सूख रहे हैं।
1: अमर बहादुर भैया, कितने साल का पेड़ है नींबू का?
3: हाँ, तो लगभग 3 साल के ऊपर तो पेड़।
2: पहले एक टहनी सूखी या पूरा पौधा सूख रहा आपका? पहले एक टहनी सूखी होगी, हाँ, धीरे धीरे सूखा। तो ये असल में आसपास कोई नींबू के और पेड़ लगे हैं किसी का? नींबू है या और संतरा है या कोई मौसम्बी के कोई पेड़ लगे हैं किसी के आसपास गांव में?
3: आसपास तो गांव में
2: कभी भी ऐसा दिखे ना, अगर आपको इस प्रकार का कोई दिखता है तो जैसे टहनी सूखनी शुरू होती है उस टहनी को आप हटा दीजिए, क्योंकि वहीं से वो बीमारी शुरू होती है। असल में इसको सिट्रस डिक्लाइन ये कह सकते हैं, और होता क्या है कि इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपका एक तितली होती है जो लीफ, मतलब उसको क्या बोलते हैं, लीफ के अंदर उसमें अंडे दे देती है पत्तियों के अंदर,
1: पत्तियों के,
2: हाँ, उससे भी फैलती है, और ये माहू से भी फैलती है। तो इसके फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये अगर कहीं आसपास पहले है तो अगर जैसी कोई टहनी आपको दिखती है कि सूख रही है, तुरंत उसको हटा दीजिए।

0: लेकिन इस समय क्या करें?
1: अब इस समय अब ये है कि आपको एक तो पौधे में अभी अगर आप सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं तो थोड़ा सा उसमें मजबूती आ जाएगी, तो पौधे में क्योंकि नई ग्रोथ आ जाएगी, बरसात में चांसेस हैं कि आपका वो नई नया
0: यानी खुराक जरूर दें,
1: खुराक जरूर दें,
0: गोबर की सड़ी खाद के साथ साथ,
1: जी जी गोबर की सड़ी खाद दें और साथ में थोड़ा सा बोरोन जिंक और कैल्शियम की मात्रा अगर जैसे सूक्ष्म तत्वों की अगर मिल जाती है तो उससे थोड़ा सा उसका निकल जाएगी, नए कल्ले निकल
0: और सुरक्षात्मक छिड़काव भी कर दें।
1: हाँ, सुरक्षात्मक में आप ये कर सकते हैं कि नीम का तेल का छिड़काव कर दें, क्योंकि अब इंसेक्टिसाइड डाल के बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, बस ये है कि आपके कुछ जो आगे आने वाले जो कीड़े हैं वो नहीं आएंगे, जो उनके वेक्टर काम होते हैं, क्योंकि वायरस डिजीज एक्चुअल में विषाणु जनित रोग है, वाहक कीट होते हैं, तो वाहक कीट कम से कम आगे नहीं आएंगे तो वो फिर नहीं फैलेगा। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आप उसका टहनी जो सूख गई है उसको पूरा हटा दीजिए और नई टहनियों को आने दीजिए, क्योंकि उसमें बीमारी फैल चुकी है वो।
0: बहुत धन्यवाद अमर बहादुर भैया रामसनेही घाट बाराबंकी से। डॉक्टर साहब, जो खेत बचाओ अभियान चल रहा है
1: जी, जी,
0: इसमें किसान भाई अधिक से अधिक भागीदार हों, सक्रिय हों, ताकि अपने खेत की ताकत मजबूत बनाने रखने के लिए जो कर सकते हैं कर सकें, इसके लिए क्या आह्वान करेंगे?
1: देखिए, जैसे अभी क्योंकि हमारा ये पूरा एक मिशन मोड में चल रहा है खेत बचाओ अभियान, और ये बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि देखिए हमारी जो निर्भरता है डीएपी और यूरिया की, जो कच्चा माल है विदेशों से आता है, और कहीं ना कहीं हम लोग उसमें निर्भर रहते हैं विदेशों पे, कि अगर कभी कुछ ऐसे समय आते हैं कि ये चीज़ हमारे कच्चा माल हमारे पास नहीं आ पाता है, तो कहीं ना कहीं हम उस पर निर्भर रहते हैं, तो उस कच्चे माल के आने की वजह से हमारी जो निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अभी धीरे धीरे अभी बहुत सारे ऐसे तैयार किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट की जो अधिक मात्रा में डीएपी कंज्यूम कर रहे हैं, यूरिया ज्यादा, अभी 100 जिलों को तैयार किया गया देश के, जिनमें 100 में से 30 जिले उत्तर प्रदेश के हैं,
0: जो हमारे जरूरत से
1: ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं,
0: यानी स्वावलंबी बनना,
1: स्वावलंबी बन। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि कम से कम आप डीएपी का प्रयोग कम करें, यूरिया का प्रयोग कम करें और विकल्पों को चुने। विकल्पों पे जैसे हरी खाद की बात हम कर रहे थे कि आप हरी खाद का जरूर प्रयोग करें। अभी जैसे गेहूं कटता है, गेहूं कटने और धान के बीच में आपके खेत खाली रहते हैं, आप ढांचा लगाइए, बहुत ही अच्छे फसल है, आसानी से बीज उपलब्ध हो रहा है, कृषि विभाग के पास उपलब्ध है।
0: जहां उर्द मूंग है तो फलियां तोड़ करके पलटाई,
1: बिल्कुल उर्द मूंग सबसे अच्छी फसल है आपके हरी खाद में।
0: और कृषि बीज भंडारों पे मिनी किट्स भी आए हैं,
1: जी मिनी किट्स भी आए हैं,
0: जो जिसमें मोटे अनाज भी है और उर्द मूंग का बीज भी है, उसको भी आप पलटाई कर सकते हैं।
1: और पशुपालन को बढ़ावा दीजिए, पशुपालन बढ़ेगा तो हमारे पास गोबर की खाद पर्याप्त रहेगी, चाहे पशुपालन में गोबर, गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है या बकरी का है, मुर्गी पालन करिए तो उनकी जो भी आपका गोबर तैयार होता है वो हम खेतों में डाल सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पर हैं
1: जी।
0: हेलो,
2: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्ते भैया, सीतापुर से नाम बताएं।
2: जी, विनीत कुमार बोल रहे हैं, सीतापुर से, ग्राम अर्थापुर, रामगढ़ चीनी मिल।
0: हाँ हाँ हाँ, सवाल पूछिए।
2: सवाल है सर, कावेरी 90-90 हमें नर्सरी डाली है।
0: हाँ, कब डाला?
2: ठीक, धान की हो गई है लमसम 10 दिन हो गई
0: जी, तो बहुत मतलब पहले आपने डाल दी,
2: लगाई जाए? और मतलब लगाने के पहले जैसे डीएपी एक खाद है उसके पहले डाली जाए कि बाद में डाली जाए, और कितनी दूरी पर लगाया जाए धान?
0: डॉक्टर साहब
1: देखिए, ऐसे एक तो आपने थोड़ा समय बहुत जल्दी चुन लिया है, और अभी आपने देखा है कि मानसून में भी देरी भी है।
0: हाँ, देरी।
1: क्योंकि मानसून अभी केरल में भी नहीं पहुंचा है। हाँ। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ये अगर देखें तो हमें ये लगता है कि 25-26 के बाद ही मानसून हमारा आएगा, और आप बहुत ज़्यादा अवधि का भी नर्सरी आप नहीं रख सकते, क्योंकि 35-40-45 दिन की नर्सरी होती है तो फिर पैदावार कम हो जाती है,
0: टिलरिंग नहीं होती,
1: टिलरिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वैसे तो आपने लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपने अभी नर्सरी डाल दी है, लेकिन अब नर्सरी के बाद आप जब इसका जुलाई प्रथम सप्ताह में आप अगर इसका वो करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन हो चुका है,
0: 10 दिन हो चुका है,
1: तो 25 के बाद
0: 15 दिन में तो करना ही।
1: हाँ बिल्कुल, 15 दिन के बाद आपको इसको
0: रुपाई
1: करनी पड़ेगी, तो आप खेत में, लेकिन आपको पहले ही डालना पड़ेगा। हाँ, इस बार भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा और ICAR द्वारा ये रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि आपको जो डोजेज, जैसे मान लीजिए आप 100 किलो DAP डालते हैं तो इस बार 50 किलो ही आप डालें,
0: यानी आधा
1: आधा प्रयोग करें, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अंधाधुंध मात्रा में कर रहे हैं।
0: और अब चूंकि 10 दिन की नर्सरी हो गई तो हरी खाद भी नहीं,
1: हरी खाद भी अब उसमें नहीं पलट,
0: कम से कम नर्सरी डालने के 15 दिन पहले अगर हरी खाद की बुआई कर दें
1: जी, जी,
0: तो एक तरफ नर्सरी तैयार हो, दूसरी तरफ पलटाई करके आप धान की रोपाई कर लें।
1: बिल्कुल, आजकल किसान जो स्मार्ट किसान हम जिनको कहते हैं वो लोग यही कर रहे हैं, एक तरफ अपनी नर्सरी है, दूसरी तरफ अपने खेतों में

0: ढेंचा लगा रहे हैं, और उसके बाद जैसी नर्सरी तैयार होती है उसके बाद ढेंचा पलट दिया और उसमें अपना, तो आपकी यूरिया की मात्रा, DAP की मात्रा अपने आप स्वाभाविक है कम हो जाएगी, क्योंकि उससे आपका नाइट्रोजन 30% नाइट्रोजन आपका पूरा हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, एक छोटा सा अंतराल है, उसके बाद कार्यक्रम के अगले चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।

0: प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन

0: इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
1: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
0: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली।
1: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
2: कार्यक्रम हेलो किसान के दूसरे चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। डॉक्टर पंकज नोटियाल साहब आज के विशेषज्ञ हैं, जो आपके एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज का फोन इन का नंबर है 0522-2238-825। डॉक्टर साहब, हम लोगों की बात चल रही थी कि खरीफ में जहां सब्जी उत्पादन करना है तो कौन सी फसल, कौन सी प्रजाति चुने किसान भाई बहन, और तकनीक कौन सी अपनाएं?
3: देखिए, इस समय जैसे हम लोगों ने खरीफ फसलों की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा उपयुक्त ये रहता है कि कुकुरबिटेसी मतलब कद्दू वर्गीय सब्जियां तो लगा ही सकते हैं। साथ में हम लोग सोलेनेसी एक परिवार कहते हैं जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, ये भी आप लगा सकते हैं। और कुछ लोग अभी अर्ली जैसे अभी धनिया और उसकी बात आई वो भी लगाते हैं,
2: मूली भी
3: लगाते हैं। तो
2: भले मेड़ पे,
3: हाँ भले मेड़ पे रहें, लेकिन एक ऐसा समय है इस समय खरीफ का कि जो हम जायद और रबी का पहला और जायद के अंत वाला दोनों का ऐसा समय मिलता है कि इसमें बहुत सारी सब्जियां हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ लोग तो अभी गोभी का भी प्रयोग करने
2: अगेती
3: फूल गोभी का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो और उसका कीमत बहुत अच्छी मिलती है।
2: तो नर्सरी डाल सकते?
3: हाँ बिल्कुल, नर्सरी अभी डाल दे। अभी बहुत सारे किसान हम लोगों से संपर्क भी कर रहे थे नर्सरी के लिए, तो फूल गोभी की नर्सरी आप डाल दीजिए और अपना जुलाई प्रथम सप्ताह में हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और एक मतलब अभी इस हफ्ते के से आप नर्सरी डालना शुरू कर दें। इसके अलावा अभी खीरा, अभी देखा हमने कि खीरे में भी एक अच्छी कीमत मिल रही है, तो खीरे की एक फसल तो कई लोग ले चुके हैं, अभी खीरे की दूसरी फसल भी आप ले सकते हैं। और खीरे में बहुत अच्छे अच्छे हाइब्रिड वैरायटी बहुत अच्छी आती है, चाहे किसी भी कंपनी का महकूबर है, सिंजेंटा, उनकी आवश्यकता, वो बहुत सारे ऐसी प्रजातियां हैं। लेकिन जो सामान्य किस्म की प्रजातियां हैं उनमें भी बहुत सारे हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई प्रजातियां हैं, काशी कंचन के नाम बहुत सारे ऐसी प्रजातियां, उनको भी आप लगा सकते हैं।
2: वाराणसी से
3: जो विकसित है उनको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा लौकी भी आप प्रयोग कर सकते हैं, करेला भी करते हैं, परवल लोग दोबारा भी लगाते हैं, कुंदरू भी लगाते हैं मचान पे। तो ये एक ऐसा समय है कि बहुत सारी सब्जियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और मेरा कहना यही होगा कि आप थोड़ा सा कुछ नए प्रयोग करें, जैसे फूल गोभी में कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्रयोग किए जा रहे हैं और अच्छी कीमत मिल रही है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मटर का भी अभी शुरुआत कर दिया कि अगस्त में, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है और गर्मी भी मिल जाती है। और बीन का प्रयोग कर सकते हैं, बीन लगा सकते हैं, लेकिन हाँ फ्रांस बीन जो फ्रेंच बीन है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यह है कि आप इस प्रकार के जो कद्दू वर्गीय है उनको आप ज्यादा करिए, क्योंकि उसको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है और पानी।
2: सब एक किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो,
4: नमस्ते सर जी।
2: नमस्ते, डॉक्टर सितारे वैशाली जिला बिहार के हमारे किसान हैं। आज का सवाल क्या है?
4: ब्रोकली लगा सकते हैं, ब्रोकली।
2: अभी कुछ दिन और रुक जाइए,
3: थोड़ा रुक जाइए
2: अभी।
4: पसीना?
2: हाँ?

0: नहीं,
1: बरसीम तो बहुत
2: सितंबर में,
1: सितंबर में,
2: सितंबर में बरसीम लगाइएगा। अभी आप नेपियर लगा सकते हैं जब बरसात गिर जाए, तो हाइब्रिड नेपियर का प्रयोग कर सकते हैं, बहु कटान वाली ज्वार लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं,
1: अभी मक्का भी दोबारा कर सकते हैं,
2: चारे के
1: चारा मक्का भी आप कर सकते हैं अगर चारा करना चाहते हैं।
0: अभी जनेरा छीट दिया हूं, जनेरा।
2: हाँ हाँ बिल्कुल सही,
0: जनेरा।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, जनेरा ठीक है। आप बहुत धन्यवाद डॉक्टर सितारे, बिहार वैशाली।
0: धन्यवाद बहुत।
2: हाँ डॉक्टर साहब, आम का फल पट्टी क्षेत्र अपने प्रदेश में है
1: जी, काफी
2: तो जहाँ आम की बागवान है, फलत अब आने वाली है,
1: तो बिल्कुल अब तो
2: कौन सी सावधानी बरते हैं?
1: देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है, क्योंकि इस समय जैसे हम लोग बैगिंग पे काफी फोकस किया गया था, और बैगिंग धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि काफी प्रचलित हो गया है, और इस क्षेत्र में तो लखनऊ से सटे हुए जो क्षेत्र है, चाहे उन्नाव है, हरदोई है, माल जो आसपास रायबरेली वाले जहाँ पर आम की खेती की जाती है, खासकर माल मलिहाबाद वाला एरिया, काफी मात्रा में अब लोग बैगिंग कर रहे हैं,
2: और उसका लाभ मिल,
1: लाभ भी मिल रहा है,
2: कीमत अच्छी,
1: कीमत दुगुनी मिल रही है, और बहुत अच्छा आम में किसी प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग नहीं है। तो पहले तो बैगिंग का प्रयोग करें, जो लोग नहीं किया है, जो इस साल छूट गए हैं, अगले साल मुझे सभी लोगों से वो है कि आप बैगिंग जरूर करें और उसकी फायदा उठाएं। एक तो आम की अच्छी कीमत मिलेगी, और सबसे अच्छी बात है कि हम कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करेंगे उसमें, क्योंकि जब बैगिंग हो जाती है तो कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है।
2: अभी भी बहुत सारे बागवान छिड़काव कर रहे हैं।
1: हाँ देखिए, अभी हमने देखा है कि कुछ लोग जो खासकर जो किसान क्या है कि ठेके में दे देते हैं, तो वो लोग जैसे दशहरी में है या चौसा में बहुत सारे लोगों को छिड़काव कर रहे हैं। मेरा किसानों से वो है कि भाई अनावश्यक छिड़काव न करें। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि छिड़काव करने के साथ एक तो देखिए खर्चा बढ़ जाता है, व्यय ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा ये है कि जो वो रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं वो मतलब एक तो खतरनाक है, दूसरे वो बहुत सारे ऐसे रसायन हैं कि जो इफेक्टिव ही नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी कंपनियों के रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कंपनी मुझे लगता है कि है ही नहीं है, और वो नकली दवाई है। मतलब जैसे क्योंकि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने भी इस पे फोकस किया है कि नकली दवाइयों पर रोक लगाई जाए,
2: यानी जो भी दवा लें
1: विश्वसनीय
2: रूप से लें
1: जी,
2: और रसीद पुर्जा के साथ लें।
1: बिल्कुल।
2: एक किसान भाई लाइन पर है डॉक्टर साहब। हेलो।
3: हाँ
2: भैया, नाम बताएं।
3: कुशल पाल तिवारी,
2: गोंडा। बहुत स्वागत है गोंडा के, एक ऐसे मिठास के लाल हैं
1: जी।
2: क्या कहना चाहेंगे आज?
3: सबसे पहले डॉक्टर साहब सादर प्रणाम स्वीकार करें, और डॉक्टर नवदियाल साहब को भी मेरा सादर नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार जी।
2: आपको नमस्कार हम लोग पहले ही कर चुके हैं, पुनः कर रहे हैं
1: जी।
2: सवाल पूछें।
3: मैं डॉक्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ की हमारे यहाँ एक समस्या है, जो आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ों में अपने आप वो सूख रहे हैं, बहुत दो चार पेड़ हमारे भी सूख गए हैं सर, और कुछ वो जो पेड़ सूख गए हैं उनके स्थान पे मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ, तो जैसे पेड़ लगाने का समय तो आ गया है।
1: अच्छा, कितने साल पुराने जो सूख रहे हैं आपके पेड़?
3: बहुत
1: पुराने तो अच्छा है, कोई बात नहीं है।
3: हाँ। फलत बढ़िया हो रही थी, उसमें कोई कीड़ा उड़ा भी वैसे नहीं नजर आया कि ये कीड़ा जो आमतौर पे हमारे,
1: देखिए जुलाई का महीना है, आम आप लगा सकते हैं अभी। आप सबसे अच्छी बात है कि आपके अगर ये सूखे हैं तो उसी खेत में आप दोबारा लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बैक्टीरिया और फफूंद है तो वहां पड़ी होगी। आप सबसे पहले ट्रीटमेंट नहीं लगा तो सकते हैं खैर वहां पर एक बार आप उसका आप मिट्टी की आप जो मिट्टी है वहां पर, जो खेत है, जो बगीचा है, उसका आप एक बार दवा से आप उसका
2: शोधन
1: जरूर करें, उपचार जरूर करें।
2: जैसे
1: और जैसे आपका ट्राइकोडर्मा है,
3: जमीने में ये कीड़ा नजर आ रहा है, दीमक।
1: अच्छा, दीमक ज्यादा है
2: तो बिवेरिया बैसियाना।
3: दीमक सर ऐसा नहीं लगता है कि इतने मोटे पेड़ को सुखवा सकता है?
2: नहीं, दीमक तो बहुत ऐसा कीट है कि बिल्कुल सुखवा सकता है। तिवारी जी, आप कम से कम ट्राइकोडर्मा
1: 2 किलो प्रति एकड़
2: हाँ, बिवेरिया बैसियाना 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप
1: गोबर के साथ मिला करके आप पूरे खेत में फैला दीजिए,
2: और वो कई फीट अंदर जो दीमक का घर होगा उसको नष्ट कर देगी।
1: बिल्कुल।
2: ये ब्यूबेरिया बैसियाना में ताकत है, मित्र फफूंद है जो दीमक का से छुटकारा दिला देगा
1: जी।
2: जी, और कोई सवाल?
3: नहीं नहीं, बस कोई नहीं, यही तो वही जो पेड़ सूख गए थे उसी के स्थान पर दूसरा पेड़ लगाने की सोच रहा।
1: हाँ, तो

0: दोनों का, दोनों का मिश्रण करके
1: ब्यूबेरिया बैसियाना अलग अलग एक एक कुंतल आप
0: गोबर की खाद लेके
1: मिला लें और उसके बाद मिट्टी में मिला
0: मिट्टी के मिला के उसको फैला दीजिए पूरे खेत में और खेत की थोड़ा गहरी जुताई कर दीजिए
1: और हल्की सिंचाई भी कर
0: और हल्की सिंचाई करके और फिर तब आप जुलाई में गड्ढे आप जब बनाओगे तो कम से कम 1 मीटर का गड्ढा आप बनाइएगा और उसके बाद ही आप उसको पेड़ लगाइएगा।
1: बहुत धन्यवाद कुशल पाल तिवारी भैया, आप अपने गाँव में किसान रेडियो क्लब बनाए और गांव के सभी किसान भाइयों बहनों को हेलो किसान सुनवाएं। अगर उनकी भी समस्या है खेती किसानी बागवानी से जुड़ी तो जरूर पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, जहां इस समय ढेर सारी सब्जियां हैं तो उनमें कौन सी देखभाल की जरूरत है? हालांकि बारिश का इंतजार है, अभी तो फलत में है।
0: फलत में है जी। अभी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी जैसे परवल लगाया है या कुंदरू लगाया है, खीरे की खेती है, करेला भी बहुत बढ़िया हो रहा है। कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि किसान करेले की खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में कर रहे हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है इस समय वो फल मक्खी की आती है। फल मक्खी, क्योंकि जैसे फल बनता है, चाहे वो लौकी तुरई की बात करें, चाहे करेले की बात करें या खीरे की बात करें, सब में वो फल मक्खी आता है। तो फल मक्खी के लिए इस समय जैसे फल मक्खी ट्रैप आजकल बहुत प्रचलित हैं और सबसे अच्छी तरीका है कि आप फल मक्खी ट्रैप अपने खेतों में लगाएं। जैसे एक एकड़ का अगर आपका खेत है तो 4 फल मक्खी ट्रैप आते हैं। आजकल क्या है कि क्यूल्यूर वाले रेडीमेड ट्रैप हैं, उसमें उसके साथ एक पाउच मिलता है और ट्रैप मिलता है। ट्रैप को आप खेत के बीच में लगा दीजिए और बीच में वो पाउच को खोल के पाउच को उसको लटका दीजिए, सारी मक्खियाँ जो मादा मक्खियाँ होती हैं वो सारी उसमें चले जाती है, क्योंकि नर मक्खी का ही गंध होती है और सारी मादा मक्खी उसमें इकट्ठी हो जाएंगी और मादा मक्खी नुकसान करती है, क्योंकि जो अंडा देती है वो मादा मक्खी देती है
1: और उनकी पीढ़ी आगे बढ़ने नहीं देती। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई जुड़े हैं
0: जी।
1: हेलो।
2: हाँ साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बताएं भैया।
2: हम शारदा सिंह, बाघाडाणा बेहंदर ब्लॉक हरदोई से।
1: शारदा बख्श सिंह भैया, किसान रेडियो क्लब बाघाडाणा हरदोई से
0: जी।
1: सवाल पूछिए।
0: बहुत
2: सर, हम केला की खेती करना चाहते हैं और केला में नर्सरी रोपने का क्या समय उचित हो और खाद प्रबंधन के लिए कुछ हमें जानकारी।
1: बड़ा वाजिब सवाल है, लेकिन ये बताइए आप कि हाँ माटी का पीएच मान क्या है?
2: पीएच मान जो जिसने करना है उसका 7 है।
0: 7
1: तो सही
0: कर सकते हैं, बिल्कुल 7 में तो बहुत अच्छा है। हम लोग तो अभी 8-8.5 तक भी ट्राई कर रहे हैं,
1: लेकिन इनका गांव सोडिक का भी गांव रहा
0: है। सोडिक भी रहा है, बिल्कुल। नहीं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा है किसानों का इनका, शारदा सिंह जी ने बहुत अच्छा अपना प्रयोग किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि केले की खेती करना चाह रहे हैं और केला तो उस क्षेत्र में अब काफी धीरे धीरे काफी ये सीतापुर से लेकर और हरदोई क्षेत्र में अब केला काफी अच्छा हो रहा है,
1: विस्तार हो रहा है।
0: हाँ, केले का आप ऐसा प्रयोग मतलब प्रयास करिएगा कि आप नर्सरी आप स्वयं करिए, आप केले के पेड़ बाहर से लीजिए। जैसे हमारा ये
1: आजकल टिशू कल्चर,
0: हाँ टिशू कल्चर है, केंद्रीय उपोषण, ये जो हमारा CISH सेंटर है,
1: उपोषण
0: बागवानी संस्थान है रहमान खेड़ा में, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में केले के टिशू कल्चर प्लांट उपलब्ध हैं। हम और आप वहाँ से संपर्क करिए, वहाँ पे नर्सरी में आप जाइएगा, वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद आप उसको 3x3 मीटर पे लगा सकते हैं, 2x2 मीटर पे भी लगा सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा है कि आप 3x3 मीटर पे लगाइए। और
2: अंतर फसल के लिए कुछ अलग कर सकते हैं?
0: हाँ, अंतर फसल में आप अपना उड़द, ये जैसे मूंग है या आपका ये उड़द है, ये इस प्रकार के दलहनी फसलों को आप लगाइए। जब जब अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद आप और फसलें भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि दलहनी फसलों का ही प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा ऐसी फसलें आप अंतर फसलों में मत लगाइएगा, ठीक है? तो अभी आप 3x3 मीटर पर ट्राई करिए। वैसे 2x2 मीटर पर भी बहुत सारे किसानों ने लगाया हुआ है।
1: और MIDH जो स्कीम है
0: जी,
1: राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन
0: जी,
1: उससे भी आप अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो जिला उद्यान अधिकारी हरदोई से संपर्क करिए। बहुत धन्यवाद शारदा बख्श सिंह भैया। डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा अंतराल है
0: जी,
1: उसके बाद कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दम।

0: में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: कार्यक्रम हेलो किसान के अंतिम चरण में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों बहनों, डॉक्टर पंकज नोटियाल साहब आज हमारे साथ हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान संडीला हरदोई के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, इस चरण में भी आपका स्वागत है।
5: जी धन्यवाद, बहुत बहुत।
4: और लगातार किसान भाइयों बहनों के सवाल आ रहे हैं
5: जी।
4: सवाल ये भी है कि जहां नए बाग लगाना चाहते हैं
5: जी,
4: और सघन बागवानी लगाना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे करें?
5: देखिए, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सघन बागवानी की तरफ किसानों का बड़ा अच्छा एक अपना जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि सघन बागवानी से हमें कम समय पे और कम जगह पे अधिक से अधिक हम लोग अपनी उत्पादकता ले सकते हैं, और उत्पादकता बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पुराने जो पेड़ आते थे, बहुत सामान्य किस्म की प्रजातियाँ होती थी और बहुत देर में फलत आती थी, लेकिन अब जो जितने भी हमारी वैरायटी जो नई प्रजातियाँ आ रही हैं वो खासकर सघन बागवानी के लिए उपयुक्त है। तो सघन बागवानी में यही फायदा है कि आप कम समय पर, आप कम जगह पर, आप ज्यादा ज्यादा।
4: लेकिन कौन कौन से फलदार पौध और उनकी कौन सी प्रजातियां चुने?
5: जैसे हम लोग शुरुआत अगर आम से बात करते हैं तो आम में आम्रपाली और अरुणिमा। आम्रपाली खासकर सबसे पुरानी, मतलब सबसे पहली जो हाई डेंसिटी के लिए सघन बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति जो चुनी गई थी वो आम्रपाली थी। और आम्रपाली क्योंकि सामान्यतः जो आम लगाते हैं 10x10 मीटर पर लगाते हैं, लेकिन आम्रपाली को आप 3x3 मीटर पर लगा सकते हैं। कई किसानों ने 2.5x2 पर भी ट्राई किया है, तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि 3x3 सबसे उपयुक्त है और बहुत अच्छी फलत आती है आम्रपाली के, छोटा बौना किस्म की प्रजाति रहती है। और उसके बाद आप
4: इसके अलावा जो रंगीन प्रजाति,
5: हाँ अरुणिमा, अरुणिमा एक प्रजाति है जो हमारे ये बागवानी संस्थान ने, उपोष्ण बागवानी संस्थान ने निकाली है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति। मैंने देखा है कि इसका जो सघन बागवानी में इसने भी अच्छा उत्पादन दिया है, और धीरे धीरे अब किसानों के इस पे भी काफ़ी अच्छी रुचि आ रही है।
4: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पर हैं
5: जी।
4: हेलो।
6: हेलो
4: भैया, नाम बताएं।
6: हेलो।
4: हाँ, आपकी आवाज़ मिल रही है, अपना नाम बताइए।
6: हम बसनलाल बोल रहे हैं, वर्मा।
4: कहाँ से?
6: गोसाईगंज अमेठी।
4: बहुत
6: से।
4: बहुत स्वागत है बसंतलाल वर्मा भैया, क्या सवाल है आपका?
6: सवाल सर ये है कि बैंगन हमारे लगे हैं, उसमें बैंगन फल निकलने लगे
4: हाँ।
6: और वो कीड़े लग रहे, दो बार कीटनाशक लड़का राजयोग कीड़े लग गए।
4: बैंगन एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग
5: करते हैं
4: क्योंकि तना और फली छेदक की समस्या। लेकिन इसका प्रबंधन कैसे करें?
5: देखिए, प्रबंधन बहुत जरूरी है,
4: बैंगन से थोड़ा दूर हो जाए।
5: देखिए, बैंगन में जो कीड़ा लगता है वो तना एवं फल वेदक, पहले वो तने में आता है फिर फल में आता है, इसलिए उसको तना एवं फल वेदक कहते हैं। कभी भी आप जब बैंगन की फसल लेते हैं, आप देखते होंगे कि ऊपर से जो टॉप होता है फल पौधे का, हाँ, वहाँ से वो सूखना शुरू हो जाता है, मुरझाना शुरू होता है और धीरे धीरे करके नीचे जाता है। तो वो जो तना फल वेदक कीट है वो ऊपर से टॉप से ही घुसता है और वहाँ पर पूरा होल करता है और वहाँ जाके अंडे दे देता है। तो आप कभी भी देखिए, जब आप खेतों में जाते हैं सुबह शाम कभी जा रहे हैं, इस प्रकार से अगर आपको दिखता है तो ऊपर से उसको तोड़ दीजिए,
4: जहाँ मुरझाई है उसके थोड़ा नीचे,
5: हाँ जहाँ से मुरझाई है उससे कम से कम 2 इंच नीचे जाके उसको तोड़ दीजिए। तो कम से कम जो उसके अंदर उसने छेद किया हुआ है और जो,
4: और उसको इकट्ठा कर लीजिए,
5: हाँ उसको इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद कहीं दूर जाके उसको
4: जमीन में
5: गाड़ दीजिए, क्योंकि वो बोरर है वो फिर दोबारा वहाँ खेत में आ सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका तो वही है कि आपको उसको काटना जरूरी है, बल्कि सिकेटर जो कैंची आती है, उद्यान कैंची जो होती है, उसका इस्तेमाल करिए हाथों से, क्योंकि उसमें कई बार जख्म बन जाता है और फिर उसमें फफूंद लग जाती है, फंगस लग जाता है। सिकेटर लीजिए और सिकेटर से छटाई करिए। इवन हम लोग कहते हैं कि जो बैंगन का जो पेड़ होता है उसमें छटाई जरूर करनी चाहिए, तो ऊपर से भी आप छटाई करिए और नीचे से भी, हाँ ब्रांचिंग अच्छी होगी और नीचे से भी छटाई करिए, और छटाई करने से आपके ये कीड़े जो हैं, रोग वगैरह, ये कम आते हैं।
4: और नीम का तेल
5: उसकी बात करिए, जब आप एक बार छटाई

0: लेते हैं, तो उसके बाद आप इसको एक बार नीम का तेल का स्प्रे कर लीजिए।
1: और सुरक्षित रसायन,
0: सुरक्षित रसायनों में देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मैं रसायनों का नहीं वो करूंगा कि रसायनों का कोई,
1: अगर आप मैनेजमेंट कर लेते हैं।
0: हाँ, मैनेजमेंट कर लेते हैं तो बोरर के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप सुबह शाम इसके जब जब भी जाते हैं कहीं भी सूखना शुरू देखते हैं तो आप उसको तोड़ दीजिए और उसके बाद नीम का तेल डाल दीजिए। क्योंकि देखिए स्पेनोसिड एक बहुत अच्छी एक दवा है, स्पेनोसिड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेनोसिड का थोड़ा सा उपलब्धता थोड़ा कम रहती है। बाकी रसायनों में इतने ज़्यादा रसायन हैं कि हम उसको नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि बिल्कुल जहर है।

0: स्पेनोसिड एक बहुत अच्छी एक दवा है, स्पेनोसिड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेनोसिड का थोड़ा सा उपलब्धता थोड़ा कम रहती है। बाकी रसायनों में इतनी ज़्यादा रसायन है कि हम उसको नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि बिल्कुल जहर है।
1: लेकिन आप इसका प्रबंधन करें, नियमित खेत की निगरानी करते रहें और जो यांत्रिक विधि से उसको तुड़ाई की बात है उसको इकट्ठा करके जला दें या जमीन में गाड़ दें, नीम के तेल का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से जो तना और फली भेदक कीट है बैगन में उसका प्रबंधन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, फूल उत्पादन जहाँ करना चाहते हैं किसान भाई, उनको क्या करना चाहेंगे?
0: देखिए, फूल उत्पादन के लिए भी अगर हम लोग खाली अगर गेंदे की अभी बात करें, गेंदा अभी सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने की तैयारी समय शुरू हो जाती है,
1: यानी नर्सरी
0: डालने का समय बिल्कुल सही आ गया है। और मैंने पिछले बार हम लोगों ने बहुत सारे किसानों से बात भी करी थी, सावन के महीने में सबसे ज्यादा कीमत मिलती है गेंदे की, फूलों की जो बाजार में कीमत है, तो इस समय अभी किसानों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन सावन में अगर कोई करना चाहता है, सावन वाली जो खेती है उसके लिए ये सबसे उपयुक्त समय है।
1: और रुपाई जुलाई में,
0: रुपाई जुलाई में करें, उसके बाद आपका ये जुलाई क्या जून एंड में ही रुपाई शुरू हो जाती है और जुलाई फर्स्ट वीक में करते हैं, उसके बाद ये पूरा बरसात में आपको पानी देने की आवश्यकता भी नहीं। और बहुत अच्छी गेंदे में सबसे अच्छी बात है कि बीमारियां बहुत कम लगती है, बहुत बल्कि बीमारियों को भगाता है और फसलों से और उसके निमेटोड को और कीड़ों को रोकता है, तो गेंदा एक बहुत अच्छी फसल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ लोग आजकल रजनीगंधा का प्रयोग कर रहे हैं, रजनीगंधा बहुत अच्छी के फसल है जो अप्रैल मई में आप लगा सकते हैं। तो फूलों में देखिए ये दो फसलें ऐसी
1: बहुत सारी संभावनाएं,
0: बहुत सारी संभावनाएं, बाकी तो पॉली हाउसेज में आजकल लोग लगा रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे
0: जी,
1: बहुत सारे किसान भाई आपसे सीधे संवाद नहीं कर पाए हैं
0: जी,
1: तो उनकी भी इच्छा होगी कि आपसे बात करें
0: जी, जी,
1: तो अपना मोबाइल नंबर बता दें
0: जी। जो भी किसान संपर्क करना चाहते हैं, मैं एक बार अपना नंबर दोहरा देता हूँ, 94123 94661 94123 94661।
1: एक बार और हिंदी में,
0: हाँ, 94123 94661।
1: एक किसान भाई का फोन आ गया
0: जी, अब
1: हेलो हेलो
2: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, नाम बताएं और सवाल पूछें।
2: सर, मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ, ग्राम बेरिया से, जिला वाराणसी।
1: राधेश्याम भैया, क्या सवाल है आपका?
2: सर, हमने कुछ करेले की खेती की थी, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है।
1: जैसे
0: क्या दिक्कत आई?
2: उसमें जड़ों में मतलब बीमारी नेमेटोड जैसा कुछ
1: है। नीम की खली का प्रयोग जरूर करिए,
0: करेले में इस समय आया है। आपने कभी उसमें पहले टमाटर बैंगन वगैरह कुछ लगाया था क्या? टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन कभी?
2: 3 साल पहले करेला हुआ था, बीच में गैप कर दिया था।
0: अच्छा, गैप। देखिए, इसमें नेमेटोड का सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है उसके लिए आपका सबसे बढ़िया नीम ऑयल है ना, नीम ऑयल का आप प्रयोग करें। और जैसे मैंने गेंदे की बात करी, गेंदा चारों तरफ लगाइए,
1: ड्रेंचिंग करें।
0: हाँ, नीम ऑयल का ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, जड़ों में हल्का सा खोद के, और आप उसको 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, जैसे मान लो आपका अगर 1 एकड़ है तो 20 लीटर पानी लीजिए और 100 ml उसमें नीम ऑयल डाल के और उसकी ड्रेंचिंग करवा दीजिए।
1: और जब भी कोई सब्जी की फसल उगाने जा रहे हैं तो नीम की खली का प्रयोग,
0: नीम की खली जरूर प्रयोग करें। हाँ, शुरुआत में जब
1: अब समय आ रहा है, नीम कौड़ी इकट्ठा भी कर लें,
0: बिल्कुल,
1: अगर नीम का पेड़ है,
0: नीम का पेड़,
1: और उस नीम कौड़ी को साफ करके उसको सुखवा करके रखें। डॉक्टर साहब, चलते चलते आज क्या आह्वान करना चाहते हैं?
0: देखिए, हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि जो हमारे भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा खेत बचाओ अभियान का एक मिशन चलाया जा रहा है, तो मेरा यही सभी किसानों से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में खेत बचाओ अभियान में शामिल हों। और ये अपील भी करते हैं कि रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, प्राकृतिक खेती अपनाएं, जैविक खेती अपनाएं
1: और जीवाणु खादों का
0: जैव रूप
1: ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज नौटियाल साहब आज कार्यक्रम हेलो किसान में आने के लिए। और अब आज का मौसम क्या है और चार मंडियों का थोक बाजार भाव बता रहे हैं अनूप और ओम प्रकाश भैया। नमस्कार
3: अनूप भैया।
4: हाँ ओम प्रकाश भैया,
3: देखो कितनी बढ़िया उपयोगी अपनी बैठकी रही, और ई बैठकी के लिए जो है अपने डॉक्टर पंकज नौटियाल भैया का और डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है मौसम के हाल।
4: हाँ, बिल्कुल भैया।
3: तो पृथ्वी मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज यानी 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ बतावा गया है कि कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। वह चेतावनी भी जारी की गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ 4, 5 और 6 जो है तेज झोंकेदार हवा चले की संभावना है, जिसकी गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। साथ ही साथ मेघ गर्जन वज्रपात की भी संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है 5 तारीख और 6 तारीख का यहाँ चेतावनी जारी की गई है कि यहाँ पर भी 50 से 60 किलोमीटर

0: प्रति घंटा के हिसाब से तेज हवा चल सकती है और मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की
1: वज्रपात के
0: संभावना
1: साथ।
0: है। और अब है थोक मंडी भाव की बारी, तो लखनऊ, कानपुर, गोंडा और अयोध्या के जो थोक मंडी भाव है वो बताए तो भैया।
1: बिल्कुल भैया, देखो जो हमारे पास है ये चार प्रमुख शहरों का मंडी भाव। गेहूं 2,586 रुपया प्रति कुंटल लखनऊ में, कानपुर में 2,585 रुपया प्रति कुंटल, गोंडा में 2,530 रुपया प्रति कुंटल, अयोध्या में 2,585 रुपया प्रति कुंटल।
0: आलू के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 730 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर में यहाँ रहा 640, गोंडा में यहाँ रहा 900 और अयोध्या में यहाँ रहा 720 रुपये प्रति कुंटल। ये तो थोक मंडी भाव रहा। और अब देखो कार्यक्रम के समय समाप्त हो रहा है, तो पंचम सिंह जी जय आज्ञा,
1: आज्ञा पंडरे
0: जय हिंद।
1: हिंद।
2: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
3: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

0: अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
4: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर है, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
3: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में

0: बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
1: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
2: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
2: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सकें जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है। भारतवासियों के सामने गौ आधारित खेती है, ये गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य होगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव

0: आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:31 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं तलाक संबंधी कानून विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रही हैं एडवोकेट सीमा भटनागर और भेंटकर्ता हैं सुमोना पांडे।
2: कानून की बात,
3: कानून की बात कार्यक्रम में आज मैं हूं सुमोना पांडे आपके साथ श्रोताओं, और आज हमारे साथ हैं तलाक संबंधी कानूनी अधिकार के बारे में बताने के लिए सीमा भटनागर जी, जो कि एक एडवोकेट हैं, लीगल कंसल्टेंट हैं और कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सुमोना जी।
3: सीमा जी, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारी जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं जिससे हमारी जिंदगी प्रभावित होती है, उसी में एक निर्णय हम लेते हैं शादी का। तो जब हम शादी करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि ये जन्मों का बंधन है। शादी के बाद परिवार बढ़ता है, समाज बढ़ता है, तो एक तरह का ये बंधन है जिसमें दो लोग साथ आते हैं और शादी के बंधन में बन जाते हैं और एक समाज को आगे बढ़ाने

0: में अपना योगदान देते हैं।
1: करें।
0: लेकिन कई बार कई दिक्कतें आती हैं जिसमें शादी में कुछ तनाव, कुछ दूरियां हो जाती हैं और तलाक की बात आने लगती है। आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस तरह के लॉज हिंदू समाज के लिए या अन्य वर्गों के लिए मिलते हैं।
2: सुमोना जी, शादी नॉर्मली जैसे कि आपने कहा कि जन्मों जन्मों का बंधन है, और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी जो आज का समय चल रहा है उसमें ये जन्मों जन्मों का बंधन कई कारणों से अब टूटने की कगार पर आ गया है, जिसका कि एक कानूनी शब्द है तलाक लेना। शादी के टूटने को तलाक कहते हैं, जिसमें हल्का सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज के जमाने में शादियां टूट क्यों रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि शादी जो है एक ड्यूटी है, ड्यूटी की तरह हम अपने फर्ज को निभाते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही फर्ज को निभाया करते थे। मेरा मानना भी ये है और लॉ का भी मानना ये है और जो प्रेजेंट सिचुएशन भी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली, अगर हस्बैंड और वाइफ एक अच्छे माहौल में खुशी के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके अगर नहीं आगे चल पा रहे हैं डिस्पाइट गिविंग देयर 100%, मीन्स दोनों चाह रहे हैं या एक पार्टी चाह रही है कि लेट मी ट्राई, लेट मी गिव माई 100%, वी शुड नॉट ब्रेक द मैरिज, बिकॉज वेन वी ब्रेक द मैरिज इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। वाइफ पर तो पड़ता ही है, साथ में बच्चों पर भी पड़ता है। और इतना कोशिश करने के बाद भी या हस्बैंड की तरफ से 100% कोशिश करने के बाद भी somehow वाइफ के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, तो उस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग द मैरिज इट इज बेटर कि आप अलग हो जाओ, अलग हो करके फिर अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। और शादी के आज के जमाने में मायने भी बदल गए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा मैं शादी को एक ड्यूटी एक फर्ज की तरह से समझती हूँ जो पुराने जमाने में था। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दीज डेज कि इमोशनल इंटीमेसी भी होना चाहिए और पर्सनल ग्रोथ भी होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, तीन इंग्रेडिएंट्स भी शादी में आ गए हैं। और जहां पर ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो अगर नहीं मिलते हैं महिला को या पुरुष को, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड वो अलग हो जाते हैं।
0: शिवा जी, मैं यार ये जरूर कहना चाहूंगी, शादी भले ही पहले आपने फर्ज के नाम पर लिया हो, लेकिन ये तीनों चीज तब भी जरूरत थी और आज भी रिश्तों में जरूरत है। जिसकी बात आप कर रही हैं, चाहे हम इमोशनल इंस्टेबिलिटी की या फिर हम एक इंटीग्रिटी की बात करें, लॉयल्टी की बात करें, रिस्पेक्ट की बात करें, ये सारी चीजें शादी में होनी चाहिए।
2: एग्जैक्टली।
0: और जब इसमें तालमेल नहीं रहता है तभी
2: तलाक की तरफ
0: हम पहुंचते हैं। तो हमारे लॉज क्या है एक्चुअली उसके बारे में आप बताएं।
2: इसमें बेसिकली अगर हम हिंदू की बात करते हैं, शुरुआत में हम हिंदू लॉज को ही लेकर के करते हैं। मेंटेनेंस का हमारा राइट बनता है, मेंटेनेंस का राइट एक महिला सेक्शन 125 CRPC में जा सकती है, वो हिंदू मैरिज एक्ट में जा सकती है, वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जा सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जा सकती है। अब यहाँ पे डिसाइड कैसा करा जाए, हमें कौन सा फोरम को अप्रोच करना चाहिए, किसमें हमें मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम टेकिंग मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस पे 125 CRPC जो होता है उसमें आपको क्विक रिलीफ मिल जाती है। अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए एंड यू आर इन डायर नीड ऑफ मनी, 125 CRPC में जा सकते हैं। सेकेंड इज हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 और सेक्शन 25 है जो कि एक महिला को मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। सेक्शन 24 प्रोवाइड मेंटेनेंस अमाउंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिवोर्स प्रोसीडिंग। महिला अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है दो सिचुएशन में, एक वो लीगल एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रही है और दूसरा वो अपने खुद के एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रही है, तो वो सेक्शन 24 में जाएगी। सेक्शन 24 जब डिवोर्स सूट फाइनली हो जाता है तो वो सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी के लिए जाती है।
0: यानी कि सेक्शन 24 उस दौरान की बात है जब प्रोसीजर चल रहा है डिवोर्स का।
2: एग्जैक्टली। सेक्शन 25 तब अडॉप्ट होता है जब डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइनल हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एलिमनी। एंड द थर्ड इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है तो वो इस फोरम में जा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस मांग सकती है। द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वहां पर भी मेंटेनेंस मिलता है, बट वो मेंटेनेंस सिर्फ उस महिला को मिलता है जो शादी में है, जिसका डिवोर्स नहीं हुआ है।
0: नहीं तो शादी में तो हर आदमी है जो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है।
2: नो, द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स हैज स्टार्टेड।
0: अच्छा, ओके।
2: प्रोसेस ऑफ डिवोर्स हैज स्टार्टेड। एज फार एज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इज कंसर्न, हमारी शादी हो गई है, हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है और अब हम आपके साथ रहना भी नहीं चाहते, हम अलग रहेंगे। शादी इज एग्जिस्टिंग बट हम अलग रहेंगे, हम
0: सेपरेशन।
2: एग्जैक्टली। तो भी वहां पर महिला को मिलेगा, बट दैट गोज फॉर अ मैरिड वुमन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन अ वुमन गो फॉर ऑल द थ्री फोरम्स? हम साइमल्टेनियसली तीनों फोरम को हम अवेल नहीं कर सकते हैं, हमें तीनों में से किसी एक फोरम को अवेल करना होगा।
0: तो कौन सा बेटर होगा किसी भी महिला के लिए, क्योंकि कई बार महिला को पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है, तो कौन सा बेटर होता है?
2: हाँ, अगर उसको क्विक रिलीफ चाहिए तो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर में जाना चाहिए। रीजन बिंग, अगर आपको कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आपको मेंटेनेंस देना होगा और आप नहीं दे रहे हो, तो वहां पर कोर्ट क्रिमिनल एक्शन इमीडिएटली इनिशिएट कर लेता है। बट एज फार एज आपको चाहिए पूरा, हमें फाइनली डिसाइड करके पूरा एलिमनी मिल जानी चाहिए, हमें एक मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड हो जाना चाहिए और यू आर नॉट इन हरी फॉर इट, देन यू शुड गो फॉर हिंदू।

0: मैरिज एक्ट सेक्शन 25 एलिमनी के लिए जाइए, और अगर आपकी डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान आपको ये मेंटेनेंस चाहिए और आपके साथ कुछ वायलेंस किया गया है, देन यू शुड गो फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट।
1: इसके अलावा भी इस लॉ में कुछ और भी बताना चाहेंगी आप?
0: हाँ बिल्कुल, एक हिंदू महिला को इसके अलावा एलिमनी का भी अधिकार है, उसको स्त्रीधन का भी अधिकार है, और उसको राइट ऑफ रेजिडेंस का भी अधिकार है, राइट ऑफ चाइल्ड कस्टडी का भी अधिकार है। तो उसको ये सारे राइट है, उसको ये सारे चीजें अवेल करनी चाहिए। एलिमनी वो जैसे मैंने आपको बताया वो डिवोर्स के बाद उस सेक्शन 25 में ऑप्शन मेंटेनेंस एक्ट में जाएगी। राइट ऑफ कस्टडी में वो अपने बच्चे की कस्टडी का डिमांड कर सकती है, दो फादर को भी राइट होता है बट वो डिमांड कर सकती है। राइट ऑफ रेजिडेंस की डिमांड्स वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जाकर के वो कर सकती है। तो दीज आर मेनी राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू हिंदू वुमन टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम डेस्टिट्यूशन और वैगरेंसी।
1: तो इसके अलावा अगर हम और धर्मों की बात करें तो उनमें किस तरह की फैसिलिटीज या किस तरह के लॉज है हमारे कानून में?
0: अब मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ एंड पारसी लॉ की जैसे हम जनरली बात करते हैं तो मोर और लेस सिमिलर तरह के अधिकार उनके धर्मों में भी दिए गए हैं, बस उनका थोड़ा सा देने का तरीका बदला हुआ है। मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी मेंटेनेंस का उसको अधिकार है। पहले मेंटेनेंस का अधिकार केवल इद्दत पीरियड के दौरान रहता था महिला को, अगर डिवोर्स हो गया है तो इद्दत पीरियड 3 महीने का मिलेगा। बट डेनियल लतीफी का केस आया 2001 में, जिसके अकॉर्डिंगली अब महिला को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इद्दत पीरियड मानी 3 मंथ्स तक ही वो सीमित नहीं रहेगा, दैट शुड बी एक्सटेंडेड थ्रू आउट हर लाइफ। देयरफॉर नाउ अ मुस्लिम वुमन गेट्स मेंटेनेंस Not just for 3 months, but throughout her life. फिर उसके बाद उसको डावर का अधिकार है। डावर मतलब मेहर जिसको हम बोलते हैं। तो जो शादी के समय अग्री करी गई होती है तो वो अमाउंट आपको एट द टाइम ऑफ डिवोर्स आपको देना होता है। मुस्लिम महिला को हस्बैंड देगा, क्योंकि वो अमाउंट शादी के समय ही फिक्स हो जाता है कि ये अमाउंट हम मेहर हम उनको देंगे। और अगर वो नहीं देते हैं तो मुस्लिम वुमेन कैन गो टू द मैजिस्ट्रेट एंड फाइल एन एप्लीकेशन कि मुझे ये मिलना चाहिए। उसी तरह उसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे हिंदुओं में स्त्री धन होता है, वैसे ही मुस्लिम में जो भी सामान उसको शादी के समय दिया गया था, उसको पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने या ससुराल से मिला, वो
1: सारा जो भी
0: व्हाटएवर उसको मिला गया, अब वो उसका प्रॉपर्टी हो जाती है। वंस इट इज गिवन टू द मुस्लिम लेडी वो सारा उसका प्रॉपर्टी हो जाती है एंड दैट हैज टू बी रिटर्न्ड। तो इसी तरह चाइल्ड की कस्टडी का अधिकार है। तो बच्चा जब तक 7 साल का होता है, इन केस ऑफ अ बॉय 7 साल तक का अधिकार उसकी माँ के पास है, और एक लड़की जो है वो 15 साल तक टिल शी अटेन प्यूबर्टी तब तक वो माँ के साथ रहेगी। दो फादर हैज द लीगल राइट बट एज प्रोवाइड करी गई कि यहाँ तक वो अपने माँ के साथ ही रहेगी।
1: मुस्लिम लॉज में आपने जैसे बताया कि मेहर एक हो जाता है,
0: मेहर दिस वन थिंग।
1: सो नाउ द हिंदू वुमन शी ऑल्सो गेट समथिंग ना, मतलब इन रिटर्न की अगर डिवोर्स हो रहा है तो उसकी मेंटेनेंस भी तो हस्बैंड लेता है।
0: हाँ,
1: इफ ही इज इन अ जॉब,
0: यस डेफिनेटली ही हैज टू अपनी प्रॉपर्टीज में से आप दो कहीं से भी एडजस्ट करके
1: दो। इट इज मोर ऑर लेस द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट कैटेगरी,
0: क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा शरिया लॉ और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को मिक्स करके एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, कि पर्सनल लॉ भी आपका चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका चलेगा।
1: तो सीमा जी, आपने अभी तक बताया कि महिलाओं के लिए क्या क्या लॉज हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि शादी में पुरुष भी पीड़ित होते हैं या पुरुष को भी ये जरूरत होती है कि शायद कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो वो भी डिवोर्स के लिए अप्लाई करें, उनको भी कुछ कानूनी अधिकार मिले।
0: बिल्कुल,
1: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
0: आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, पुरुषों को भी बिल्कुल सिमिलर अधिकार पहले से ही प्रोवाइडेड है, बट द थिंग वाज कि महिला को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया था, ये वो इतनी ज्यादा पीड़ित थी समय से, वो इतनी ज्यादा पीड़ित थी कि उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके हम देख रहे थे। बट द लॉज विच आर अवेलेबल फॉर अ वुमन, सिमिलर लॉज, सिमिलर सेक्शन आर अवेलेबल टू अ मैन। हम मेंटेनेंस की जैसे बात करते हैं, अगर पुरुष अगर बेरोजगार है और अपने आप को मेंटेन नहीं करता या किसी वजह से उसकी नौकरी चली गई है तो वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है इफ द वाइफ इज वर्किंग, और इवन इफ डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स हो गया है तो वो अपनी वाइफ से, अगर सक्षम है और वो सक्षम उस लेवल का नहीं है तो वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस सेक्शन CRPC में भी ले सकता है और हिंदू मैरिज एक्ट में भी ले सकता है।
1: अच्छा, कुछ आजकल जो पद्धतियां चल रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप की बात भी आने लगी है एंड इट हैज बिकम क्वाइट कॉमन अमंग आवर सोसाइटी, तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे किस तरह के लॉज इसमें है, क्या इसमें भी कुछ इस तरह की फैसिलिटीज जो गर्ल और बॉय को मिलता है?
0: बिल्कुल, लिव इन रिलेशनशिप अब आज के समय में एक टैबू नहीं रह गया है। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक कॉमन हाउस होल्ड में रहते हो, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हो और सोसाइटी के सामने अपने आप को एज ए हस्बैंड एंड वाइफ शो करते हो, माने कि योर रिलेशनशिप शुड नॉट बी हिडन, इट शुड अपीयर टू द सोसाइटी, टू द पीपल हु आर सीइंग यू दैट यू आर ए हस्बैंड एंड वाइफ। इन दैट केस इफ अ ब्रेकअप ऑकर्स अमंग

0: to you, aap yani ki a wife can seek maintenance under CRPC. She can seek मेंटेनेंस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. इनहेरिटेंस का भी उसके बच्चों को अधिकार है, पर वो अधिकार सीमित है. यहाँ पर केवल अपने फादर ने जो भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाई है या मदर फादर ने दोनों जो ज्वाइंटली प्रॉपर्टी बनाई है उसमें ही केवल वो इनहेरिटेंस बच्चों को मिलेगा. एंड द चिल्ड्रन विल नॉट बी कॉल्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड. उनका वही सुरक्षा और दृष्टि से देखा जाएगा जो कि एक नॉर्मल शादीशुदा हस्बैंड वाइफ के बच्चों को देखा जाता है.
1: जी, तो सीमा भटनागर जी, आपने तलाक संबंधी कानूनी अधिकार के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की और हमें उम्मीद है कि वो बेहतर तरीके से इस लॉ को समझ पाएंगे. और इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम से सुमोना को दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, जिसमें आपने सुनी तलाक संबंधी कानून विषय पर की गई भेंटवार्ता। जानकारी दे रही थीं सीमा भटनागर और भेंटकर्ता थीं सुमोना पांडे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम बातों बातों में।

0: मैं कस्तूरी सिंह स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम बातों बातों में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से बनता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें रोज घंटों बातें नहीं होती, हर छोटी बड़ी बात साझा नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल का जुड़ाव बरकरार रहता है। आज का विषय है साइलेंट फ्रेंडशिप, बिना ज्यादा बात किए भी गहरा रिश्ता। दोस्ती का नाम आते ही ना अक्सर हमारे मन में ऐसे दोस्तों की तस्वीर उभरती है जिनसे हम रोज बात करते हैं, जिनके साथ हम समय बिताते हैं, लेकिन क्या हर दोस्ती का पैमाना यही होता है? क्या दोस्ती की गहराई केवल बातचीत की मात्रा से तय होती है? शायद नहीं। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे महीनों बात नहीं होती, कोई गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं, कोई रोज की कॉल नहीं, लेकिन जब भी उनसे बात होती है ऐसा लगता है कि जैसे पिछली बातचीत कल ही हुई थी। ना कोई शिकायत, ना कोई हिसाब किताब, यही होती है साइलेंट फ्रेंडशिप। साइलेंट फ्रेंडशिप का सबसे खूबसूरत पहलू है विश्वास, जिसमें दोस्ती को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सामने वाला जानता है कि चाहे दूरी कितनी भी हो जाए, हालात कितने भी बदल जाएं, ये रिश्ता वहीं खड़ा रहेगा जहां उसे होना चाहिए। और हमारे श्रोताओं की साइलेंट फ्रेंडशिप कितनी गहरी है, जब इस विषय पर हमने उनकी राय ली तो उन्होंने हमारे साथ क्या साझा किया, आइए आपको सुनवाते हैं।
1: मैं स्वाति आज अपनी दोस्त आकांक्षा के साथ अपनी एक खास साइलेंट फ्रेंडशिप के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जिसमें हर समय बात करने की या मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। हम चाहे लंबे समय तक बात करें ना करें, मिल पाए ना मिल पाए, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं कि बिना कुछ

0: हे बिना कभी मिले भी मन की बात समझ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ उसकी आवाज या एक छोटे से मैसेज से समझ जाती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। मजाक में तो मैं यह भी समझ जाती हूँ कि वह मुझे कब गाली देगी, कब डांटेगी। हमारी दोस्ती शब्दों से नहीं है, बस इतना कहूंगी कि हम दोनों के बीच में एक ऐसा एहसास है कि जहाँ खामोशी भी बात कर लेती है और हमारी रिश्ते को कभी कोई दूरी कमजोर नहीं कर पाती।
1: जब कभी भी हम दोस्तों और दोस्ती की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले याद आता है अपना बचपन और बचपन की वो खट्टी मीठी याद लिए हमारी बचपन वाली दोस्ती। तो आगे चलते हैं और एक नन्हे मुन्हे बच्चे की जबानी सुनते हैं कि उसने साइलेंट फ्रेंडशिप को क्या समझा है और उसके दोस्त के साथ उसका रिश्ता कैसा है।
2: हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुंज है। साइलेंट फ्रेंडशिप दो लोगों के बीच का एक ऐसा गहरा रिश्ता होता है जिसमें ना ज्यादा बात करने या मिलने की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरा दोस्त विराज, अगर कभी भी वो पैसे लाता है और मैम बोलती है कि कैंटीन सिर्फ एक ही लोग जा सकते हैं, तो वो खुद ही खा के आ जाता है। इससे मैं उससे गुस्सा नहीं होता। और अगर एग्जाम में मैम, हम दोनों साथ बैठते हैं और मैम की वजह से मैं उसे कुछ बता नहीं पाता, तो वो मुझसे गुस्सा नहीं होता। इससे हाँ, मैं उसके हाव भाव से पता लगा लेता हूँ कि कब वो मुझसे गुस्सा है और कब वो मुझसे ठीक बिहेव कर रहा है। अभी तो हमारी छुट्टियां चल रही हैं समर वेकेशन की, और जैसे ही मैं स्कूल जाऊंगा तो सबसे पहले मैं उससे मिलूंगा और कहूंगा कि तुमने पूरे समर वेकेशन में क्या किया।
1: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी के पास है अपनी जिम्मेदारियां, पढ़ाई, नौकरी, परिवार, सपने और संघर्ष। ऐसे में हर दोस्त से रोज बात कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते कमजोर हो गए हैं। कभी कभी सच्ची दोस्ती समय की नहीं, समझ के मोहताज होती है।
3: मैं क्षमा गोयल, माँ के बाद जो दूसरा रिश्ता होता है वो दोस्ती का ही होता है, ना लवर से ज्यादा, दोस्त से कुछ ज़्यादा। वो जो बीच का रिश्ता होता है वही होती है साइलेंट दोस्ती, साइलेंट फ्रेंडशिप, जो आपके बगैर कुछ कहे सब कुछ समझ जाते हैं। जिनसे कहो कैसे हो और वो जवाब देते हैं सब ठीक। उस सब ठीक के पीछे कहीं एक होता है दर्द, उस दर्द को जो समझ लेता है वही होता है एक सच्चा दोस्त, और वही होती है साइलेंट दोस्ती, साइलेंट फ्रेंडशिप। आपके सुख दुख सबको समझने वाला जो रिश्ता होता है वो एक दोस्त का होता है। हम कई सारी चीज़ें होती हैं किसी से नहीं कह पाते हैं, वो एक हम अपने अच्छे दोस्त से, जो सच्चा दोस्त होता है, उससे कह लेते हैं। मस्ती भी बहुत करते हैं उसके साथ में, बहुत अच्छे से टाइम भी हम अपना करते हैं, वही एक होता है सच्ची दोस्ती, साइलेंट दोस्ती, साइलेंट फ्रेंडशिप। ओके,
4: मैं पुष्कर पाठक। दोस्ती केवल बातों से नहीं बनती बल्कि विश्वास, समझ और साथ से बनती है। साइलेंट फ्रेंडशिप वह दोस्ती होती है जिसमें शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। ऐसे दोस्त हमारे मन की बात बिना कहे समझ जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो उनका सिर्फ हमारे पास होना ही हमें हिम्मत दे देता है। साइलेंट फ्रेंडशिप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें दिखावा नहीं होता है। ऐसे दोस्त हर समय बातचीत करें वह जरूरी नहीं है। कभी कभी महीनों तक बात ना होने पर भी उनके बीच का रिश्ता वैसे ही मजबूत रहता है। वे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं और बिना किसी स्वार्थ के हमारे सहयोग करते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां लोग लगातार संदेशों और सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, साइलेंट फ्रेंडशिप हमें सच्चे रिश्तों का महत्व याद दिलाती है। यह सिखाती है कि दोस्ती की गहराई शब्दों की संख्या से नहीं बल्कि दिलों के जुड़ाव से मापी जाती है। दोस्ती हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में हंसी मजाक, बातचीत और साथ बिताए गए पल याद आते हैं। लेकिन एक ऐसी दोस्ती भी होती है जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से चलती है। इसे ही साइलेंट फ्रेंडशिप कहा जाता है। साइलेंट फ्रेंडशिप वह रिश्ता है जिसमें दो लोग अपने बीच की गहरी समझ को मापते हैं। उन्हें अपनी हर भावना को शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे एक दूसरे की आंखों, भावनाओं और व्यवहार से ही मन की बात समझ लेते हैं। वो जब किसी परेशानी में होते हैं तब मित्र हमारे पास आकर बैठकर हमें सुकून और साहस देता है। सच्ची मित्रता मौन और दूरी की परीक्षा की मोहताज नहीं होती है। कई बार जीवन की व्यस्तताओं के कारण मित्रों के बीच लंबे समय तक बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन जब वे फिर

साइलेंट फ्रेंडशिप हमें ये भी सिखाती है कि रिश्तों में हमेशा शब्द जरूरी नहीं होते, कभी कभी एक छोटा सा मैसेज कि कैसे हो या किसी मुश्किल समय में सिर्फ साथ खड़े होने का एहसास हजारों शब्दों से ज्यादा मायने रखता है। तो आज के कार्यक्रम बातों बातों में बस इतना ही। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी डॉक्टर शिबा राकेश की। अब मुझे यानी कस्तूरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार को शाम 6:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं इफको। आपको याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आपको सुनवाई जाएगी। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे। रात 8 बजे सुनिएगा धर्मराज उपाध्याय का काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे कमाल अहमद खां की आवाज़ में गाए कुछ गज़लें।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: मीडियम वेव 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। रात्रि के 8 बज गए हैं, श्रोताओं लीजिए अब सुनिए आज का हिंदी कार्यक्रम।
5: हिंदी कार्यक्रम के आज की संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोता, आज के इस कार्यक्रम में एक काव्य पाठ आपको सुनवाएंगे। उससे पहले नजर डालते हैं 3 जून के इतिहास पर। 3 जून अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। इसी दिन वर्ष 1965 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एडवर्ड एच व्हाइट द्वितीय ने अंतरिक्ष में चलकर एक नया इतिहास रचा था। 3 जून 1965 को जेमिनी 4 मिशन के दौरान एडवर्ड व्हाइट अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और लगभग 23 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे और वह अंतरिक्ष में चलने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। इस उपलब्धि को स्पेस वॉक या व्हीक्यूलर एक्टिविटी यानी कि EVA कहा जाता है। उस समय यह उपलब्धि अत्यंत चुनौतीपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि अंतरिक्ष में मानव गतिविधियों को लेकर वैज्ञानिकों के पास सीमित अनुभव था। एडवर्ड व्हाइट ने साहस, तकनीकी दक्षता और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए इस मिशन को सफल बनाया। एडवर्ड व्हाइट की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों का मार्ग प्रशस्त किया। बाद के वर्षों में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपग्रहों की मरम्मत, अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण और वैज्ञानिक प्रयोगों जैसी गतिविधियां संभव हो सकीं। एडवर्ड व्हाइट का नाम साहस, खोज और मानव जिज्ञासा का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपलब्धि ने यह सिद्ध किया कि मानव अपनी सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड के नए आयामों तक पहुंच सकता है। 3 जून को एडवर्ड व्हाइट की ऐतिहासिक स्पेस वॉक को याद करना मानव साहस और वैज्ञानिक प्रगति को नमन करने के समान।

0: 3 जून आज ही के दिन 1918 का हिंदी साहित्य सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी भाषा के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के प्रमुख पहलू राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव। इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पहली बार हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का औपचारिक आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, अगर हिंदुस्तान को हमें सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है। इंदौर का महत्व। गांधी जी को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार इंदौर के नेहरू पार्क में बैठकर ही आया था। यह सम्मेलन अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 8वां अधिवेशन था। दक्षिण भारत में प्रसार। इस आयोजन के दौरान लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप गांधी जी ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाए। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में इस सम्मेलन के प्रस्ताव का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने आगे चलकर भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद 343 का स्थान दिलाने की मजबूत नींव रखी। आइए अब हिंदी कार्यक्रम के संक में एक काव्य पाठ आपको सुनवाते हैं। प्रस्तुत कर रहे हैं श्री धर्मराज उपाध्याय।
1: सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दुख क्या होता है कि प्रेमियों के लिए होती हिज्र बड़ी दुखदाई, मुझको तो बेवफा की दीद दुख देती है। और साफ साफ मना करे लगे कंजूस भला, दानियों से दान की उम्मीद दुख देती है। और फिर अगला सुनाता, और दुख क्या होता है कि एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, दूसरे ने कहा मुझे पाप दुख देता है। एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, दूसरे ने कहा मुझे पाप दुख देता है, तीसरे ने कहा जिसे पाले रहा उम्र भर, आस्तीन का वो मुझे सांप दुख देता है। मेरी अगली रचना सुनिएगा। श्री कृष्ण जी ने चाहा कि हम दोबारा अवतार लें, हमने मना किया। हमने कहा प्रभु वो द्वापर युग था जो चल गया, अब ये कलयुग है, इसमें दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत आएगी। तब मैंने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, कदम की ठंडी छाँव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। प्यारे दोस्तों, हरा रहे, नीला रहे और रंग लाल रहे, खुशियां हो चारों ओर कोई ना मलाल रहे। हरा रहे, नीला रहे और रंग लाल रहे, खुशियां हो चारों ओर कोई ना मलाल रहे, भाईचारे की होली खेली जाए हर बार, प्रार्थना है देश में तरक्की का गुलाल रहे। कि होली खेलने के लिए मैं जो ससुराल चला, मेरे पीछे पीछे संग संग आए बाबूजी, बाबूजी भी चल दिए। होली खेलने के लिए मैं जो ससुराल चला, मेरे पीछे पीछे संग संग आए बाबूजी, जहां चला वहां चले, जहां रुका वहां रुके, जैसा मेरा ढंग उसी ढंग आए बाबूजी, जैसा मेरा ढंग उसी ढंग आए बाबूजी। और बाज सी आंख लिए शेर जैसी चाल लिए, बाज जैसी आंख लिए शेर जैसी चाल लिए, बाज जैसी आंख लिए, जीतने को जैसे कोई जंग आए बाबूजी। और ससुर हमारे बस रोकते ही रह गए, दौड़कर सासू जी को रंग आए बाबूजी, दौड़कर सास जी को रंग आए बाबूजी। और ये हवा जब फगुनहट गाए तो होली का मजा आए, हवा जब फगुनहट गाए तो होली का मजा आए, नशा हर अंग में छाए तो होली का मजा आए, विरह की वेदना में एक बिरहिन कह रही थी कल, बलम परदेश से आए तो होली का मजा आए, बलम परदेश से आए तो होली का मजा आए। कि सिर पर गंगा माथ चंद्रमा और गले में नाग, सिर पर गंगा माथ चंद्रमा और गले में नाग, डम डम डमरू बजा के भोले खेल रहे हैं फाग जोगीरा सारा रा रा रा।
0: ये काव्य पाठ अभी आप सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे श्री धर्मराज उपाध्याय। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यही संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:10 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं कमाल अहमद खान की आवाज में गजल। आगाज कर रहे हैं मोहम्मद अली के कलाम के साथ, काश ऐसा कमाल हो जाए।

नज़र कानपुरी के इस कलाम के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ चलते हैं और अब आखिर में आपको सुनवाते हैं खालिद का ये कलाम।

अभी आप सुन रहे थे कमाल अहमद खान का की गाई गज़लें। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम का ये गीत श्रोताओं आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आसपास फिल्म से। आगे बढ़ चलते हैं और कार्यक्रम का अब आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेस इन दी सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस

0: ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
0: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, धान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाश।

0: समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
0: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: ले रहा हूँ, सस्ती दवा मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो ह्यूआ

0: को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nods to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,580

0: Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Agarwal defeated Chinese Taipei Xiang, Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal and West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली ऋतुव्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंगयांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मर्तबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाकवामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स who want to participate in this, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मंसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।

में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंगयांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है।

0: 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी कौन कौन कौन से स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और ISR इंस्टीट्यूट है, जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए। और पानी की जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेढ़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर ISR इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के 2 दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि
1: जी
0: नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें यह है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही

0: मेन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके बाद कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में दो बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है। तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भाग की बात की, मध्य भाग की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके बाद हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान

0: तो सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है,
1: जी
0: और कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है, और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है,
1: बिल्कुल
0: खास कर
1: रवाज जी,
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं
0: तो
1: आप
0: उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं। और
1: जी।
0: मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पर और उसमें हमारा सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या मुख्य, अगर और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, उन प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं, तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का, जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है, ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है, उसमें उनका जो रुख होता है, ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत की में जो मानसून को खींच के लाने वाली हवाएं हैं, ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें, तो जब भी अल नीनो कंडीशन होती है, तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है, तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन, यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है, वो अपने आप में एक बहुत बृहद सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है, यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल, यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है, उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है, तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की, यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एल नीनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं, और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा, जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल, यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव

0: करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फॉस्फोरस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवार का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उनका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे, उससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: जापान
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का, हम इसकी सूचनाओं का, जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
2: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरनमेंट की कंडीशंस होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसको एकत्रित करने के लिए भी उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है।

0: आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो वो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आप काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना, मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग-अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी है, देखिए पहले तो भारत मौसम में किया, अगर पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान
1: जी
2: दिया जा रहा है।
1: जी
2: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के

0: उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: मीरे वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज गए हैं। अब लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड।

आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में पेइंग गेस्ट फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आया सावन झूम के, इस फिल्म से।

राजा और रंक इस फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ चलते हैं और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं प्यासा फिल्म से गीत।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ब्रह्मचारी फिल्म से कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज़ गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं सुभांत मुखर्जी का वायलिन वादन। इस कार्यक्रम में आज पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं राग सहानी, जिसमें विलंबित झपताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। साथ ही इसी कार्यक्रम में इसके बाद आप सुनेंगे राग बागेश्री, जिसमें विलंबित तीन ताल और द्रुत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप सुन रहे थे सुभांत मुखर्जी का वायलिन वादन। तबले पर संगत करने वाले कलाकार थे प्रमोद कुमार मिश्र। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीरे वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर

0: सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतुका ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा

है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
3: Thank you very much.
4: Thank you.
2: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
3: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
2: Absolutely. Mr. Tandon.
4: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में जी, उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
2: जैसे भी शरद जी ने
4: बिल्कुल ठीक कहा,

0: कि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं,
1: जी
0: कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास। हाउ बिग एन अचीवमेंट would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak,
1: yes,
2: but this number itself may be more than Anubha the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya, you know, we've changed the definition because

0: the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
1: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than, Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition, because poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition. Ke aapka agar jeevan ka star sudhar raha hai, you know, on nutrition, on health, aapke paas ghar nahi hai, tomorrow you get a house, you don't have a water connection, now you have a water connection. Let's not forget about the toilets, which has been, yes. You know, sanitation has been very close to Prime Minister's heart. You know, jungle mein aur kheton mein jaake, you know, toilet ka istemal karna, ya wahan par idhar udhar baith ke mahilaon ke liye khaskar bahut. So I think now there are toilets at. So the multidimensional poverty index needs to be understood, Anubha, from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
0: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
1: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pachaya aur middle class to usme aati aati kyunki isse naukriyan bani hain, isse logo ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge ke mujhse jab log poochte hain, kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaye ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead. Aapko lagta hai theek hai, ye to hona hi tha, bhai ye to mera haq hai, wagaira wagaira, aise khayal aate hain. Par bahut acha tarika isko dekhne ka kya, which I am sure the listeners of Akashwani would like to dwell upon and deep dive, is ke aap 2014 mein जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो. इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
0: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर. लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं

0: अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं
1: शरद जी। मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इनकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल।
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, and I think a lot of people said that startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas, and that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. A lot of youngsters, and today just on startup India there are 2 lakh plus registered startups, and you know you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
1: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers
1: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
1: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
1: they
2: a very, very active GDP.
1: In fact, actually,
2: we did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right.
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced it. पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है। बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स। सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बट आफ्टर दैट लास्ट ईयर वी सॉ द जीएसटी 2.0 ऑल्सो, हाउ हैव दीज टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स इन द पास्ट decade impacted

0: लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
1: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव, आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है। और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
0: डिजिटल डिवाइड, जिसको
1: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन, एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग। ए प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती, बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ। आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है।
0: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम किया
1: है उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं, और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
0: अशोक जी आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
0: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
1: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people ke hum sari umar mein sochta tha kab main hawai jahaz mein baithunga. Aaj mujhe lagta hai aap agar kisi bhi hawai yatra mein jaye, aapko ek aam aadmi usme dikhega. Ab wo aisi luxury nahi hai. Chote chote airports ko banakar unko connect kar dena aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga Rajdhani aur Shatabdi, akeli trains hua karti thi jo ki premium boli jati thi, jaldi pahunchna hai. Aaj Vande Bharat leke aap kuch ghanton mein ek jagah se dusri jagah aur aise comfort mein पहुंच रहे हैं, which is of international level. The things we used to watch internationally, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें reclining seats होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
0: And you know, that brings me to my next question, क्योंकि आप जैसे बात करें कि infrastructure में जो improvement हुआ है, be it roads, be it railways, be it, you know, airports, जो expansion हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर, अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं

0: जो एस्पिरेशंस हैं उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
1: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी आप क्या कहेंगे, हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हैं वो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
1: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां

0: दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा अनुभव, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:45 हो गए हैं। श्रोताओं, अब हमारी आज की दूसरी व अंतिम सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी कल की पहली सभा के विविध कार्यक्रमों के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।